हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं,
तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को

देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य

संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है, जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है। इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी
हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे खर्राटे, एक को खर्राटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है, उसी प्रकार इसका उल्टा यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्र चित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो
हमें सामने अपने ईश्वर अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके अपना आसन ले चुके उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से जैसे आपको कोई परेशानी ना हो लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्रित करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती पर लगाते हुए, एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: तुमसे ही क्या बात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 93.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 93.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई आज संडे है और संडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं, मिल करके इस शो को एंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी कुछ बताने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स के लिए भी आप तैयार ज़रूर रहिएगा। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी शुरुआत होती है एक बेहतरीन थॉट के साथ में, सो आज का थॉट क्या है, आज का थॉट क्या होने वाला है, कुछ अंदाज़ा है आपको? अगर नहीं है तो चलिए हम बताते हैं कि आज का मॉर्निंग संडे स्पेशल थॉट क्या है जो ख़ास आपके लिए आ चुका है आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

सो संडे स्पेशल थॉट कहता है, क्या कहता है कि आजकल जिंदगी बहुत बिजी है, आजकल जिंदगी बहुत बिजी है, बहुत सारे लोग हैं और हर कोई एक दूसरे से अपनी मनचाही चीज चाहता है। आजकल जिंदगी बहुत बिजी है, बहुत सारे लोग हैं और हर कोई एक दूसरे से अपनी मनचाही चीज चाहता है। अब इस थॉट में अगर हम इसका पार्ट करेंगे तो शायद हमको बात समझ में आएगी। पहली बात तो है कि आजकल जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी है, ये एक बात है। अब इस बात को तो आप अच्छे से जानते हैं कि हाँ सच में लाइफ कितनी ज्यादा बिजी है। अगला स्टेटमेंट है कि बहुत सारे लोग हैं और हर कोई एक दूसरे से अपने मनचाही चीज चाहता है। इतनी ज्यादा बिजी लाइफ है और हर कोई क्या चाहता है, एक दूसरे से अपनी मनचाही चीज। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अगर हम इस तरह की बिजी लाइफ में हैं तो क्या हम हर किसी की मनचाही चीज को पूरा कर सकेंगे, या कोई हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगा जो हम चाहने लग जाते हैं इतनी बिजी लाइफ में? एक तरफ तो हम खुद भी बिजी होते हैं और दूसरी तरफ हम एक्सपेक्ट काफी कुछ कर लेते हैं। यस ऑफ कोर्स, इवन आपसे भी कई बार एक्सपेक्टेड हुआ होगा लोगों को बहुत कुछ। आपसे एक्सपेक्ट किया होगा, किसी ने वक्त के लिए किया होगा, किसी ने कोई तोहफे के लिए किया होगा, किसी ने कहीं चलने के लिए किया होगा। इस तरह से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जो हमसे कर ली जाती है। बट लाइफ इज टू बिजी, जिंदगी तो बहुत ज़्यादा बिजी है ना। वैसे आज तो इतनी बिजी नहीं होनी चाहिए, बट कई लोग आज भी बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं। संडे को भी कहते हैं कि इसमें भी कुछ ऐसा काम कर दें कि इसमें भी काम चलता रहे। सो काम अगर ऐसा है कि कुछ आपको करने में मज़ा आ रहा है तब तो सही है, और अगर आप उसी छः दिन को सातवें दिन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है बॉस, कि यार लाइफ में सिर्फ काम ही थोड़ी ना करते जाना है, लाइफ को जीना भी तो है। और जिएंगे कैसे? अरे फ्री बैठ करके भी जिएंगे दोस्त। गप्पे मारना, दोस्तों से मिलना और यूं ही चल देना भी तो कई बार कितना अच्छा लगता है। कोई अलग से प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, किसी फ्रेंड के पास जा कर के बैठ जाते हो। और भाई संडे का दिन तो होता ही इसलिए कि अगर अपने काम से आप छुट्टी पे हैं, आराम से उठे, बढ़िया सा नाश्ता किया, सबके साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जैसे ही वक्त मिला सारे काम से फारिग होकर आप चले गए अपने फ्रेंड से मिलने, आप चली गई अपनी सहेली से मिलने। तो इस तरह से ये दिन जो होता है बड़ा ही ख़ास होता है। और आज का थॉट भी बहुत ही ख़ास लगा मुझे कि आजकल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत सारे लोग हैं और हर कोई एक दूसरे से अपनी मनचाही चीज़ चाहता है। सो इस थॉट ने आपको आखिर क्या बयां किया, इस थॉट से आप क्या समझे, कमेंट करिए, बताइए। और उसके बाद वापस से आते हैं, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान वापस से आ रहे हैं आपके साथ, आपसे बतियाने के लिए संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे में, है ना। सो चलिए आज का स्पेशल एपिसोड भी होने वाला है 10 से 11 गैग गुंडा विद आरजे अदनान।

0: हाय ए भाई, जलराज की आवाज में ऐसे कवर किए गए सॉन्ग्स तो ऐसा लगता है जैसे संडे में किसी ने देसी घी के पराठे खिला दिए। परौंठे परौंठे है ना। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई साहब, बातचीत करते करते आपको हम बता दें, फिलहाल हमने आज का थॉट ऑफ द डे बताया और आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी से, आपने ट्यून किया है रेडियो गार्डन से, आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है और इस्तकबाल है कौन से गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, किसके साथ? भाई मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। और आज देखिए अल नीनो का, चूंकि हमने बताया था इस बार अलर्ट है। अल नीनो मतलब सूखे की बात जब होती है तब वो अल नीनो होता है। और इसी बीच में आज की अगर हम मॉर्निंग देखें तो सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप निकली है और लगातार हम आपको यही कहते रहते हैं कि कहीं पे भी निकलिएगा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि हमको होती है आपकी परवाह। तो इसलिए जब भी आप निकलिए तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख करके ही निकलिए। चलिए फिलहाल आपसे बातचीत के सिलसिले में भाई हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स पर, और ये चैट बॉक्स मिलता है आपको 89.6 एफएम की एप्लीकेशन पर, जिस पे जो कुछ आप लिखते हैं वो हम तक पहुंच जाता है और उसके बाद हम आपके ही मैसेजेस को पहुंचा देते हैं दुनिया भर में। सो फिलहाल आप दुनिया के अलग अलग कोने से सुनते हैं अपने 89.6 एफएम को और साथ ही साथ हम आपको सुनते हैं आपके चैट बॉक्स पर। सो ये है ना कितना बेहतरीन मैकेनिज्म। चलिए फिलहाल हम चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ और बताते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान के पास, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: Now you're listening Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

चैट बॉक्स में पहला मैसेज प्रमुख का है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद धर्मेंद्र जी हैं फ्रॉम आवास विकास, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सुप्रभात। ओके, आवाज़ गुम थी, अब ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद प्रीति जी का मैसेज आया है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, काश लवली मॉर्निंग बोलने से पहले लवली लवली हो जाए। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो खैर आजकल यही है, सही कहा आपने, सही फरमाया आपने। ज्योति मौर्य जी हैं, सुप्रभात अदनान सर जी, सुप्रभात, आपको भी आपका स्वागत करते हैं ज्योति जी गुंडा FM पर मॉर्निंग वाले शो में। आशु मिश्र जी हैं, लखनऊ से लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। इसके बाद कायनात हैं, और रेखा कुशवाहा जी का मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं रेखा जी मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में। इसके बाद है, आप लोग ने थॉट ऑफ द डे को लेकर के लिखा है, रिएक्शंस दिए हैं। प्रीति जी ने बहराइच से बताया, बहुत ही ज़बरदस्त थॉट, अपनी लाइफ को बिजी रखना भी बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है, बट फिर भी टाइम निकाल कर थोड़ी देर अपनों से बातें करना भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी बातों के लिए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं ज़रूरी बातों के लिए, लफाजियाँ से ज़्यादा और ज़रूरी क्या लगता है भाई, यूं ही बतियाना भी बड़ा अच्छा लगता है, सच कहें तो यूं ही बैठना, यूं ही बतियाना, यूं ही खाली रहना भी बड़ा पसंद आता है। हाँ, मतलब ये काम के बीच में ही होता है, ऑफ कोर्स काम इसके बीच में नहीं होता है। मतलब ऐसा है कि इसको बहुत तो नहीं करता है कोई, और जब थोड़ा बहुत ये होता रहता है तो एनर्जी बरकरार रहती है। इसके बाद कायनात ने कहा, ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल थॉट, थैंक यू। ज्योति मौर्या जी का भी कहना है, थॉट तो बहुत ही अच्छा है आज का, थैंक यू सो मच। आशु जी ने भी कहा है कि सर जी आपका थॉट हमेशा सुपर से भी ऊपर रहता है, फिलहाल अब ऊपर, अच्छा ऊपर तो फिलहाल छत है, अच्छा छत से भी ऊपर आप बता रहे, ओके गॉट इट, कर दियो पॉइंट। सो थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आज का थॉट ऑफ द डे, आप लोगों को पसंद आया और मुझे भी काफ़ी पसंद आया, इसीलिए मैंने उसको संडे स्पेशल में आपके सामने लेकर आए। तो आज का थॉट यही बताना चाह रहा है कि बहुत कुछ मनचाहा हम चाह तो रहे हैं इस बिजी सी लाइफ में, सो एक बार को शायद अगर हम थोड़ा सा ठहरे तो हम जिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको शायद इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। फिलहाल 9:30 हो गए हैं, आप 89.6 FM के स्टूडियो में आज अदनान लाइव है मॉर्निंग शो में गुंडा FM पर, और अब से ठीक आधे घंटे बाद जो है हम आपसे बातचीत कर रहे होंगे आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो के गायक गुंडा विद आरजे अदनान स्पेशल शो में। उससे पहले बहुत कुछ है जो आपसे कहना है, बताना है, सुनना है, सुनाना है, गीत गाना है, गीत सुनना है। चलिए एक ज़बरदस्त गाना हम आप तक पहुंचा ही देते हैं संडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। वैसे जी आज बांगड़े का टाइम है जी, तैयार रहिएगा, हल्का फुल्का खाइएगा क्योंकि हो सकता है आज थिरकना बहुत ज़्यादा पड़ जाए, संडे है तो खुल कर एंजॉय करेंगे।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, तो भाई चलिए वक्त आ गया है आपको आपकी सिटी अपडेट से अपडेट करने का, यानी आपके शहर में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये भी हम बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो आ गए हम सिटी अपडेट की तरफ और हम बता रहे हैं कि देखिए फिलहाल अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है गर्मी से ही बात शुरू होगी और काफ़ी कुछ जो है वो गर्मी को ही लेकर है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि फिलहाल 9 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 14,87,00,000 रुपए जिनके फ्रीज किए गए हैं। खातों और मोबाइल नंबर्स की निगरानी से पुलिस को मिल गई है सफलता। जी हाँ, सो पुलिस की साइबर सेल ने साइबर ठगों को अंतर्राज्यीय गिरोह का एक भंडाफोड़ किया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपियों के 46 म्यूल खातों में जमा की गई 14,87,00,000 रुपए की जो ऑफकोर्स अमाउंट था उसको फ्रीज कर दिया गया है। सो ये एक बड़ी राहत है। एंड साइबर सेल और नगर कोतवाली पुलिस संदिग्ध बैंक खातों और साइबर ठगी से जुड़े लेन देन की टेक्निकल जांच कर रही थी। इसी दौरान कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली जिसमें कई राज्यों से साइबर ठगी की रकम ट्रांसफ़र की जा रही थी। मोबाइल नंबर, बैंक खातों की आईपी डिटेल्स और डिजिटल लेन देन की जाँच के बेस पर गिरोह के लोगों की पहचान करके उन पर निगरानी बढ़ाई गई। फिर सर्विलांस की टीम की मदद से उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अब हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भाई 17 घंटे देर से पहुंची मऊ स्पेशल ट्रेन। सो रेलवे ट्रैक और परिचालन जो व्यवस्था है उसके प्रभावित होने से कल की बात है शनिवार को मऊ स्पेशल ट्रेन 17 घंटे 21 मिनट और योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल 10 घंटे 37 मिनट देर से गोंडा पहुंची है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं जो पेयजल का संकट अब गहराने लगा है ज़िले में अलग अलग जगह। सो लगातार हो रही बिजली कटौती का असर अब शहर की जो पेयजल व्यवस्था है वहां पर भी पड़ रहा है। नगर पालिका के ओवर हेड टैंक वक्त से नहीं भर पा रहे हैं जिससे कई इलाकों में पानी का प्रेशर कम हो गया है। सो नगर पालिका के अधीन जो शहर के 27 वार्डों में गांधी पार्क, जलकल परिसर, एसपी कार्यालय परिसर, महारानीगंज, घोसियाना, पटेल नगर और काशीराम आवासीय कॉलोनी समेत 12 ऐसे ओवरहेड टैंकों से जलापूर्ति की जाती है। सो मौजूद वक्त पे यानी डिसाइडेड टाइम पर उसके हिसाब से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 5 से रात के 9 बजे तक पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन चूंकि बिजली कटौती की वजह से कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी असर पड़ रहा है और इसके अलावा लो वोल्टेज की भी काफ़ी शिकायत की जा रही है। सो लो वोल्टेज को लेकर परसपुर से लो वोल्टेज और अघोषित जो बिजली की कटौती है उससे कस्बे के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग से भी बेहाली बढ़ी है। सो इस ज़बरदस्त गर्मी और उमस के बीच में ज़िले भर में जो बिजली आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई नज़र आ रही है। शहर से लेकर गांव तक जो है अघोषित कटौती, बार बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है 33 ट्रेनें जो निरस्त हो गई हैं और 53 का जो है वो बदलने वाला है रूट, जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए क्योंकि अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं या करने वाले हैं तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको बता दें कि गोंडा से गोंडा कचहरी स्टेशन तक तीसरी लाइन का जो है वो इंटरलॉक हो रहा है जिसकी वजह से ये 53 ट्रेन का रूट बदलेगा और 33 ट्रेनों को निरस्त ही कर दिया जाएगा। सो गोंडा से गोंडा कचहरी तक तीसरी रेल लाइन का इंटरलॉकिंग काम शुरुआत 10 जून से पहले चरण में 10 जून से 21 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग, 22 जून से 7 जुलाई तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 8 और 9 जुलाई को नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई को जो मुख्य संरक्षा आयुक्त हैं CRS नई तीसरी लाइन का निरीक्षण करेंगे। सो रेलवे प्रशासन ने इस काम के लिए जून और जुलाई में मेगा ब्लॉक लेने का फैसला लिया है। तीसरी लाइन के बनने और नॉन इंटरलॉकिंग का काम के चलते ट्रेनों के जो संचालन उस पर बड़े लेवल पर बदलाव किया गया है। सो इस दौरान 33 ट्रेनें जो है वो निरस्त रहेंगी और 53 ट्रेनों का जो रास्ता है वो बदला जाएगा। इसके अलावा 18 ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया जाएगा, 3 ट्रेनों के जो है उनको मार्ग में ही रोका जाएगा, 7 ट्रेनों का पुनर्निर्धारण किया गया है। सो कौन सी ट्रेनें निरस्त होने वाली हैं आइए हम आपको बता देते हैं। 5 जुलाई
22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, 7 जुलाई 2092 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 6 से 10 जुलाई के बीच रहेंगी निरस्त 1:50:81 गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस जो शाम 5:50 पर निकलती है, और 7 से 11 जुलाई तक 1:50:82 गोमती नगर गोरखपुर एक्सप्रेस, 6 जुलाई को 1:51:33 छपरा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, 8 जुलाई को 1:51:34 आनंद विहार टर्मिनल छपरा एक्सप्रेस, 8 और 9 जुलाई को 1:50:31 और 1:50:32 गोरखपुर लखनऊ जंक्शन गोरखपुर एक्सप्रेस, 7 से 10 जुलाई को 1:50:70 ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस, 8 से 11 जुलाई 1:50:69 गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस है, 10 और 11 जुलाई को 1:46:17 पूर्णिया कोट अमृतसर एक्सप्रेस, 8 और 9 जुलाई को 1:46:18 अमृतसर पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, 8 जुलाई से 22199 ग्वालियर बलरामपुर एक्सप्रेस, 9 जुलाई को 22200 और बलरामपुर ग्वालियर एक्सप्रेस, 9 जुलाई को 1:50:29 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस, 11 जुलाई को 1:50:30 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, 21 जून को 75105 थावे नकहा जंगल डेमू, और 21 जून को 75107 नकहा जंगल गोंडा डेमू। सो 21 जून से 10 जुलाई तक 75109 गोंडा बहराइच डेमू, 22 जून से 10 जुलाई 75110 बहराइच गोंडा डेमू, 22 जून से 10 जुलाई 75111 और 75112 गोंडा बहराइच डेमू, 22 जून से 10 जुलाई 75113 75114 गोंडा बहराइच गोंडा डेमू, 22 जून से 10 जुलाई 55091 गोंडा सीतापुर सवारी गाड़ी, 22 जून से 11 जुलाई 55092 सीतापुर गोंडा सवारी एक्सप्रेस और मतलब सवारी गाड़ी, 22 जून से 10 जुलाई 55093 गोरखपुर गोंडा सवारी गाड़ी, 22 जून से 11 जुलाई 5:50:94 गोंडा गोरखपुर सवारी गाड़ी, इसके अलावा 22 जून से 11 जुलाई 5:50:33 और 5:50:34 गोंडा सीतापुर गोंडा सवारी गाड़ी, 22 जून से 11 जुलाई 5:50:59 और 5:50:60 सीतापुर शाहजहांपुर सीतापुर सवारी गाड़ी, 29 जून से 10 जुलाई तक 65115 और 65116 भटपी अयोध्या धाम भटपी मेमू, इसके अलावा 29 जून से 10 जुलाई 64220 अयोध्या कैंट मनकापुर मेमू, 22 जून से 10 जुलाई 64223 और 64224 मनकापुर अयोध्या धाम मनकापुर मेमू, 29 जून से 10 जुलाई 64217 मनकापुर अयोध्या कैंट मेमू, और 12 जुलाई से 5:50:32 गोंडा गोरखपुर सवारी गाड़ी, इसके अलावा 12 जुलाई में 5:50:75 गोरखपुर बढ़नी सवारी गाड़ी। ये जो ट्रेन्स हैं ये पूरी तरह से निरस्त रहने वाली हैं, जिस जिस डेट में आपको बताया गया है उस डेट में ये निरस्त रहेंगी। इसके अलावा हमने आपको बता ही दिया गया है कि 33 ट्रेन्स जो हैं ये निरस्त रहने वाली हैं, 53 ट्रेन्स का जो है वो रूट चेंज किया जाएगा, 18 ट्रेनों को मतलब लिमिटेड करके चलाया जाएगा, और 3 ट्रेनों का जो मार्ग है उसके रास्ते को रोका जाएगा, और 7 ट्रेनों को वापस से किया जाएगा। सो इस तरह से ये रूट डायवर्जन जो है वो चल रहा है, क्योंकि गोंडा जंक्शन से गोंडा कचहरी के बीच में जो है तीसरी जो लाइन हो रही है बिछ रही है उसके इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जन आरोग्य मेला, सुबह 10 बजे से लग रहा है, यानी अब से 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगा ये। ज़िले के सभी 55 PHC में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। सो आसपास रहने वाले जो भी ग्रामीण हमारे हैं और इस जन आरोग्य मेले का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंच जाएं, जहां पर आपको जन आरोग्य मेले का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है सुबह 10 बजे से। सो गोंडा में अंबेडकर चौराहे के पास वेंकटाचार्य क्लब है, जहां पे निःशुल्क फ्री स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, वहां जाकर के भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है कि फ्रिज में रखा खाना जो है वो बीमार बना रहा है। सो भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती के बीच में फ्रिज में रखा खाना लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है।
शाम को बचा जो खाना है फ्रिज में रखकर सुबह दोबारा गर्म करके खाने वाले लोग जो है तेज़ी से बीमार पड़ रहे हैं। और ज़िला अस्पताल मेडिकल कॉलेज CHC PHC में फूड पॉइजनिंग उल्टी दस्त के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं बताया गया है कि भाई फ़िलहाल आप इसको अवॉइड करें। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो है वो वन स्टॉप सेंटर और बाल गृह का चूंकि निरीक्षण किया गया है, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव हैं अंकिता सिंह, इन्होंने कल सैटरडे को स्टेशन रोड पर मौजूद वन स्टॉप सेंटर पोटरगंज मौजूद बाल गृह यानी बालिकाओं के लिए निरीक्षण किया। वन स्टॉप सेंटर की जो प्रबंधक हैं चेतना सिंह, उन्होंने बताया कि केंद्र पर रह रही पीड़िताओं को शासन के दिशा निर्देश के हिसाब से सभी जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं उपलब्ध कराई जा रही है। पोर्टरगंज में मौजूद बालगृह बालिका में कर्मचारियों ने बताया कि जो अभी फ़िलहाल में बालगृह में 39 बालिकाएं रह रही हैं। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की डिफेंस काउंसिल ब्रजलाल तिवारी, काउंसलर दीप शिखा सहित और भी कई सारे कर्मचारी कल की विजिट में मौजूद थे। इसके साथ ही साथ जो है 12 बीज की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जी हाँ, ज़िला कृषि अधिकारी CP सिंह की अगुवाई में कृषि विभाग की टीम ने कल सैटरडे को खरगोपुर बाजार में बीज की 12 दुकानों का अचानक से निरीक्षण किया। जांच के दौरान मेसर्स सोनी बीज भंडार खरगोपुर बीज का स्टॉक और वितरण रजिस्टर पूरा नहीं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और फिलहाल जो है खरीफ सीजन को देखते हुए इस तरह की विजिट्स बढ़ा दी गई है। ये रहा एक आपके लिए गोंडा अपडेट की तरफ से। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा गोंडा अपडेट, काफ़ी कुछ आपको मिल गया होगा। तो चलिए फ़िलहाल अब आगे बढ़ते हैं अपने म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस से आते हैं। आने के बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ाने वाले हैं, चलने वाले हैं। आप सुनते रहिए अपना गोंडा रेडियो 11.6 FM, क्योंकि यही तो है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: वैसे एक जबरदस्त जानकारी मिली, मुझे लगा आप तक पहुंचा देनी चाहिए। जानकारी जो है वो डायनासोर से जुड़ी हुई है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो बात आ रही है ये कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से आ रही है। जी हाँ, आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश डायनासोर ये कहाँ हमने जोड़ दिया, तो चलिए भाई हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर हुई क्या बात है जो डायनासोर से हम उत्तर प्रदेश के उस जिले को जोड़ रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो देखिए, डायनासोर जो है दुनिया की हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए हो चाहे आम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा रहस्य और रोमांच का ये हमेशा सब्जेक्ट रहा है डायनासोर्स। सो अब थाईलैंड में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विशाल काय डायनासोर की खोज की है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर माना जा रहा है। जी हाँ, नागा टाइटन चेयाफुमेंसिस नाम का ये डायनासोर तकरीबन 27 टन वजनी, 88 फीट लंबा, यानी इसका वजन लगभग 9 एशियाई हाथियों के बराबर बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये लंबे गले वाला शाकाहारी सौरोपोड डायनासोर था जो लगभग 10 से 12 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। हैरानी की बात यह कि ये मशहूर टी रेक्स से भी करीब 4 करोड़ साल पुराना माना जा रहा है और आकार में उससे दोगुना बड़ा था। सो इस नई प्रजाति का जीवाश्म थाईलैंड के उत्तर पूर्वी इलाके में एक तालाब के पास मिला था। रिसर्च टीम का जो नेतृत्व है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता कर रहे हैं और इस पर स्टडी जो है वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुई है। सो नागा टाइटन नाम जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का लोक कथाओं के नाग और ग्रीक जो मिथक हैं शक्तिशाली यानी टाइटन शब्द से इंस्पायर है। वहीं चेयाफुमेंसिस नाम जो है उस चेयाफुम प्रांत को दर्शाता है जहां इसके जीवाश्म खोजे गए हैं। सो वैज्ञानिकों का मानना है ये खोज एक नए साल डायनासोर की पहचान नहीं बल्कि इससे करोड़ों साल पुराने जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के वातावरण को समझने में मदद मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं कि यूपी का नाम हमने अब क्यों लिया, इसमें तो कहीं भी यूपी का नाम आया नहीं है। अरे जनाब, यूपी के गोंडा एफएम से हम बता रहे हैं ना इस जानकारी को, इसलिए यूपी का नाम आया। आप ही मजाक समझ नहीं पाते हैं ना। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं, गाने के उस पार आकर के वापस से अब बातचीत करेंगे क्योंकि अब वक्त हो जाएगा आपसे कॉल इन प्रोग्राम गायगा गोंडा विद आरजे अदनान में बात करने का। सो फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद बातचीत शुरू करते हैं। सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम 99.6 एफएम आरजे अदनान के साथ।

0: क्या बात है जी, 10:01 यानी पूरी तरह से टाइम हो चला आपसे बातचीत करने का। और बातचीत कैसे, कॉल इन प्रोग्राम में, किस में, गा गगोना विद अर्जुना वाले स्पेशल शो में। तो चलिए भाई चलते हैं और देखते हैं पहली कॉल किधर से, कहां से और किसने की है और कौन बातचीत कर रहे हैं आज हमसे हमारे इस स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोना में। हाँ जी हेलो
1: जी, नमस्कार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल?
1: अच्छे हैं, आई एम श्री देवी प्रसाद, उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया वाले।
0: अरे क्या बात है देवी प्रसाद जी, कहाँ थे आप भाई इतने दिन से?
1: आपका कार्यक्रम तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सही राइट टाइम पर कॉल कर दिया, इसलिए घर पे है नहीं।
0: घर पे आप है नहीं, कहाँ हैं आप?
1: दो दिन पे मैं भैया ग्राम सभा में है, दो दिन से
0: आप वहीं पे हैं
1: जी, अब कल आएंगे।
0: क्या बात है, कैसा लग रहा है वहाँ पर?
1: बहुत अच्छा, यहाँ पर निमंत्रण है, भंडारा था।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए आए हैं जी।
0: हमें लगा वहाँ गर्मी कम थी इसलिए चले गए
1: जी, आज यहाँ पर ख्वाहिश आई है तो इसलिए अब कल निकलेंगे यहाँ से।
0: अरे वाह, क्या है तो भाई भंडारे में, क्या है आज
1: भंडारे में? जो कुछ व्यवस्था है वो सब ठीक है, एक हफ्ता पहले बैठा हुआ था भंडारा, 16 तारीख को प्रारंभ हुआ था।
0: हाँ,
1: तो आज ख्वाहिश आई है सर।
0: क्या बात है, मतलब आप ऐसे भंडारे में गए हैं जहाँ एक हफ्ते से खिलाया जा रहा है?
1: खिलाया जा रहा है वो तो बात है, ठीक है, जो आता है वो खाता पीता है।
0: हुँ.
1: और अच्छा हो रहा था तो इसलिए चले आए, निमंत्रण था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हमको भी बस यही जानना था कि किस तरह से गर्मी में आप अपना ध्यान रख पा रहे हैं।
1: गर्मी में अब जैसे हर घर तो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कहीं पर अगर चले जाए तो।
0: अच्छा, उतना
1: लेकर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: हाँ जी,
1: जैसे कहने का मतलब है कोई दिक्कत हो, इलेक्ट्रॉल जैसे कोई चीज है, इनो, ये सब व्यवस्था करने के पहले सोचना चाहिए कि व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये सब करना चाहिए
0: जी। बिल्कुल, बहुत
1: सही, तो लाभ कही,
0: क्या बात है, सेहत सही तो लाभ कहीं, क्या बात है, बहुत प्यारी
1: है आपके कार्यक्रम से, शिक्षा मिल रही है।
0: वाह क्या बात है, मतलब आप सुन रहे हैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: हाँ,
0: तो और
1: कभी कभार आपका कोई कार्यक्रम जैसे नहीं रहते हैं घर पे तो नहीं सुन पाते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, वो जायज है,
1: ईमानदारी करते हैं कि अगर घर पे नहीं है तो हम बता देते हैं घर पे नहीं है, फिर भी आपके पास कॉल कर दिए हैं।
0: ये
1: प्रोग्राम होता है सर,
0: ये ईमानदारी पसंद आई आपकी हमें,
1: ईमानदारी है। हाँ
0: बेशक ईमानदारी है,
1: लेकिन अपने मुंह से कोई तारीफ करत बनत कहाँ है सर?
0: अरे आप कर लिया करिए, हमने पूरी छूट दिया
1: आपने छूट दे दिया
0: हमने छूट दे दिया, बाकी बचेगा वो हम कर लेंगे
1: आप नहीं है सर।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये
1: दुख हो रहा है।
0: हाँ बताइए,
1: जो कार्यक्रम था हंसना मना है सोमवार को आता था 5 से 6
0: जी जी,
1: अगर उस टाइम कोई दूसरा कार्यक्रम हो गया है तो खैर अच्छी बात है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन किसी दूसरे दिन ये कार्यक्रम अगर दिया किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये कार्यक्रम बंद हो गया इसलिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है।
0: हाँ बिल्कुल, तो शेड्यूल नहीं फिट बैठने की वजह से इस तरह से प्रोग्राम को फिलहाल रोकना पड़ा, और हम कुछ नया लाने के लिए जरूर विचार कर रहे हैं।
1: हाँ जी सर, विचार करिए, और उसके बाद में ये कार्यक्रम किसी दिन और किसी भी टाइम कर दीजिए, करिए जैसे एक हफ्ता का टाइम होता है
0: जी,
1: और उसमें कोई भी टाइम फिक्स कर दीजिए तो वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है। उसका टाइम जैसे कोई भी काम करना है तो उसका टाइम निकालना पड़ता है, तो हम भी टाइम निकाल के सुनेंगे और सभी श्रोता सुनेंगे, ये कार्यक्रम से बहुत प्रेरणा मिलता था और थोड़ा मनोरंजन हो जाता था सर।
0: नहीं बहुत अच्छा कि आपने अपनी राय रखी, ये बहुत अच्छा लगा हमको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैंने बहुत पहले रखने वाले थे लेकिन मैंने सोचा कि जब सर जी से बात हो तब रखें।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया
1: को रखें ताकि मंडे आए तो उसका मतलब ध्यान रखा जाए।
0: बिल्कुल ध्यान रख लिया गया है आपने जो कहा। अच्छा ये जो आप सेहत सही लाभ कई सुनते हैं, इससे क्या आपने कभी किसी और को कुछ बताया है जो आपने जाना है समझा है शो के जरिए
1: कोई भी चीज, अगर कोई कहता है मेरा तबीयत खराब हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, इसको ये बताते हैं राधे राधे।
0: तो इसको बताते हैं राधे राधे।
1: अरे कोई है,
0: अच्छा हमें लगा आपने बताया जिसकी तबीयत खराब हो जाती है उसको आप बताते हैं राधे राधे।
1: नहीं सर नहीं, जैसे अच्छा, अच्छा। सब लोग यहाँ आते जाते रहते हैं ना।
0: हाँ हाँ हाँ वो समझ गया, अचानक से आप बात कर रहे हैं बीच में कोई आ गया तो फिर।
1: जी जी आप समझ पाए, आप
0: हम समझदार थोड़े बहुत तो है ही है। फिर
1: थोड़े बहुत नहीं
0: क्या बताते हैं आप
1: है सर?
0: जी किसी की तबीयत खराब होती तो क्या बताते हैं आप?
1: बताते हैं अपनी धन सेहत है और जैसे इलाज कोई भी चीज है, थोड़ा तबीयत अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उसका पहले इलाज कराइए या जो संभव हो उसका सेहत अपना सही करिए।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: सेहत ही असली धन है, सेहत सही तो लाभ कही। जब सेहत नहीं सही रहेगी तो दुनिया दौलत घर में धरा है तो क्या करोगे,
0: क्या करेंगे। सही बात है, बहुत प्यारी बात कही कि अगर सेहत ही नहीं है।
1: एक तो मैंने शेर सुना था
0: जी,
1: इंसान जीता है ऐसे कि कभी मरेगा नहीं, उम्र ऐसे जाता है कि कभी गया ही नहीं। और उसके बाद में ये सुना था कि दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत फिर से वापस पाने के लिए दौलत भी खो देता है। तो ऐसा मत करिए कि एक का तोड़ बेका था दिमा हाथे एक को ना आवे।
0: वाह,
1: हमारे हिसाब से तो यही है, हम किसी को प्रेरणा देने लायक तो नहीं है, लेकिन आपसे ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं और सभी श्रोता सुन रहे हैं वो बात खैर फिलहाल ठीक है।
0: नहीं बहुत अच्छे से आपने बताया है, जो एग्जांपल दिया आपने जिस तरीके से बताया, बहुत

0: जैसे कोई कहते हैं अपना घर साफ करिए, फिर उसके बाद में पास पड़ोस गांव, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर देश साफ होगा ना।
1: सही बात है।
0: इसलिए सर जो बात कह रहे हैं यही सब है। और जो एक दिन पेड़ लगाने की बात हो रही थी, सीना मैडम से बात हो रही थी
1: जी,
0: तो मैंने बताया था कि पेड़ तो दिखाए में लगाए, फायदा क्या, 500 पेड़ लगा दो, 2000 पेड़ लगा दो, उससे क्या होगा। कम से कम एक से दो पेड़ लगाइए, एक या दो जितना क्षमता हो उसका उतना परवरिश कर ले जाओ,
1: परवरिश कर ले जाओ, सबसे बड़ी बात तो ये होती है।
0: हेल्थी के लिए तो जितना मन हो उतना लगा दो, उसके बाद में रहेगा नहीं तो फायदा, उससे नतीजा क्या निकलेगा।
1: सही है, बिल्कुल सही है।
0: खाने के लिए, सिल्की लेने के लिए सर।
1: सही बात है।
0: ऐसे कहने का मतलब है कोई चीज हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जितना परवरिश कर ले जाओ, जितना क्षमता है सक्षम हो वही हिसाब से कोई भी काम करिए, ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगा तो नुकसान करेगा।
1: बेशक सही बात,
0: थोड़ा कम रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन ओवरलोडिंग नुकसान करेगा। अब इस गर्मी में अगर दो पूरी ज्यादा खा लिया जाए तो नुकसान ही तो करेगा।
1: अरे क्या बात है, आपने भंडारे से बड़ा ही बड़ा मैसेज दिया है कि ज्यादा पूरी खाने से दिक्कत हो जाएगी। तो भंडारे में जाए, भंडारा जरूर एंजॉय करें, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा खाने से बच जाए।
0: बहुत सेहत ध्यान रखें,
1: बिल्कुल
0: सेहत को ध्यान में रखते हुए भोजन पानी करना चाहिए,
1: भोजन पानी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है
0: जी सर।
1: देव प्रसाद जी बहुत अच्छा लगा
0: जी, बाद में बात करेंगे।
1: बेशक बेशक, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा,
0: बाय
1: बाय, टेक केयर, खुश रहिए आप भी। सो ये हमारे साथ में देव प्रसाद जी थे जो कि सुन रहे थे गोंडा से ही, और फिलहाल भाई निमंत्रण इनको मिला था और ये भंडारे में गए थे और अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, और इसी बातचीत में काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई जो सच में ध्यान रखने योग्य हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं, यही कि सेहत अगर शुरुआत से लेकर के नहीं चले तो बाद में जाके गड़बड़ा जाती है, राइट। चलिए इसी कड़ी में चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
2: फूलों की चमक, फूलों की ताजगी, फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, रेडियो ज्ञान स्त्री तो है खुशियों का कमल। गुड मॉर्निंग सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, गुड मॉर्निंग टू यू। अपना नाम बता दे हमारे श्रोताओं को।
2: अनु पांडे।
1: हाँ हाय अनु, कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे, बस आप बताइए आप कैसे?
1: बहुत बढ़िया है, बस हमको तो ये जानना था कि अनु कैसे अपना बचाव कर रही हैं गर्मी में।
2: अरे सर पूछिए मत, बताते बताते थक गई और नजर भी लग गई।
1: बताते बताते थक गई और नजर भी लग गई, ये तो एक शेर लग रहा है, एक अच्छा सा राइमिंग वाला।
2: हाँ।
1: किधर बताया, किधर थक गई और किधर नजर लग गई?
2: बहुत सारे एथेम पे बताया कि मैं अभी क्या कर रही हूँ गर्मी से बचने के लिए।
1: क्या कर रही हैं आप एफएम पर बात कर रही हैं गर्मी से बचने के लिए?
2: क्या
1: गर्मी से बचने के लिए आप एफएम पर बात कर रही हैं?
2: हाँ ये भी सही है, क्योंकि एफएम भी एक खुशियों मतलब बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कूल रखता है सबको, जो लोग भी सुनते हैं उनको गर्मी नहीं लगती है।
1: सही बात है, क्योंकि घर के अंदर रख के सुनते हैं तो आप इसी बहाने अंदर रहते हैं, ना हो तो आप बाहर पता नहीं कहाँ धूप में भटकते फिरे, है ना, गर्मी से बचने का।
2: मैं खीरा खा रही हूँ जो मेरे घर पे लगा है, मैं नींबू पानी पी रही हूँ जो मेरे घर पे है, मैं तरबूज खा रही हूँ जो मेरे घर पे है, मैं छाछ पी रही हूँ जो मेरे घर पे है।
1: मतलब सारा तो आपने कर लिया, बाकी मार्केट में बचा ही क्या फिर?
2: और आम भी मेरे घर पे, मैं उसको भी यूज कर रही हूँ।
1: ओके तो मतलब आपने कहा कि आप तरबूज का इस्तेमाल कर रही हैं, छाछ का इस्तेमाल कर रही हैं, पानी ज्यादा पी रही हैं।
2: हाँ।
1: बाहर जब निकलती हैं तो किन किन चीजों का आप ख्याल रखते हैं, अपने साथ क्या लेकर के जाते हैं?
2: बाहर निकलती हूँ तो पानी का बोतल रखती हूँ साथ में, और सिर को सिर पट्टे से ढक के रखती हूँ, उसके ऊपर कैप लगा के रखती हूँ बस।
1: अच्छा मतलब सिर को ढक के,
2: आंख में चश्मा लगा लेती हूँ।
1: आंख में चश्मा लगा लेते हैं आप?
2: हाँ।
1: आंख में चश्मा लगा लेते हैं?
2: हाँ।
1: आंख पे लगा लेते हैं, आंख में लगा लेते हैं?
2: अरे सर वो तो एक ही हुआ, आंख पे लगाओ या आंख में?
1: आंख में।

0: लगाने का मतलब है आंख के अंदर लगा लेते चश्मा।
1: अरे नहीं,
0: जस्ट इमेजिन कि आपने आंख के अंदर लगा लिया हो और आप नीचे पलकों से ऊपर पलकों से रोके हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप निकलते हैं तो सिर को ढक के निकलते हैं, यानी कोई दुपट्टा या कोई इस तरह की चीज जो डायरेक्ट धूप लगने से आपको बचाती है, ये बहुत अच्छी बात है। और घर पर रहते
1: हुए ढीले ढाले पहनती हूँ,
0: कपड़े भी ढीले ढाले पहनते हैं ताकि गर्मी उस तरह जो है वो लगे ना बॉडी पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपाय कर रही हैं आप। आम का सीजन शुरू हो गया है, घर पे आम आया नहीं आया अभी?
1: घर पे आम मार्केट से भी आया और घर में भी लगाया, मतलब घर के बगल में।
0: घर के बगल में है तो मतलब वो घर वाले युवा चुपके से जो तोड़ते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है। पड़ोसी सुन तो नहीं रहे एफएम आपका?
1: नहीं सुन रहे, पर मेरे आम लगा है। पड़ोसी क्या तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वो स्टूडियो में जो पेड़ लगा था अगर उसमें आम लगा हो तो मैं आ जाऊँ।
0: हाँ, अभी कच्चे हैं आम और उम्मीद है पकने से पहले ही ये कच्चे कच्चे जिसको जिसको जहाँ ले जाना है वो खुद ही ले जाएगा।
1: तब तो मैं भी आ जाऊँ?
0: हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कब रोका है, आप आ सकती हैं।
1: सर पता है आप सिर्फ वहाँ खड़े रहना, बस आपको बाकी कुछ भी नहीं करना, मैं आराम से तोड़ लूंगी और आपको एक भी आम यहाँ उठानी भी नहीं पड़ेगी, एक भी आम नहीं उठाना है क्योंकि मैं थैले लेके चढ़ूंगी पेड़ पे और मैं तोड़ तोड़ के वहीं रख लूंगी सारे थैले भी।
0: नहीं, हम वहाँ खड़े तो रहेंगे लेकिन एक काम को और करना पड़ेगा।
1: क्या?
0: हमको बस बाद में चिल्लाना, अरे पकड़ो पकड़ो देखो कौन है।
1: तो मैं तो पेड़ पे रहूंगी नीचे, सब लोग आएंगे मुझे को पकड़ कैसे पाएंगे?
0: तो जब उतरेंगी आप तो आपको दौड़ा लिया जाएगा।
1: मैं उतरूंगी नहीं, मैं रहूंगी पत्तियों के बीच में छुप जाऊंगी।
0: तो फिर लंगड़ मार के, जो पहले पतंग छुड़ाने के लिए लंगड़ मारा जाता था ना, उसी से मार के आपको उतारा जाएगा।
1: अरे सर मैं इतनी ऊपर चली जाऊंगी, इतनी ऊपर कि आप लोगों को कोई उपाय मतलब काम ही नहीं आएगा।
0: अरे छत से ऊपर नहीं है हमारे यहाँ पेड़, छत में एकदम बराबर का है, बराबर ऊपर जाओ तो छत के बराबर है।
1: तो छत से उतर कर उधर दूसरी तरफ से निकल जाएंगे?
0: नहीं नहीं, पहले से तैनात रखे है ना हम।
1: मैं घूस दे दूंगी, कह दूंगी दो चार आम ले लो आप भी, लेकिन मुझको निकल जाने दो।
0: नहीं, हमारे ऑफिस वाले यहाँ पे जो वर्कर्स हैं काफी ईमानदार हैं, आपकी घूस से नहीं मारने वाले।
1: तो फिर मैं वही अपना डायलॉग पुराना यूज करूंगी, जानते नहीं हो मुझको, मैं उठवा लूंगी यहीं से।
0: तो फिलहाल तो ऐसा कहते कहते आप उठ जाएंगे वहाँ से।
1: मुझको कोई नहीं उठा सकता, मैं बहुत भारी हूँ।
0: कुल मिला करके आपके बचने का कोई चांस नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। हाँ पक्का
1: सर, लगा लो सर। सर
0: नहीं, शर्त नहीं लगाना है, आप आ जाइए, आप उठ के देख लीजिएगा।
1: नहीं लगा लो सर, मैं फिर आम तोड़ के रहूंगी, आराम से घर भी वापस आ जाऊंगी।
0: चलिए अच्छी बात है, आप कहीं पे भी तोड़िए, सही सलामत रहिए, और अगर पकड़ी जाइए तो फिर उसके आगे तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ना ही पकड़ी जाइए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ,
1: ये बहुत अच्छी दुआ की आपने कि ना ही पकड़ी जाओ तो ज्यादा अच्छा है। जब मैं कहीं आम देखती हूँ तो आम पे तो कम मन आता है, पर कहीं फूल उल देख लेती हूँ तो बहुत मन आ जाता है उस पे, और मैं उसको चोरी करके ही रहती हूँ फूलों की।
0: फूलों की चोरी करके ही रहते हैं आप?
1: हाँ, और एक बार अब जैसे मार्केट में जहाँ दिख रहा हुआ तो पैसे देख के लिए, जहाँ नहीं दिख रहा है किसी ने लगा रखा है, मुझको पसंद आ गया, फिर क्या करूँ। और एक जगह मैं पकड़ी भी गई थी।
0: पकड़े गए थे?
1: वो मैम दिखती अंदर पे, हाँ। बोली ये फूल किससे पूछ के ले रही हूँ, हम कहे किसी से नहीं, तो कहीं बेटा पूछा क्यों नहीं, हम तो आप दिखी ही नहीं, मुझे लगा यहाँ कोई रहता ही नहीं, तो पे कैसे पूछती, अभी आई हूँ अभी पूछ ले रहे, ले जाए ना सर।
0: अब इतने उससे कहोगे तो फिर कौन रुकेगा, फिर तो कहेगा जाओ फिर लेके आओ। हाँ।
1: तो मैम ने कहा ले जाओ, थोड़ा ज्यादा ले लिया है, हम कहे मैम हमको पता रहा ऐसे लगा है तो हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही चोरी करते रहिए और नाम रोशन करते रहिए। फिलहाल हमारा नाम कहीं मत बताइएगा, ज्यादा रोशन हो जाएगा।
1: सर अभी ना सुरक्षा विभाग वाले मुझे बढ़ावा दे रहे थे चोरी करने के लिए, अब एफएम वाले भी दे रहे हैं।
0: नहीं नहीं, एफएम वाले बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये बताई गई बातें महज एक काल्पनिक बातें थी, इस धारावाहिक से इसकी सच्चाई पर कोई असर नहीं आता है, इसलिए इसको आप भूल जाएं।
1: सर फूलों की चोरी नहीं मानी जाती और खाने पीने वाली चीजों की चोरी नहीं मानी जाती।
0: बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और आप यूं ही तरक्की करते रहे, हम तो यही दुआ करेंगे।
1: अरे नहीं, मैं तो ऐसे फोन ले लेती हूँ सिर्फ, भक्ति कहीं चोरी थोड़ी ना करती हूँ। अच्छा लगता है मुझको तो ले लेती हूँ, क्या करूँ। सबको अच्छा लगता है, घर के लाती हूँ, लगाती हूँ, बच्चों जैसे उसकी देखभाल करती हूँ, फिर पड़ोसी भी मांग के लेकर जाते हैं, उनको भी तो दे देती हूँ।
0: करेक्ट करेक्ट। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने जो गर्मी के बारे में बताया वो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह के उपाय जो हैं वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अनु, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और बताने के लिए।
1: ओके सर, बाय
0: बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी अनु जिनसे हमने बातचीत किया और इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से ये जो हैं गर्मी से बचाव कर रही हैं। फिलहाल जो है वो पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है, इसी बीच में अब हम चढ़ते हुए पारे में चलिए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन मौजूद। हाँ जी हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल, क्या नाम है आपका?
2: बढ़िया बढ़िया, माय नेम इज रीत पाठक, आई एम फ्रॉम विष्णुपुरी कॉलोनी बिहाइंड गोदाल होटल।
0: माय नेम इज एंथनी गोसावर। अरे नहीं नहीं नहीं, बिलाल अब अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा 89.6 एफएम का परिवार है। और बताइए आपके हालचाल, आप कैसी हैं?
2: जी सर बढ़िया बढ़िया, आप बताएं।
0: लग नहीं रहा है, जुकाम थोड़ा लग रहा है।
2: हाँ थोड़ा जुकाम खांसी।
0: आपने किसकी आइसक्रीम चुरा के खा लिया था जिससे इससे ऐसे हालात हो गए आज?
2: अरे सर मैं चोरी वोरी नहीं करती। मैं
0: नहीं, अभी तो कहा अनु ने कि फूलों की चोरी और खाने की चोरी चोरी नहीं होती।
2: अच्छा हाँ, फूल चोर तो बहुत आते हैं भाई, सुबह मेरे यहाँ गार्डन से सारे फूल गायब हो जाते हैं। मैं तो भगवान जी को एक फूल नहीं चलाती, मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे अंदर सारे फ्लावर्स है। उनको पढ़ना बहुत कष्ट होता है सर, क्योंकि हम बिल्कुल उनको बच्चों की तरह सहेजते हैं, लेकिन ये है कि लोग ले जाते हैं तोड़ के भगवान को चढ़ाने के लिए। मैं देख के भी हम मना नहीं करते, लोग मेरे सामने भी उनको लेके जाते हैं, लेकिन मतलब मैं अपने घर में रहते हुए मैं अपने भगवान जी को नहीं चढ़ा पाती, भूल जाते हैं।
0: चलिए
2: तोड़ना,
0: कहते हैं कि वो नियत बहुत ज्यादा असर डालती है, और नियत आपकी होती है कि भाई कोई और चढ़ाने ले जा रहा है तो वही ले जाए, ये बहुत अच्छी बात है।
2: मैं बहुत साहस दे देती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती कि भले ही मेरे पास ना रह जाए एक भी फूल, लेकिन मैं सामने वाले को दे देती हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा आप गर्मी से बचाव कैसे कर रही हैं?
2: गर्मी क्या, गर्मी तो है ही है, इससे कैसे बचाव किया जाए,
0: कैसे बचाव किया जाए? नहीं अब बता दीजिए, हम पूछना भी यही चाह रहे हैं।
2: अब क्या सर, जिसको निकलना है वो तो निकल ही रहा है, हम लोग तो भाई कॉलेज जाना है, लेक्चर देना है तो जाना ही है। अभी तो खैर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अभी कल महाविद्यालय में अभी था एग्जाम था तो वहाँ गए थे, 2 बजे मेन, दोपहर में 2 बजे लौट के आए हैं। जो गर्मी की क्या ही बताए।
0: लेक्चर देते समय कोई ऐसे शब्द तो नहीं इस्तेमाल करती जिससे और लगे कि वातावरण और भी ज्यादा गर्म हो गया है?
2: नहीं नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखती हूँ।
0: या जैसे आप ऐसा तो नहीं करती लेक्चर देते हुए बहुत बार बीच बीच में बर्फ बोलती हूँ आप, आइस क्यूब्स बोलती हूँ जिससे थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाता हो, ऐसा कुछ?
2: कभी कभी हट बोल देते हैं, जैसे घर पे हट बोलते हैं ऐसे कभी कभी निकल जाता है मुझे, लेकिन मतलब बहुत कंट्रोल।
0: अच्छा,
2: और ऐसा कुछ नहीं बोलते कि मतलब वो आग लगे।
0: नहीं हमें लगा मतलब जैसे माहौल को कूल कूल करने के लिए आप ठंडा पानी बोल देते होंगे, झरना बोल देते होंगे, तालाब नदी ये सब बोल देते होंगे।
2: नहीं सर ये सब क्यों कहने की बातें हैं, कूल तो तभी होगा जब बारिश आएगी, अभी तो बहुत हॉट मौसम है।
0: हाँ बेशक, और इसी में अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली खान पीन को लेकर के।
2: जी जी।
0: क्या गर्मी आते ही कुछ आपका स्केड्यूल चेंज होता है खाने पीने को लेकर के?
2: जी बिल्कुल होता है, मैं बहुत ज्यादा मसाले वाले खाने नहीं खाती हूँ, दूध की चाय केवल 2 बार पीते हैं, एक बार सुबह आधी कप, एक बार शाम को, बीच में 1-2 बार ब्लैक टी या ग्रीन टी पी लेते हैं बना के, और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते, या बहुत मान लीजिए घर का मतलब पानी रखा है नॉर्मल पानी तो उसे बहुत हल्का सा मिला लेंगे, थोड़ा सा उसका गर्माहट चला जाए, मतलब नॉर्मल ही रहता है वो। और फ्रिज की चीजें सीधे नहीं यूज करते, उसको थोड़ा सा उसको समय देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए, और थोड़ा सा इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन देखिए ध्यान रखा तो भी हो गया जुकाम,
0: क्या बात है,
2: जो होना होता है वो हो ही जाता है।
0: सही
2: ऐसे है ना, ये लोग जितना ही बस के चलते हैं उनको कंकड़ उतने ही ज्यादा गड़ते हैं।
0: अरे अरे अरे क्या बात है क्या बात है, लेकिन चप्पल पहन के चला करिए ना, आप भी तो नंगे पैर निकल जाते हैं।
2: नहीं सर, थोड़ा सा बाहर लॉन वगैरह है तो हम लोग उस पर कोशिश करते हैं घास पास पे थोड़ा सा रंगे पैर चलने का।
0: हाँ तो अब उसमें तो गड़ जाएगा फिर, आप नहीं कह सकते ना किसी को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने किस तरह से खान पीन आपका चेंज हो जाता है जैसे ही गर्मियाँ आती है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आप भी गर्मी से बचे रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो आपकी तबीयत ख़राब हुई है वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं।
2: थैंक यू सो मच
0: टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। सो ये थी हमारे साथ में रीता पाठक जी, और आपने भी बताया कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख रही हैं, और ये अच्छी बात है, अपना ख्याल ज़रूर रखिए लेकिन अपनों का भी ख्याल रखिए। गर्मी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई फ़िलहाल, आइए इसी ख्याल में आपको ले चलते हैं टेंशन फ्री माहौल की तरफ।

0: हां जी एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं इसी संडे स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आइए चलते हैं अगले लिसनर की तरफ और देखते हैं अगले कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन है मौजूद जिनको बात करना है आज संडे स्पेशल में। हां जी हेलो
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा तो नाम माही फाइनेंशियल। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग टू यू माही, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम बिल्कुल कैसे हैं, हम क्या रंग पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, मिजाज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
1: जो मर्जी वो बता दीजिए।
0: अच्छा भाई, मूड बहुत बढ़िया है और दिखने में भी ठीक ही ठाक है और मौसम ठीक है यहाँ पे स्टूडियो के अंदर एटलीस्ट। So, गर्मी से बचने के आज हम उपाय पूछ रहे हैं। माही कौन कौन से उपाय अपनाती हैं गर्मी से बचने के लिए?
1: मैं तो स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में छुट्टियाँ हो गई है, मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, खेलती कूदती हूँ पर घर के अंदर ही खेलती हूँ, धूप में बाहर नहीं निकलती हूँ। और मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं पानी की बोतल आज मेरे साथ में रहती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, हमने एक सवाल किया आपने लगभग 75 उसके जवाब दिए। थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आप आ जाए।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अब बताइए, अब क्या कह रहे थे आप?
1: कुछ नहीं।
0: अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन पूछे?
1: सर पूछिए।
0: ओके, अगर इस कड़ी धूप और गर्मी को एक इंसान बना दिया जाए तो आप उसे सामने देखकर सबसे पहले क्या सजा सुनाना चाहेंगे गर्मी को?
1: उसको
0: अगर
1: सबसे पहले तो पीटूंगी, खूब पीटूंगी, हाथ पैर दोनों।
0: क्यों भाई, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मैं धूप में पे काम होगा कोई तो मैं निकलूंगी, जो मैं निकलती नहीं हूँ पर दीदी डांटती है तो निकलना ही पड़ता है, तो मैं काली नहीं हो जाऊंगी।
0: अच्छा काले हो जाएंगे?
1: स्कूल में मुझे सारे लोग स्कूल में चिढ़ाते, मैं स्कूल जाती थी तो मैं गोरी थी, तो थोड़ा काली हो गई थी तो सब सर ने बोला कि साक्षी संतरे का जूस पी लो ताकि गोरी हो जाओ।
0: संतरे का जूस? अच्छा उससे गोरा होता है इंसान?
1: पता नहीं सर, मुझे भी तो नहीं मालूम।
0: नहीं तो आपने ट्राई नहीं किया था क्या?
1: नहीं मैंने ट्राई नहीं किया था।
0: अच्छा क्या लगता है, मतलब ये काले हो जाएंगे इसलिए ज्यादा दिक्कत होती है धूप से?
1: वैसे भी बहुत दिक्कत होती है, सिर दर्द करने लगता है ज्यादा गर्मी होगी तो।
0: ज्यादा गर्मी में सिर दर्द करता है, हाँ ये मानते हैं।
1: हाँ पसीने भी बहुत निकलते हैं।
0: यही बात सही है। तो क्या उपाय, आपने तो बहुत सारे उपाय बता दिए हैं, मतलब वाह क्या बात है। और आपने कहा कि अगर इंसान बना दिया जाए इस गर्मी को तो आप तो मतलब उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे?
1: नहीं।
0: अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, आप घर में एसी है?
1: हाँ मेरे घर में एसी।
0: सो घर में एसी चलता ही सभी को जो है कई बार ऐसा होता है कि जिस कमरे में आप चलाते हैं उसी कमरे में सारे के सारे सदस्य आ जाते हैं, ऐसा होता है ना?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है।
0: अब मुझे ये बताइए, जब एसी चल रहे कमरे में सभी लोग आ जाते हैं तो उस समय किसके हाथ में रिमोट होता है, कौन सबसे ताकतवर होता है वहाँ पे आपके घर में?
1: मेरे हाथ में रहता है।
0: आपके हाथ में रहता है रिमोट एसी का?
1: हाँ।
0: और कितने टेम्परेचर पे आप चलाते हो एसी?
1: मैं तो मीडियम में चलाती हूँ, ज्यादा ना तीन, ना ज्यादा हल्की, ना ज्यादा भारी।
0: मतलब 24 के आसपास?
1: हाँ।
0: अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये मान के हम चलते हैं कि एसी का रिमोट जिसके हाथ में है वो घर का ताकतवर माना जाता है।
1: यस सर, मैं अपने घर की बहुत ताकतवर हूँ, मैं सबको डांट देती हूँ, मेरी बात कोई नहीं मानता तो मैं बड़े वाले भैया को भी डांट देती हूँ।
0: बड़े वाले भैया को भी डांट देते हैं?
1: सर पता है मैं स्कूल गई हुई थी तो स्कूल में मैं सो रही थी तो मुझे घर छुट्टी भी हो गई थी तो मुझे घर आना था, मैं घर आती तो भीग जाती बारिश में, तो मैंने कॉल किया बोला कि सर मुझे लेके जाना है मेरे घर पे छोड़ देना वरना तो मैं भीग जाऊंगी, पहले लाकर मेरे घर पे छोड़ दिया, मैंने सर को भी डांट देती हूँ।
0: सर को भी डांट देते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा चलिए एक गाना सुन लेते हैं, हम आपको विदा कर देते हैं, नहीं हम भी डांट खा जाएंगे फिर।
1: नहीं आप डांट नहीं खाएंगे, आप छोटे से बच्चे हैं ना, इतना डांट नहीं खाएंगे।
0: हम छोटे से बच्चे हैं, ये क्या बोल रहे
1: हैं? हाँ हम छोटे हैं, हम भी छोटे हैं, दोनों लोग छोटे हैं ना इसलिए।
0: अच्छा ये हुआ कब, लेकिन हम छोटे कब हो गए इतना?
1: सर अभी अभी।
0: अच्छा अभी अभी हो गए। वो एक गाना सुना होगा, छोटा बच्चा जान के हमको ना कोई आंख दिखाना रे।
1: यस सर, मैं तो बहुत सुना है इसको।
0: चलिए और दूसरी लाइन जो है, टूपी टूपी टप टप, टूपी टूपी टप टप, ये करके पूरा गाना है आपको एक लाइन, ठीक है? चलिए सुनाइए जरा ये लाइन।
1: मुझे गाना गाना नहीं आता, आप गा दीजिए ना।
0: नहीं बस ये दो लाइन ही सुनाना है, छोटा बच्चा जान के ना कोई, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टूपी टूपी टप टप, टूपी टूपी टप टप।
1: सर पता है?
0: नहीं पता तो नहीं।
1: अरे मुझे गाना गाना नहीं आता, हम बहुत अच्छी गा लेते हैं
0: भाई, बच्चे तो सब कर लेते हैं, बच्चे तो सब कर लेते हैं। अब आपने कहा अभी आप छोटे,
1: गाना गाना नहीं आता है ना।
0: चलिए अच्छा हमारे साथ दोहराइए।
1: हाँ ठीक है आप गाइए।
0: छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे,
1: छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे,
0: टूपी टूपी टप टप,
1: इसको तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी,
0: टूपी टूपी टप टप,
1: टूपी टूपी टप टप।
0: सबसे क्यूट ये लाइन होती है इस पूरे गाने में, बहुत बढ़िया लगती है, टूपी टूपी टप टप, टूपी टूपी टप टप। चलिए बहुत अच्छा लगा माही आपसे बातचीत करके, एंड आपका
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे फाइनली दूसरी बार बात हो रही है,
0: फाइनली दूसरी बार बात हो रही है, और ऐसा
1: हाँ, एक बार एक साल पहले हुई थी, अब एक साल बाद हो रही है।
0: चलिए जब एक साल और बड़ी हो जाएंगी अगले साल फिर हम एक बार करेंगे आपसे बातचीत, ठीक है?
1: नहीं अभी एक साल के
0: और right.
1: दोस्त को एक साल इंतजार करवाएगा क्या बात करने के लिए?
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कर लीजिएगा बिल्कुल।
1: सर पता है?
0: नहीं पता तो नहीं बताइए।
1: सर मैं जिससे भी मिलते हैं या बात करती हूँ ना, तो मैं उसे तुरंत अपना दोस्त बना लेती हूँ।
0: और वो चाहे बनाना चाहे, चाहे ना बनाना चाहे, सामने वाला
1: सर ऐसा कभी होता ही नहीं कि वो बनना ना चाहे, वो तुरंत ही बन जाता है। अपने गुरु को भी, अपने गुरु को भी मैंने सबको दोस्त बना के रखा हुआ है।
0: और अगर जो नहीं बनना चाहे तो डरा के बनाते हैं आप, कैसे बनाते हैं?
1: नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं, डराने की जरूरत ही नहीं आई है।
0: वो पता नहीं ऐसा हो गया हो, आप ना बताना चाह रहे हो तो।
1: नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे हंसी बहुत है।
0: अभी भी आपके चेहरे पे हंसी?
1: सारे लोग जान जाते हैं कि मैंने झूठ बोला है।
0: इस टाइम आपके चेहरे पे हंसी है वैसे?
1: नहीं है।
0: पक्का?
1: पक्का।
0: अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, आपके चेहरे पे फिलहाल हंसी नहीं है, सही कहा आपने।
1: नहीं मेरे चेहरे पे हंसी, आपने हंसाने की कोशिश तो बहुत की पर हमने हंसा नहीं।
0: ये देखो पहले से ही जब कोई बेल्ट बांध के बैठा है कि हमें तो झटके लगेंगे, हमें जाना ही नहीं, तो बात ही खत्म, फिर और क्या। ये सही था, ये बढ़िया था गुरु, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर माही, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। सो फिलहाल अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, चूंकि देखिए कॉल लगातार आती जा रही है और हमारी आपकी बातचीत भी लगातार होती जा रही है। सो इसी बातचीत के क्रम में चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग टू यू, क्या नाम है आपका? हाय सृष्टि। सृष्टि आज का सवाल सिंपल, ऐसे पहले आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे।
2: थैंक यू।
0: थैंक्स टू यू। कैसा रहा आपका इस बार का बर्थडे?
2: बहुत अच्छा रहा, बट मैंने आपको घूमते हुए देखा था।
0: घूमते हुए देखा था? कहाँ घूमते हुए देख लिया आपने?
2: मैं जा रही थी वीडियो फ्रेंड के साथ, तो आप स्कूटी से घूम रहे थे।
0: हाँ हाँ, तो जैसे आप अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी, वैसे हम अपने सहेला मतलब दोस्त के साथ घूम रहे थे।
2: अच्छा।
0: हाँ और क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसा था इस बार का बर्थडे आपका?
2: बहुत अच्छा था।
0: क्या स्पेशल रहा?
2: स्पेशल तो ये रहा कि फ्रेंड्स के साथ घूमे और मस्ती हुई, आइसक्रीम खाए, केक कटवा, यही सब था।
0: अरे वाह, केक कटा, घूमे आप, खूब मस्ती हुई। और गिफ्ट्स गिफ्ट्स मिले कि नहीं?
2: गिफ्ट्स तो नहीं मिले, सब लोगों ने बकाए कर रखे। मैंने कहा पहले आप लोग मुझे पार्टी दीजिए फिर मैं देती हूँ आप लोग को।
0: तभी तो मामला फंस गया है,
2: बहुत बड़ा मामला फंस गया।
0: कैसे सॉल्व होगा?
2: अब ये लोग पहले दे पार्टी, उसके बाद मैं दूंगी तब सॉल्व होगा।
0: पार्टी तो आप दोगे, गिफ्ट आपको मिलेगा ना, पार्टी को क्यों देंगे?
2: वो भैया की शादी तय हो गई, उनका बर्थडे भी तो लगे, बट उन्होंने पार्टी नहीं दी, तो ये पार्टी उनसे पहले लेना है फिर उसके बाद मुझे देना है।
0: अच्छा, मतलब आप लोग का अलग ही हिसाब किताब चलता है? बिल्कुल
2: अलग ही हिसाब किताब है
0: भाई, वो आपका पर्सनल मैटर है कैसे आप लोग डील करते हैं आपस में, बात तो सही है, वो एक अलग चीज है। वैसे गर्मी से बचाव कैसे कर रही है सृष्टि आजकल?
2: सर गर्मी तो इतनी दिन रात लाइट ही नहीं रहती पटेल नगर में।
0: हाँ, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो हमने भी बताया, लेकिन कैसे बचाव कर रही हैं आप?
2: पंखा नहीं है, बेना डोल डोल के बचाव हो रहा है, कैसे बता सकते हैं।
0: क्या बात है, लेकिन सुनते हैं कि बेना चलाने से हाथ में ताकत आती है।
2: ये तो नहीं होता, उल्टा हाथ दर्द होता है।
0: उल्टा हाथ मतलब दाएं से चलाते हैं तो बाएं वाला दर्द होता है?
2: दोनों से, एक चला रहे दाएं से तो वो दर्द, हम लोग बाएं से चलाते हैं बाएं दर्द होता है, दाएं से चलाते हैं।
0: बड़ी प्रॉब्लम होती है बेना चलाते चलाते, जब आपको सोना हो रात में तो आप सोचते हैं अगर हाथ ही चलेगा तो नींद नहीं आएगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों हाथ को रिलैक्स किया हो और आपने पैर के अंगूठे में कसके पकड़ाया हो और खटाखट खटाखट पैर से चला रहे हो आप पंखा?
2: नहीं नहीं, वो मम्मी के हाथ में से चला जाता है, फिर मैं आराम से सोती हूं।
0: अच्छा, हमें लगा पैर से भी चलाते हैं।
2: पैर से नहीं, फैन आया फोन वाला, उसको फोन ये चार्जर में लगा दो, पंखा चलता है, फिर भी पकड़ना पड़ता है उसको, फोन ऐसे पकड़े रहो।
0: अच्छा, फिर भी पकड़ना पड़ता है। हम लोग जब छोटे थे तो ट्राई करते थे मोटर लेकर के, उसमें सेल लगा करके, और जो उड़ाने वाला पंखा आता था एक पंखी लगा देते थे उसमें।
2: आपने एक बैटरी आती है,
0: आपने ट्राई किया है कभी?
2: बैटरी से डर लगता है कि करंट ना मार दे, उसको टच करो तो करंट मारता है बैटरी।
0: नहीं, बैटरी मतलब वो सेल जो आता है गोल वाला।
2: हाँ, सेल भी रहता है, सेल भी रहता है, पर एक छोटी सी बैटरी आई उसमें पंखा लगा तो चलता है, तो सब लोग बोलते हैं
0: टेक्नोलॉजी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिया में क्या फर्क है?
2: ये तो वही लोग जाने जो लोग बोलते हैं
0: टेक्नोलॉजिया। बहुत बढ़िया,
2: आपने बोला आपको पता है।
0: अच्छा, नहीं नहीं हमको पता नहीं, हमने खाली सुना है ऐसे बोलता है टेक्नोलॉजिया। लेकिन आपने जो उपाय बताए हैं बचने के वो बहुत ही शानदार है, आई होप कि वो उपाय हम भी अपनाएंगे और गर्मी से बच के दिखाएंगे। आपकी बात ठाना है, गर्मी को हराना है।
2: आपके घर पे इन्वर्टर होगा, आप इसे क्यों चलाएंगे बोला?
0: तो इन्वर्टर भी तो जाता है ना कि एक एक टाइम बाद वो भी तो थक जाता है।
2: हाँ, वो भी थक जाता है, तो उसके लिए वाटर आता है इन्वर्टर का।
0: हाँ, बट वही है ना कि गर्मी है, अगर कटौती हो रही है तो फिर सारी चीजें फिर चार्ज कहाँ हो पाती है उस तरह से। नौ तपा का मतलब होता है जैसे अभी तीन तरफ से तप रहे हैं आप, दाएं बाएं आगे पीछे, नौ तपा में नौ तरफ से तपेंगे।
2: नौ चार दिशा होते, फिर नौ दिशा कैसे हो गए?
0: अरे ऊपर तिरछा मिर्छा सब तो होगा फिर उसमें ना।
2: अच्छा,
0: दाएं बाएं के बीच का, बाएं दाएं के बीच का, पीछे और दाएं के बीच का, पीछे और बाएं के बीच का, ऐसे होगा ना
2: बोलते।
0: नौ तरफ से तपने को ही बोलते हैं नौ तपा। नहीं पता होगा ये सब चीजें, आप लोगों को नहीं पता है इसीलिए हम बता रहे हैं, बट ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, प्लीज ये किसी और को मत रिवील करिएगा, कोई नहीं सुन रहा है इस टाइम, ठीक है? थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर भाई। ये तो थी सृष्टि जिन्होंने हमसे बातचीत की। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगले कॉलर पे कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो,
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, ये आवाज जानी पहचानी सी है।
3: जी सर,
0: कमल नयन जी।
3: जी सर।
0: आख हाँ, कैसे हैं, की हाल चाल?
3: सर हाल चाल तो सर बहुत बढ़िया है।
0: आपके आते ही हमें अंदर से मुस्कुराहट आ जाती है। अब जरा आप ये बताइए, नौतपा का मतलब क्या होता है? नौतपा का मतलब क्या होता है
3: सर? इसके बारे में कभी सुना नहीं सर।
0: नहीं, जैसे अभी कहा जाता है ना, नौतपा जब तक है तब तक बहुत तपेगा।
3: सर हमने कभी नहीं सुना था।
0: अच्छा नहीं सुना है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए हम बता रहे हैं कि खिचड़ी होता है, नहान होता है, वैसे नवतपा कहा जाता है सीजन को लेकर के, तो सुनने में क्या लग रहा है, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, आपको क्या लगता है?
3: सर जेठ की दोपहरी तो सुने हैं सर।
0: जेठ की दोपहरी सुना है और नवतपा नहीं सुना आपने?
3: सर ये तो नहीं सुना सर।
0: कोई बात नहीं, अगर नवतपा आप सुनते हैं तो इसके जो आप सुनते हैं उससे क्या मायने निकल के आता है, मन ही मन में क्या समझ में आता है, नवतपा क्या होगा? ये
3: नौ तपा मतलब हो गया सर, हमारा लगा कि नौ हफ्ते लगभग लगभग की तपी रहेगी धूप।
0: नौ हफ्ते में तो हम लोग जल के कुकड़ू बन जाएंगे।
3: नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, हमें तो गर्मी बहुत अच्छी लग रही है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मतलब जो है धूप में रहते हैं तो हम लोग को ठंडी ठंडी फीलिंग आती है।
0: गर्मी में ठंडी फीलिंग आती है, ये किधर किधर हो रहा है, ये किधर हो रहा है?
3: सर जैसे हम लोग धूप में काम करते हैं तो हम लोग का कपड़ा जो है तो पूरा भीग जाता है अच्छी तरह से, तो बाद में हम लोग को एकदम ठंड ठंड एसी की तरह मजा आता है।
0: मतलब जब आप हाँ बोलिए,
3: धूप में काम कर रहे हैं पूरा कपड़ा हम लोग का भीग गया, तब जो है धूप का थोड़ा हल्के मतलब गाँव में जाते हैं पंखा चलाते हैं तो मतलब एकदम एसी वाला आनंद आता है।
0: हाँ ये तो सही कहा कि जब ज्यादा ही गर्मी निकल जाती है उसके बाद हवा जो लगती है वो ठंडी लगती है, बात सही है।
3: इसीलिए हम रात में रजाई ओढ़ के सोते हैं कि जब पूरा बदन भीग जाएगा तो अभी मतलब एसी वाला मजा आएगा।
0: ओफो, रात में रजाई लेकर सोते हैं यार?
3: जी सर।
0: घर वाले मतलब आपको घर में रखे हैं या बाहर कर दिया है?
3: घर वाले सर छत पे सो जाते हैं, हम कमरे में सो जाते हैं कि कमरे में भी सोते हैं कि मतलब जो है और गर्मी लगेगी तो और मजा आएगा।
0: अरे तो आप सोने के लिए नहीं सोते हैं, आप मजे के लिए सोते हैं?
3: नहीं नहीं मजे के लिए सर, सोना तो कभी भी सोना कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो मजे में सोना आपको मजा आता है?
3: जी सर।
0: मुझे लगता है ये आपकी चीजें दुनिया से थोड़ा सा ज्यादा हटके होती हैं और वाकई आप बहुत ही
3: सर हमारा सारा हमारा जितना भी काम रहता है सब दुनिया से हटके ही रहता है। जैसे अभी अरुण ने बताया था, अरुण ने बताया था चोरी करके खाना, चोरी करके फूल लाना, ये भी हमसे हटके था। इसलिए सर कि देखिए कोई अगर मेहनत करके फूल लगाया उसको चोरी करके भगवान को पढ़ाओगे तो भगवान क्या पसंद रहेंगे हम तो नहीं मानते हैं।
0: नियत
3: जैसे अगर किसी का अनाज है किसी का खाना है चोरी करके खा लिया तो वो भी किसी के लिए रखा था किसी के लिए है वो भी आपने खा लिया तो वो भी तो गुनाह है।
0: सही बात है।
3: हाँ वो चीज मांग के खा सकते हो तो चलेगा।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आपने कहा कि काफी हटकर होती हैं आपकी चीजें, तो कभी
3: बहुत हटके होती है।
0: कभी आपने खुद को शीशे में देखा हो और ऐसा लगा हो कोई विचित्र चीज आप देख रहे हैं?
3: नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं सर, क्या है ना अपने आप को कोई भी देखेगा सर सबको अपने आप को अच्छा लगेगा, चाहे वो काला हो चाहे मतलब कैसा भी हो, लेकिन अपने आप को जब वो देखेगा तो उसको ऐसा नहीं ऐसा होगा कि मैं तो उसको अच्छा ही लगेगा।
0: अच्छा अच्छा, मान लिया अगर हम आपको एक ऑफर देते हैं, ऑफर ये है कि अगर आपको इस भयानक दोपहर में स्कूटी या बाइक से पूरे शहर का चक्कर लगाने को कहा जाए और बदले में आपको पूरी जिंदगी फ्री आइसक्रीम का ऑफर मिले, तो क्या आप इस धूप को नमस्कार करेंगे और डील पक्की कर लेंगे?
3: धूप में जो बाइक वाला बताया आपने वो हमें सबसे अच्छा रहेगा सर। इसलिए सर क्योंकि धूप में रहेंगे पसीना निकलेगा पूरा कपड़ा भीगेगा और गाड़ी से जब रहेंगे हवा लगेगी तो इसका आनंद आएगा कि आएगा।
0: आपने धूप में पसीना पसीने से लगने वाली हवा उसका ठंडापन ये जो पकड़ लिया है अब इसको आप छोड़ने वाले नहीं है।
3: सर इसी से सर जूझ रहे हैं, सर इसी से जूझ रहे हैं, इसलिए हम उसी में मतलब वो हो गए एकदम से।
0: भाई हमने सुना ही था खाली आपदा को अवसर में बदल देना, ये देखिए सच्चाई सामने हम सबके, हमारे कमल नयन जी सामने हैं और जिस तरह वो बता रहे हैं।
3: सर क्या है हम लोग धूप में ही काम करते हैं, लगभग आज हफ्ते भर से बाहर का काम है, बाहर ही कर रहे हैं तो इसकी वजह से बता रहे हैं कि हमारे साथ जो बीत रहा है उसको बता रहे हैं हम आपको।
0: हाँ नहीं वही सही बात
3: है, उसी में हम ढल गए, उसी में हमें आनंद आ रहा है।
0: सही बात है,
3: अभी इंसान को एक घंटा बाहर कर दिया जाए तो नहीं रह पाएगा, लेकिन हम लोग पूरा दिल से घाम में रहते हैं।
0: हाँ ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा नहीं होता है कि इस मौसम में आप दोपहर को सोकर उठें और उसके बाद शुरू के 5 मिनट में आप ऐसे ब्लैंक हो जाए, आपको लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये क्या चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कभी?
3: नहीं सर जब से हमने होश संभाला है तब से कभी दोपहर में सोया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है।
0: ओहो, एक दिन
3: एक बार किसी दिन छुट्टी ले उसके बाद में सोए उठे तब कुछ आपको बताए कि हाँ कैसा फील आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा ऐसा।
3: सर देखते किसी दिन छुट्टी मिलेगा तो दोपहर में जरूर सोएंगे।
0: सो क्या इस खाली एक आप समझ लीजिए परीक्षण करिएगा इस बात का और फिर बताइएगा कैसा लगा।
3: हमें तो सर यही लगेगा कि सुबह हुई है उठे हैं ऐसा सुबह हमारा अंदाजा हो रहा
0: है क्योंकि सुबह भी आप उसी धूप में उठते हैं और दोपहर में तो धूप है ही है जाहिर सी बात है।
3: नहीं नहीं सर सुबह तो सर 5 बजे उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं।
0: अच्छा ये बहुत अच्छा है कि अब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे उसके बाद हम आपसे बात जरूर करेंगे।
3: जी सर
0: एंड बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कमल नैन जी, आप बहुत प्यारे इंसान है, मैं हर बार ही बोलता हूँ। अब आज आपको मानना ही पड़ेगा कि आप प्यारे इंसान है, चलिए मानिए।
3: सर आपसे प्यारे नहीं है क्योंकि आप लोग को अक्सर देखिए मेरी बात नहीं, आपको चाहने वाले लाखों लोग हैं, मुझे चाहने वाला खाली एक।
0: अब जरा सोचिए जिसको लाखों चाहते हैं वो किसी एक को चाह रहा है, कौन इम्पोर्टेंट है
3: नहीं सर देखिए अगर अभी वोटिंग हो जाएगी, सर वोटिंग हो जाएगी तो आप जीतेंगे ना, हम थोड़ी जीतेंगे।
0: अरे हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वोटिंग कराएंगे
3: हम नहीं, नहीं, कोई... एक बात बता रहे सर कि जिससे वोटिंग हो जाएगी तो उसमें आप ही विजयी होंगे।
0: ये आपस में प्यार मोहब्बत इश्क मानने समझने सम्मान में कोई वोटिंग नहीं हो सकती और कोई जीत हार नहीं होती, पहली चीज।
3: नहीं सर ये मानना पड़ेगा कि आप वोटिंग में विजयी होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि आप विजयी होंगे तो मैं विजयी हो गया।
0: अच्छा देखिए प्रतिनिधि
3: सही बात कह रहे हैं।
0: अरे आप सही नहीं कहते हैं, आप कुछ भी कह देते हैं वो सही हो जाता है, ये कहिए आप बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कमल नैन जी आपका बात करने के लिए। बहुत
3: आपसे जब बात सर जब आपसे बातें हो जाती है तो पूरा दिन समझ लीजिए कि मतलब सोच सोच के हंसते रहते हैं, जैसे कोई भी काम करे तो सोच के हंसते रहते हैं, मतलब मन ही मन में कोई अगर अगला हमें देख रहा तो सोच रहा है कि कोई मुस्कुरा रहा है, कोई राज नहीं पता पा रहा कि क्यों मुस्कुरा रहे, कौन सी बात है अंदर,
0: मन ही मन गाना चल रहा था
3: एक दिन खाना खा रहे थे सर, घर वाली कह रही थी क्या बात है तुम काहे मुस्कुरा रहे हो, तो अरे भैया तुम ना जानो क्या बात है तो आप जो आप हंसते हैं आप ही की हंसी को सोच करके हंसते थे
0: क्या बात है
3: तो हमने उनसे बताया कि आप रेडियो सुना करो, आप भी हंसा करो।
0: हंसोगे वाओ सो स्वीट आंसर, बहुत प्यारा आपने जवाब दिया उनको। एंड यू ही आप मुस्कुराते रहिए, यही हंसते रहिए और आपकी वाइफ भी और पूरा परिवार भी, ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच जयो। सो भाई ये तो थे हमारे साथ में कमल नैन जी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया और बड़ा ही मजा आया आज आपसे बातचीत करके, मतलब लिटरली कुछ हमारे साथ में सच में ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यारे दिल के हैं और बहुत ही मासूमियत से बातचीत करते हैं, सवाल का जवाब देते हैं और जुड़ते हैं। उसी में से एक हैं हमारे यस कमल नैन जी, जिनसे अभी जस्ट हमने बातचीत किया। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
4: हेलो संजीव गुप्ता
0: जी, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आशु मिश्र जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आपसे भी वही सेम सवाल कर सकते हैं क्या?
4: बिल्कुल बढ़िया।
0: ये नौ तपा का मतलब क्या होता है?
4: नौ तपा का मतलब नौ दिन ज्यादा तपेगा और क्या?
0: नौ दिन ज्यादा तपेगा या नौ तरफ से तपेगा?
4: नौ दिन ज्यादा गर्मी पड़ेगी सर्दी,
0: पक्का यही? हमें तो लगता है नौ तरफ से तपेगा
4: ये समझ लीजिए सर, चाहिए समझ लीजिए बातें की है
0: बात एक कैसे हो सकती है? नौ तरफ से तपने का मतलब एक ही दिन सब तप जाएगा और नौ दिन तपने का मतलब
4: नौ दिन का मतलब ऊपर नीचे अगल बगल जिधर दाएं बाएं जिधर देखिए सब तपेगा
0: ही। असल में हमारे भाई साहब हैं, जब हमारी उनकी बातचीत चल रही थी तो ऐसी नौ तपा का नाम नहीं मेरे अपने भाई जी हैं घर पे, जब जी तो हमने वही कहा, उन्होंने कहा नौ तपा आ रहा है, तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा मतलब क्या, दोनों का यही होगा मतलब कि नौ तरफ से तपता होगा अलग अलग तरह से तो हमने कहा हो सकता है, सही कहा आपने नौ तरफ से तपता होगा,
4: मुझे भी लगा बहुत पड़ रही है सर, जगह जगह पे आग लग रही है सर,
0: सही बात है।
4: ज्यादातर तो जो सर जी गैस के जो पाइप लाइन है उसमें ज्यादातर आग लग रही है इधर उधर, हमारे इधर खुद गड्ढे खुदवाए हैं, गैस की स्मेल आ रही थी सर,
0: बहुत डर लगता होगा आप लोगों को भी।
4: बिल्कुल सर, उसको हमने ठीक करवाया, जब कॉल कर करके जब तक एकदम ठीक नहीं करवा लिया सर जी, जबकि सर जी मेरे तरफ नहीं निकला, मेरे पड़ोसी में निकला,
0: लेकिन वही है ना,
4: स्मेल हमारी तरफ भी आ रही थी सर।
0: स्मेल आ रही होगी, सही बात है। इन सब चीजों में आप लापरवाही नहीं बरत सकते, बात तो सही है।
4: बिल्कुल सर, 2 महीने हुए हैं अभी ठीक करवाया सर
0: जी,
4: लेकिन अभी कल भी है, पाइपलाइन फट गई थी हमारे इस तरफ रोड पे।
0: अच्छा,
4: भी बेटे ने क्या है वीडियो बना के सर और क्या नगर निगम को दिया, और जिससे कहा जाए कि आप लोग भी कर दीजिए। अरे नहीं ऐसा, हम लोग की तरफ थोड़ी ना उधर है। अरे हम लोग की तरफ की मतलब क्या सर,
0: आग लग जाती है तो कई बार एक साथ सारा एरिया और बहुत कुछ चपेट में आ जाता है। सही बात है
4: सर, हमारे यहाँ तो ऐसा कहेंगे नहीं इधर नहीं है उधर है, उधर उन लोग कम्प्लेन करें इसका क्या मतलब। रोड पे लाइट जल रही है सर, हमारा है फर्ज कि हम बंद करें, किसी से कहें
0: और
4: हम क्यों बंद करें, अरे सरकार का है तो हम लोग का भी तो है सर।
0: सही बात है, वो हमारा ही है, वो हमारी जिम्मेदारी है।
4: हम लोग सर एक एक चीज ऐसे देखते हैं, कुछ भी होता है सर तो हम लोग तुरंत इसका वो लेते हैं रिएक्शन।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, ये एक सतर्क और एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है, बहुत अच्छी बात है। और आप भी खुश रहिए। बिल्कुल
4: सर, खान पीन की बात है
0: जी,
4: तो ज्यादातर बाहर का मत खाइए और ये चीज मत खाइए। घर से निकले तो बच्चों को मैं पत्तू देती हूँ पीने को, पूरी नहरा लेके आई हूँ, उसकी गड्डी पीस के रख ली हूँ सुखा के, जरूर डाल देती हूँ हर खाने में जो बनाती हूँ डालती हूँ, उसको अपना भी लेती हूँ बच्चों को भी देती हूँ, उसकी लिक्विड जरूर पीते हैं बच्चे हमारे, पसंद आते हैं।
0: जी जी जी पिछू बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अहम चीजें बताई, साथ ही जिम्मेदारी वाली जो बात बताई मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है ऐसे लोगों की जरूरत है हमारे मोहल्ले में एरिया में। जब कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे हमको डाउट, तो हमको कोई घटना घटित होने से पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए।
4: मोहल्ले की बात है, कहीं भी आप देखें तो उसका जरूर वो करें, कंप्लेन करें, ऐसा नहीं है कि अपने ही एरिया में हो तो ऐसा कुछ करें, कहीं भी आप जाएं कुछ भी हो इसको जरूर करें।
0: बिल्कुल सही बात है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में आशुमिश जी फ्रॉम लखनऊ, आपने बातचीत किया और काफी अच्छा लगा हमको। फिलहाल वक्त हो गया है आपके मैसेजेस पढ़ने का, क्योंकि काफी सारे लोग मौजूद हैं चैट बॉक्स पर। हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद मिश्र ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। मुस्तफ़ा सऊदी लिखते हैं गुड न्यूज़, थैंक यू। हरीश चंद सविता जी बताते हैं धन्यवाद सर, अच्छी जानकारी मिली, हमारी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है मुंबई जाने के लिए। बेशक सही सुना आपने। धर्मेंद्र मोहन जी मौजूद हैं आवास विकास से, गुड मॉर्निंग गोंडा आरजे अतना सर जी, नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और साथ ही आपने सभी श्रोताओं को बोला है। नरेंद्र जी फ्रॉम बलरामपुर से काफ़ी दिन बाद आए हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन जी का है आरजे अतना सर, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है। और नरेंद्र जी लिखते हैं हम तो मार्केटिंग वाले हैं, क्या गर्मी सर्दी बरसात सारे सीजन हम मुस्कुरा कर झेलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको चलता ही रहना पड़ता है। एंड क्या बात है सर जी, क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, अच्छा थैंक यू सो मच। और अलग ही लेवल के बंदे बताया है धर्मेंद्र नरेंद्र जी ने हमारे कमल जी को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए आप लोगों को ये शो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाज़त, सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: One potato, two potatoes, three potatoes, four. Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more.
1: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
12: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
11: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
12: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
11: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
12: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
13: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: हाँ जी, आपका वेलकम करते हैं संडे स्पेशल हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी प्रोग्राम में, गीता दीदी के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्वागत जो होगा वो होगा गीता दीदी का ही।
3: हेलो अदनान।
1: हेलो, कैसी हैं आप?
3: मैं तो अच्छी हूँ, और मैं सभी सुनने वाले अपने लिसनर्स को भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ।
1: क्या बात है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग एवरीवन।
1: जी हाँ, सो हमारी गीता दीदी ने आपको गुड मॉर्निंग विश कर दिया है। अब आपका भी फर्ज है, अगर आप ऑनलाइन हैं और एप्लीकेशन पर है तो चलिए चैट पे आइए और गीता दीदी को भी हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जो बोलना है बोलिए। सो गीता दीदी, आज क्या स्टोरी है
3: आज? जैसे कि अब मालूम है ना अदनान, इस समय सब ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं। और मैं तो विश्वास करती ही हूँ कि कोई एक महाशक्ति है जो इस संसार को चला रही है। और कितने सारे लोग हैं जो उसी के विश्वास पर टिके हुए हैं, उसी के विश्वास पे जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को।
1: बेशक,
3: है ना,
1: बेशक।
3: तो आज ऐसी एक कहानी लेकर के मैं आई हूँ कि जिसमें कहानी बता दूंगी तो फिर तो मजा ही नहीं
1: रहेगा, ट्विस्ट नहीं रह जाएगा। तो बताया,
3: मैं बताने लगती हूँ, मेरे अंदर यही है कि जल्दी से
1: कुलबुलाहट इसको बोलते हैं, कुलबुलाहट।
3: बिल्कुल।
1: तो चलिए क्यों ना पूरी कहानी सुन लेते हैं।
3: जी जी,
1: चलिए। तो दीदी अब बताने वाली हैं स्टोरी, भाई आप भी जरा दिल थाम के बैठिए और सुनिए।
3: बहुत अच्छी कहानी है आज की भाई। जी, तो कहानी इस तरीके से है कि बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत सुंदर और बहुत ही समृद्धशाली नगर था और वहाँ पे एक कृपाल नाम का भिखारी रहता था। तो वो भिखारी गरीब तो ज़रूर था, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी और संतोष भी था। तो हर सुबह सुबह जब वो उठता तो स्नान करता और ईश्वर का नाम लेता, और फिर अपना वही पुराना भिखारी वाला चोगा पहनता और हाथ में कमंडल ले लेता और नगर की गलियों की ओर निकल पड़ता। उसके चेहरे पर हमेशा शांति, विनम्रता झलकती थी। वह हर घर के सामने खड़े होकर बहुत ही मधुर स्वर में कहता, देने वाला है भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। और बार बार केवल वो यही रटता, देने वाला है भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। तो लोग उसकी सरलता और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भोजन दे दिया करते। भोजन में कभी कभी अनाज या कुछ पैसे दे देते। कृपाल को जो भी कुछ मिल जाता वो उसी में संतुष्ट हो जाता और बार बार वो भगवान को धन्यवाद करता। और मालूम है क्या था कि उसी नगर में एक दूसरा भी भिखारी था जिसका नाम था जगन्नाथ। वो भी रहता था वहीं पर। वो भी बिल्कुल कृपाल की तरह ही भीख मांगने निकलता, पर उसकी जो सोच थी वो कृपाल से बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल अलग। वह दरवाजों पे जब जाता तो बड़ी ऊंची आवाज में कहता, देने वाला है महाराज, वही दिलाएगा भोजन आज, देने वाला है महाराज, यही दिलाएगा भोजन आज। तो जगन्नाथ का ये मानना था कि राजा ही सबसे बड़ा दानी है और सबका पालन करने वाला भी है। दोनों मित्र थे लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग अलग थी। वे प्रतिदिन नगर के राजा के महल में जाकर भी भीख मांगा करते थे। राजा कई दिनों से दोनों की बातें सुन रहा था। वो सोच में पड़ गया कि वास्तव में मनुष्य को सब कुछ कौन देता है, भगवान या फिर राजा। तो उसने उन दोनों की ही परीक्षा लेने की मन में ठान ली, तय कर लिया कि अब देखते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो एक दिन राजा ने एक बड़ी तरकीब सोची। तो उसने एक बड़ा सा पका हुआ पपीता मंगवाया और फिर उसके ऊपरी हिस्से को बड़ी सावधानी से काट कर और उसके अंदर सोने के चमचमाते सिक्के भर दिए और उसे फिर बंद कर दिया, पहले जैसा जोड़ दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसी समय कृपाल महल के द्वार पे पहुंचा और अपनी परिचित आवाज में आवाज लगाई, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। राजा ने उसे समान रूप से वही दाल चावल दे करके वहां से विदा कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जगन्नाथ आया और वो अपनी खंजड़ी बजाते हुए बोला, देने वाला है महाराज, यही दिलाएगा भोजन आज। राजा बहुत खुश हो गए, मुस्कुराए और उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा हुआ वो पपीता जगन्नाथ को दे दिया। जगन्नाथ बहुत खुश हुआ पर उसने सोचा कि पपीता उसके किस काम का, तो वो उसे तुरंत वहां से लेकर एक सब्जी वाले की दुकान पे पहुंचा, क्योंकि उसे तो तुरंत भोजन चाहिए था। तो वो सब्जी वाले के पास गया और उसको पपीता दे करके यानी कि बेच दिया और उनसे कुछ पैसे लेकर के उसने वही उसी उन्हीं पैसों से भोजन भी खरीद लिया। कुछ समय बाद कृपाल उसी सब्जी वाले की दुकान के सामने से गुजरा। वो भी हमेशा की तरह भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। सब्जी वाला उसकी मीठी वाणी से बहुत खुश होता था, बहुत प्रभावित था। उसने दया करके वही पपीता कृपाल को उठाकर दे दिया, कहा कि महाराज आज यही खा करके आप अपना पेट भर लीजिए। कृपाल खुशी खुशी घर पहुंचा जाके और जब उसने पपीता काटा तो अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर उसे आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया, परंतु उसके मन में लालच नहीं आया। उसने तुरंत सिक्के समेटे और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसने कहा, भाई ये सिक्के तुम्हारे उसी पपीते से निकले हैं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये भैया ले लो अपने सिक्के। सब्जी वाला भी बहुत ही ईमानदार था, वह बोला, ये पपीता मुझे जगन्नाथ बेच गया था इसलिए ये सिक्के उसी के हैं। अब दोनों जगन्नाथ के पास पहुंचे। सिक्के देखकर जगन्नाथ भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, ये सिक्के मेरे भी नहीं हैं, यह पपीता तो मुझे महाराज ने दिया था, इसीलिए महाराज इनका असली मालिक हैं। तो चलो चलते हैं महाराज के पास। अब तीनों व्यक्ति सिक्के लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूरी कहानी सुनी तो वह अत्यंत खुश हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने समझ लिया कि संसार में देने वाला वास्तव में ईश्वर ही है और राजा तो केवल माध्यम मात्र है। इस पर राजा ने तीनों की ईमानदारी की खूब प्रशंसा की और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार से नवाजा और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने ही महल में काम दे दिया। तो इस तरीके से जगन्नाथ की भी सोच बदल गई, अब वह भी कृपाल की ही तरह ईमानदार हो गया और मन लगाकर राजा के महल में ही काम करने लगा। तो वास्तव में देने वाला भगवान ही है, ईश्वर है, वही सबको देता है, नवाजता है।
4: बेशक, सही फरमाया आपने। सो भाई, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? चलिए इसको लेकर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए। और फिलहाल गीता दीदी कहाँ जा रही?
3: जा रही हूँ अपने हम्टी डम्टी बच्चों के साथ धूम धड़ाका मस्ती और खेल खेलने।
4: क्या बात है। तो चलिए भाई, गीता दीदी भी, आपको क्या लगता है, नाम सिर्फ दीदी है, बच्चों के साथ रहते रहते ये भी छोटी हो गई है?
3: बिल्कुल।
4: तो गीता दीदी चली खेलने और बच्चों को संग लाने। तब तक के लिए आप क्या करिए, ये राइम्स एंजॉय करिए।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो दीदी,
1: कैसे हैं आप सब?
2: बहुत अच्छे हैं दीदी।
1: अरे वाह, तो बहुत।
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग अनन्या।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग सानिध्या।
6: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो भाई, आज तो बहुत गर्मी हो रही है ना?
7: जी दीदी।
1: अच्छा, ये इतनी गर्मी तो मुझे नहीं अच्छी लगती है। आप लोग को अच्छी लगती है?
6: नहीं दीदी।
1: है ना, मम्मा कितना डांटती, बाहर नहीं जाना है। और आज मैं पहले से बता दे रही हूँ, सारे बच्चे सुन ले, कोई बच्चा धूप में नहीं खेलेगा, ठीक है ना? धूप में खेलोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। और पानी वानी पीते हो कि नहीं तुम लोग? ORS घोल के बच्चे बहुत शरबत पीती हो। अरे वाह, तो ये बताओ कि जब मम्मा खेलने नहीं देगी धूप में, तो तुम लोग क्या करोगे, कौन सा गेम खेलोगे?
4: दीदी लूडो।
1: हाँ देखो, आराध्या को पता है, सानिध्या को, कि लूडो और भी खेल है। लूडो के अलावा चेस है, कैरम है, और सांप सीढ़ी है, और बिजनेस भी है। तो इतने सारे गेम हैं, आप लोग घर के अंदर कमरे में बैठ करके अच्छे से एसी में खेल सकते हैं ना, बाहर नहीं खेलना है। क्योंकि सूरज जो चाचू हैं, वो एकदम नाराज हैं इस समय, है ना? तो चलो ठीक है, उनको नाराज रहने दो भाई, उनका भी टाइम है। और वो अभी तो नाराज हैं क्योंकि वो बरसात को तैयार कर रहे हैं, है ना? तो चलते हैं भाई, बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से, और हम चलते हैं सानिध्या की ओर। अक्कड़ बक्कड़ कर लें। ओहो, अक्कड़ बक्कड़। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लागा तागा, चोर निकल के भागा। अरे भाई, अब देखो सानिध्या की तो और उंगली आ गई है। तो सानिध्या आज क्या सुनाने वाली हो?
4: हे शारदे माँ।
1: हे शारदे माँ। अरे वाह, तो ताली बजा दो एक बार, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत जो हमारी सानिध्या है, प्यारी सी, छोटी सी, क्यूट सी, वो सरस्वती वंदना से करने जा रही है। और जैसा कि हमारे देश की ये मान्यता भी रही है कि कोई भी काम करने से पहले ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छा माना गया है, तो आज हमारी सानिध्या प्यारी सी जो ये पोयम है, जो गीत है, ये सुना रही है। तो विद्या की देवी को मनाने के लिए सब लोग ताली बजा दो एक बार। चलो सानिध्या, शुरू हो जाते हैं।

0: तो एक बार भाई सानिध्या के लिए फिर से तालियां हो जाएं, क्योंकि सानिध्या ने बहुत सुंदर ये गीत प्रस्तुत किया है। तो अब किसकी फिर से अक्कड़ बक्कड़ करना है क्या?
1: जी दीदी,
0: फिर से। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100-100 में लागा तागा, चोर निकल के भागा। अरे अब तो शेषकर की ओर उंगली उठ गई है। तो शेषकर क्या सुनाने वाले हो आज?
2: दीदी आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाला हूँ।
0: कहानी?
2: जी वाह,
0: चलो बच्चों कहानी के लिए तैयार हो जाओ।
2: एक हाँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राकेश और मोहन।
0: अच्छा।
2: राकेश बहुत दयालु था और मददगार था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन जो भी होता वह उसमें से गरीबों की मदद जरूर करता था। वही दूसरी ओर मोहन बहुत अमीर था, लेकिन वह अत्यंत स्वार्थी था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन राकेश जंगल में गया और वहां बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जंगल की देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, राकेश मैं तुम्हारी नेकी से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं हमेशा भूखों को भोजन करा सकूं और सभी दुखी लोगों के कष्ट दूर कर सकूं। देवी ने मुस्कुराते हुए उसे एक चमकीला जादुई कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे से तुम जो भी इच्छा करोगे वह अपने आप सामने आ जाएगा, लेकिन याद रखना यह तभी काम करेगा जब तक तुम इससे स्वयं किसी जरूरतमंद को दान करते रहोगे। यदि तुमने इसे अपने पास छिपाकर रखा या खुद के लिए इस्तेमाल किया तो यह उसी क्षण गायब हो जाएगा। राकेश ने देवी को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। उसने उस जादुई कटोरे से हर रोज भूखों गरीबों और बेसहारा लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कोई भी भूखा नहीं सोता था और पूरा गांव राकेश की जयकार करने लगा। लालची मोहन की साजिश। जब मोहन को इस जादुई कटोरे के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गई। वह रात के अंधेरे में राकेश के घर में घुसा और उस कटोरे को चुरा कर अपने घर ले आया। मोहन बहुत खुश था और सोचने लगा कि अब उसे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन सुबह मोहन ने उस कटोरे से महंगे पकवानों की इच्छा की, लेकिन कटोरा खाली का खाली रह गया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन कटोरे में कुछ नहीं आया। देवी की शर्त के अनुसार उसने कटोरा चुराया था और वह उसका स्वयं के लिए गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उस जादुई कटोरे की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और सम्मान धन दौलत जमा करने में नहीं बल्कि दूसरों के सुख दुख में उनके काम आने और निस्वार्थ भाव से मदद करने में होता।
0: बिल्कुल बच्चों, है ना, क्या करना कि हमेशा दूसरों की भलाई करना है। आपके पास जो भी थोड़ा सा है आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है, उसमें से भी आप अपने दोस्त की या जो भी जरूरतमंद है उसकी आप मदद कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि सबकी मदद करते रहना चाहिए। अगर जो क्या नाम मोहन था
2: जी दीदी,
0: जो लालची था
2: जी दीदी,
0: अगर मोहन चाहता तो उसी कटोरे से धन दौलत निकाल करके दूसरों की मदद भी कर सकता था, लेकिन वो स्वार्थी निकला और उसने लालच किया, सोचा है कि अपना ही जो है बड़ा सेठ बन जाएगा उससे। पर देखिए क्या होता। एक और मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ तुमको, सुनना है?
1: जी दीदी।
0: ऐसे ही था, एक बच्चा था तो वो मम्मी उसकी बहुत ही गरीब थी, पिता थे नहीं, छोटे भाई बहन थे और वो सबसे बड़ा था घर में, तो उसके कंधों पर घर का बोझ था। तो उसकी माँ ने कहा कि जा बेटा तू बड़ा है और कुछ शहर में जाके कुछ काम कर। जब वो चलने लगा तो उसके पास कुछ था नहीं कि जो रास्ते खाने के लिए ले जाता, तो थोड़ी सी लैया जानते हो ना
1: जी दीदी,
0: पफ फ्राइज जो होता है, तो उसकी माँ ने वही थोड़ा सा उसको बांध दिया और कहा कि तुम यही लेकर के जाओ। फिर वो चल पड़ा। ठीक है, अब चलते चलते वो थक गया शाम को और बैठ करके एक जगह उसने सोचा कि माँ ने थोड़ा सा वो दिया है लैया, उसको खा लिया जाए। तो वो लैया खाने के लिए वहाँ पे बैठ गया। उसी समय वहाँ पे जो वन देवी, जैसे अभी आपने बताया है ना, वो विचरण कर रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे ये बच्चा इतने विदान जगह पर बैठा हुआ अकेले और ये पफ राइस खा रहा है, लैया खा रहा है, चलो देखिए क्या बात है। तो उसके पास गए और वो उससे ऐसे एक मतलब जल देवी थी, वो वन देवी नहीं जल देवी थी, उससे बात करते करते उन्होंने उसकी सारी परिस्थिति समझ ली, जान गई कि ये बहुत ही नीडी है, ज़रूरतमंद है। तो उन्होंने उसकी सोचा कि मदद कर दिया जाए। तो उसको एक शंख ला के दिया और कहा कि ये शंख जो है तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर देगा, तुम इस शंख से जो भी मांगोगे वो तुमको देगा। तो बड़ा खुश हुआ वो बच्चा, और क्योंकि रात हो गई थी तो उसने कहा अब रात में तो जंगल के बीच से होकर घर जाना ठीक नहीं रहेगा। तो उसने देखा पास में ही लाइट जल रही थी और वो शहर की ओर चला गया, सोचा कि यहाँ पे रात गुजार करके और सुबह अपने घर चले जाएंगे। तो वो चला गया, वहाँ पे एक सराय होती थी पहले, मतलब छोटे मोटे ऐसे रुकने की जगह होती थी, उसको सराय कहा जाता था। तो वहाँ पे गया और उनसे कहा कि मुझे रुकने के लिए दो। तो उन्होंने कमरा दे दिया और कहा कि 20 रुपया लगेगा कमरे का किराया। तो बोला मैं दूंगा, और उसने तुरंत ही उससे ढपोस संघ से कहा मुझे 20 रुपये दे दो। तो उसने झट से 20 रुपये निकाल के दे दिए और उसने उस सराय की जो मालकिन थी उसको दे दिया। वो बड़ी लालची थी, उसने देखा अरे शंख से जो, तो उसने कहा बच्चे ये शंख से तुम जो भी मांगोगे देगा? बोले हाँ। तो कहा कि देखो मैं अभी दिखाता हूँ। वो भूखा भी था थोड़ा, तो उसने कहा कि मेरे लिए मोती चूर के लड्डू लाए जाएं। तो लड्डू आ गए तुरंत, शंख ने लड्डू निकाल के दे दिए। तो वो लालची महिला थी और वो रात में उसके सोने की प्रतीक्षा करने लगी। जब वो रात में सो गया तो उसका शंख उसने चोरी कर लिया और चोरी करके उसकी जगह एक झूठा शंख रख दिया। अब वो बच्चा घर पहुंचा और माँ से कहा हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं एक ऐसा चमत्कारी शंख लाया हूँ, इससे जो भी मांगोगे वो देगा। तो सब बच्चे इकट्ठे हो गए और माँ भी इकट्ठी होगी, बोले बहुत हम लोग भूखे हैं तो शंख से पहले खाना मांगो। तो उसने कई बार कहा कि सबके लिए बढ़िया स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, पर शंख ने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो शंख ऐसा था नकली था। अब उसको बड़ा दुख हुआ, फिर वो बच्चा रोने लगा और उसने कहा मैं फिर जा रहा हूँ, अब मैं मेहनत करूँगा और कुछ कमा के ही लाऊँगा। फिर वहाँ पे जा करके वो, अब तो उसके पास पफ राइस भी नहीं, लैया भी नहीं थी, तो भूखे पूरे दिन चल करके और शाम को वहीं बैठ करके रोने लगा। अब वो जो जल देवी थी उन्होंने कहा कि अरे ये बच्चा तो फिर आ गया, रो रहा है। तो वो निकल के फिर आए, कहने लगी तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? तो उसने सारी कहानी बता दी उनको। उन्होंने कहा तुम रो नहीं, और एक शंख ला करके फिर उन्होंने दिया, कहा ये शंख ऐसा है जैसे तुम इससे कुछ भी मांगोगे ये दुगना देने का वादा करेगा पर देगा कुछ नहीं, और ले जाओ वहीं पर। और फिर वही बच्चा जो था वो शंख लेकर के, और उन्होंने उसको चालाकी सिखा दी थी कि तुम उसके सामने सराय की मालकिन के सामने ऐसे ऐसे करना। तो बच्चा गया और फिर वहीं पर रुकने के लिए कहा, तो उसने कहा कि अरे आज तुम फिर आ गए? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा 40 रुपये पड़ेंगे आज? तो उसने कहा ठीक है 40 देंगे हम आपको। तो वो जो मालकिन थी तो उसने कहा दो। तो उसने शंख से कहा मुझे 40 रुपये दिए जाए। तो बोला मैं आपको 80 रुपये देता हूँ। तो वो समझ के कहे अच्छा अच्छा अच्छा ठीक, बाद में दे देना, तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। और उसके लिए वो खाना लेकर के आई, उसको खिलाया पिलाया और आराम से जो था वो वहीं पर सो गया। अब वो जो चोर महिला थी उसने क्या किया, जो पुराना शंख चुराया था वो शंख वहाँ पे उसने रख दिया, और जो उस दिन लेकर के शंख गया था वो उसने ले लिया। और इस तरीके से अब वो अपना पुराना शंख पा गया था। और जब घर गया और घर जाके उसने मम्मी को दिया अपनी, और सब ने खूब अच्छे से मजा किया, और इस तरीके से उनकी लाइफ जो स्मूथली चलने लगी। तो कैसी लगी थी कहानी?
3: बहुत अच्छी थी।
0: तो तालियां तो बजा दीजिए। भाई वाह, तालियों में तो बहुत जोर था। तो चलते हैं अब भाई, अब अकड़ बकड़ नहीं करेंगे। अब सानिध्या का नंबर आ गया है, आराध्या का। सानिध्या आराध्या, सानिध्या आराध्या, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो चलो देखते हैं कि हमारी आराध्या आज क्या हमें बताने वाली हैं।
1: दीदी कहानी है।
0: कहानी, कहानी तो जल्दी से सुना दो।
1: एक समय की बात है, एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहता था। एक बार कछुए और खरगोश में शर्त लगी कि कौन तेज दौड़ता है। एक जंगल तय कर दी गई,
0: एक जगह तय कर दी गई।
1: जी दीदी, वह जो पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। खरगोश को अपने तेज चाल पर बहुत घमंड था। फिर दोनों दौड़ शुरू हो गई। कछुए धीरे गति से चल।
0: अरे भाई आराध्या, देखो मैं बता रही हूँ कहानी।
1: तेज दौड़ा और कछुए को बहुत पीछे देख
0: छोड़ दिया।
1: बहुत पीछे देख कर एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुए धीरे धीरे चल कर पेड़ के नीचे आया पहुंचा। खरगोश अभी भी सोया
0: हुआ रहा था, लेकिन वो चलता रहा।
1: दीदी कछुआ धीरे धीरे चल कर तय किया,
0: जब वहीं पर पहुंच गया जगह पर
1: पहुंच गया। जब खरगोश की नींद खुली तब वह देखा तेज भागा, फिर कछुए वहां पहले ही पहुंच चुका
0: तो था। किसकी जीत हुई
1: इस कहानी में? जीत कछुए की हुई। इस कहानी से शिक्षा, हमें घमंड नहीं करनी चाहिए
0: और निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, है ना?
1: जी दीदी।
0: तो जो मेहनत करता है उसको सक्सेस मिलती है, उसको ही सफलता मिलती है। तो चलो फिर से अब सानिध्या का नंबर आ गया। सानिध्या अब क्या सुनाने वाली है? इतनी शक्ति हमें देना दाता। अरे वह बहुत प्यारा सा गीत है ये। तो चलिए आज प्रार्थना भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने के साथ ही साथ प्रार्थना भी बंद है। केला खा के आता है कौन?
1: नाराज ने केला खाया।
0: जोर जोर से ताकत लगा।
1: नाराज ने केला खाया।

0: और मुंह से निकला
1: हाय राम
0: हाय राम हाय राम हाय राम। इतना मजा आता था ना, तो वही अब मजा हमारी अनन्या ले रही है, सानिध्या ले रही है, आराध्या ले रही है। तो चलो अब फिर से हम सानिध्या का प्यारे से ये जो पोयम नहीं है, गीत है, और ये प्रार्थना भी कह सकते हैं।
2: बैठ जाइए।
0: हाँ,

0: मन का विश्वास कमजोर होना।
1: भाई तालियां बजा दो। तो देखो कितना सुंदर गीत जो है, अब सानिध्या के साथ साथ मेरा भी मन कर जाता है गाने का, है ना
2: जी दीदी।
1: तो चलो भाई, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि बच्चे थक गए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने शैतान हम्टी डम्टी को लेकर करके। और ये सब हमारे मोस्ट सीनियर बच्चे कह सकते हैं इनको, और ये काफ़ी शैतान हैं, तो इनकी कमान जो है मुझे अपने हाथों में लेनी पड़ती है। चलिए बाद में परिचय कराते हैं, लेकिन परिचय कराने के लिए सब बोल भी रहे हैं, तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्लोक जी और साथ में बैठे हैं ऋषभ, और उसके अलावा हमारे साथ हैं सत्यम, साथ में है समर, और इसके अलावा यश, और हमारे विचारक अथर्व भी हैं साथ ही साथ। हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ चुके हैं। ये बहुत सारे बच्चे हैं और परिचय कराते कराते तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो हम बाद में इनका परिचय कराते रहेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम ऋषभ की ओर। और ऋषभ जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: तो आज क्या लेकर के आए हैं अपने दोस्तों के लिए?
1: दीदी कहानी।
0: कहानी लेके आए हैं, तो चलिए जल्दी से बिना देर के सुना दीजिए।
1: एक छोटे से गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में दो बच्चे पढ़ते थे, आरो और मोहन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ खेलते और साथ पढ़ते, हमेशा एक दूसरे की मदद भी करते थे। एक दिन स्कूल में परीक्षा होने वाली थी। मोहन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, जबकि आरो बहुत होशियार था। परीक्षा से एक दिन पहले मोहन उदास बैठा था, तभी उनकी टीचर जी आई और बोली, क्या हुआ मोहन, इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने धीरे से कहा, मैडम मुझे डर लग रहा है कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा। यह सुनकर आरो बोला, मैडम मैं आज से मोहन को रोज पढ़ाऊंगा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। टीचर जी मुस्कुराई और बोली, यही तो सच्ची दोस्ती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल के समय में काम आए। उस दिन के बाद आरो रोज मोहन को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे मोहन की आत्मविश्वास बढ़ने लगी। परीक्षा हुई और जब परिणाम आया तो मोहन बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर आरो मेरा साथ नहीं देता तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। टीचर जी ने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों याद रखो, दोस्ती केवल हंसी मजाक का नाम नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को आगे बढ़ाना, हिम्मत देना और सही रास्ता दिखाना।
0: तो हमारी भी तो आप लोगों से यही अपील है कि एक दूसरे की मदद करते रहिए। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा, देखिए सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समझदार होता है तो कोई कुछ थोड़ा कम समझदार होता है, तो एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, ताकि सच्ची दोस्ती तो यही है कि हमारा जो जूनियर बच्चा है वो उसको अपने समकक्ष लाना, अपने बराबरी पर लाना, और ये नहीं कि कंपटीशन है हमको ज़्यादा नंबर लेके आना है तो मेरा दोस्त का कम रह जाए। मन में ये अगर बात आप ले आए तो आप समझिए कि वास्तव में सक्सेस आपको नहीं मिली है ना। तो इस कहानी, ये बहुत अच्छी कहानी थी, और ख़ास तौर से आप लोग, आप जैसे बच्चों के लिए है ये कहानी। तो चलते हैं हम श्लोक की, और श्लोक आज क्या बता रहे हो?
2: दीदी आज मैं स्टोरी सुनाऊंगा।
0: अरे सबकी स्टोरी, आज सब तैयार हैं। ये मौसम भी आ गया है, गर्मियों का मौसम होता है स्टोरी सुनने का, एक दूसरे की बात को समझने का, नानी और दादी की कहानियां सुनने का। तो चलो ये कहानी और जुड़ती है आप लोगों के साथ।
2: इस कहानी का नाम है कंजूस का बेटा महाकंजूस।
0: कंजूस का बेटा महाकंजूस।
2: एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। तभी कंजूस सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ मेहमान के लिए आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ।
0: बेहतरीन मिठाई
2: जी। अरे वाह। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। तभी कंजूस ने पूछा, बेटा मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी पहले मिठाई की दुकान पर गया तो हलवाई ने बोला कि अच्छी सी मिठाई दे दो। तब हलवाई ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसे। फिर मैंने सोचा क्योंकि क्यों ना मैं मक्खन ही ले लूं। तभी मैं मक्खन लेने दुकान गया और दुकानदार से कहा, सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। तभी दुकानदार वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा कि बिल्कुल शहद जैसा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं शहद ही ले लूं। तब मैं शहद वाले के पास गया और उससे कहा कि सबसे अच्छा शहद दे दो। शहद वाले बोला, ऐसा शहद दूंगा जैसे पानी। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो मेरे घर पर ही है, तो मैं क्या खामखा क्यों यहाँ पे अपना पैसा बर्बाद करो, इसलिए मैं खाली जर हाथ चला आया। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को खूब शाबाशी दी। लेकिन तभी कंजूस सेठ ने के मन में ख्याल आया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा तू इतनी दूर घूम कर आया, तेरी चप्पल घिस गई होगी। तब कंजूस सेठ का बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर पे आए मेहमान की चप्पल पहन कर गया था। बेटे की ये बात सुनकर कंजूस बाप ने आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
0: वाह भाई वाह, बहुत बहुत बढ़िया कहानी थी। बच्चों तालियां तो बजा दो। और इसी तरीके की एक कहानी मैंने द माइजर पढ़ी हुई थी। तो वो भी इसी तरीके की ही कहानी थी, बहुत मजा आता था वो कहानी पढ़ करके। तो चलिए अब अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा या नहीं? नहीं नहीं भाई, अक्कड़ बक्कड़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सानिध्या जो है वो नाराज हो जाती है और कहती है मेरा तो रह ही जाता है। तो सानिध्या का ना रह जाए, इसलिए मैं सानिध्या को फिर से आमंत्रित करती हूँ। सानिध्या आप क्या सुनाने वाली हो?
3: कद्दू जी की चली बारात।
0: कद्दू जी की चली बारात, अरे वाह, ये तो बहुत ही फेवरेट कविता है। चलो सब लोग मिलके सुनते हैं, कद्दू की बारात कैसे चली।
3: कद्दू जी की चली बारात, हुई बता छोटी बरसात, बैंगन की दाढ़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर थूप बजाया बाजा, मेथी पालक भिंडी तोरी हिंदा मूरी गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर, कद्दू जी हंसते मुस्ताते लौटी दुल्हन लाए, तथल और तरेले जी ने चाट पटोड़े खाए, सुबह पता चली यह बात सबने देखा था यह रात।
0: भाई देखिए, ये सपने में सारी बारात चल रही थी, वास्तव में बारात नहीं थी। हाँ तो ये देखिए, कल्पना शक्ति होती है बच्चों की, जब हम सो जाते हैं तो वही जो दिन में कल्पनाएं होती हैं वो सपने का रूप ले करके हमारे सामने हाजिर होती हैं, और हम कहते हैं मैंने रात में ये वाला सपना देखा, बहुत मज़ेदार सपना देखा। तो चलो चलते हैं, कितनी कविता लेके आई है सानिध्या आज, कितना सुनाना चाहती है, चलो सुना दो।
3: देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियां देश बना दिलदार, झरते दाटे दीत मोना मनोहर सुंदर मीठी तान, रंग बिरंगे पंख वाली पंछी तरे तलोल, मोर पपीहा टोटा टोयल बोले मीठे बोल, हम भी इनके स्वर में स्वर भर तरे देश दुंदार, बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, देहू चना धान मटाते ठेत थूब लहराते,
0: सबसे प्यारा अपना देश महान। बहुत प्यारी पोयम थी भाई, बहुत ही प्यारी पोयम थी। जब भी कहीं देश की बातें होती हैं तो मेरा मन तो एकदम बाग बाग होता है कि हम इतने प्यारे देश में रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अतुल जी और तन्मय जी के साथ, और सुनते हैं वो एक प्यारा सा गीत सुनाने वाले हैं, क्योंकि चल रहे हैं इस समय मतलब ये धार्मिक मंथ चल रहा है, तो कुछ ले करके आए हैं ये बहुत अच्छा सा सुनाने वाला। तो चलिए चलते हैं, पुरुषोत्तम मास में भक्ति भाव में भर जाते हैं।

0: बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
1: वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब हमारे साथ हैं समर जी, और समर जी आज क्या सुनाने वाले हैं? और हमारे सत्यम जी नहीं दिख रहे हैं, कहीं खो गए हैं,
2: वो उधर बैठे हैं।
1: ओ सत्यम जी छिप करके क्यों बैठे हैं आज? ओके चलिए समर जी।
2: हाँ तो जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग समर हीट वेव चल रही है, समर हीट वेव।
1: समर, और समर को हम कहते हैं हवा का झोंका भी,
2: समर भयंकर अति बल भी था।
1: हाँ और हीट वेव तो खैर चल ही रहे हैं।
2: हाँ वही तो, बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक हीट वेव चल रही है। अभी हर दो दिन में नोटिफिकेशन आता है भारतीय मौसम विभाग का, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, कि हीट वेव्स चलेंगी इसी सीजन में। IMD का नोटिफिकेशन आता है कि ये करें, ये करें, ये ना करें, और बांधा
1: नहीं
2: तो,
1: ये करें नहीं, बताइए कि ये करना चाहिए, कि पानी की बॉटल लेके चलना चाहिए।
2: और नहीं वो तो भी आगे बताऊंगा, वो सब बता दूंगा।
1: और हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी खूब पीते रहना चाहिए, सर ढक के चलना चाहिए, फुल कपड़े पहन के चलना चाहिए, और साथ ही साथ पेय पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। सब मैंने बता दिया।
2: तो अभी जल्दी में सबसे जो दुनिया की टॉप मोस्ट गर्म सिटीज थी उनमें से 50 इंडिया की थी और 26 उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा गर्म जो
1: जगह
2: थी वो बांदा रही 47.6 डिग्री सेल्सियस। 47.6 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है कि अगर 50 ये टेम्परेचर पहुंच जाए तो हम बड़े आराम से रेत में पापड़ तल के खा सकते हैं, तल के नहीं फिर भी उबाल के
1: वो भून करके
2: भून के खा सकते हैं। एक ही बात होती है वो कुल मिला के। और सोचिए राजस्थान के उन इलाकों में जहाँ जैसे चुरू में और थार डेजर्ट में क्या हाल होता होगा,
1: सैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है।
2: हाँ हाँ वो बहुत बहुत था, भले ही वहाँ रात में थोड़ा ठंडा होता हो लेकिन फिर भी दिन में तो बड़ी मुश्किल होती होगी। तो ये हम लोग आज इसी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हीट वेव क्या है, बचें कैसे और क्यों है हीट वेव। अभी तक तो नहीं होती थी इतनी हीट वेव, अभी क्यों हो रही है? तो ये जो है इंडिया में लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आधा से ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, और पंखा भी बहुत गर्म हवा दे रहा है, ऐसा होता है हीट वेव। और हीट वेव मतलब कि बहुत गर्मी नहीं होती एग्जैक्टली, हीट वेव अलग अलग जगह के अलग अलग टेम्परेचर पे डिसाइड होती है। जैसे अगर किसी टेम्परेचर, किसी सिटी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मई में 39 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वो अचानक से 45-46 पहुंच जाए तो वह हीट वेव हो जाएगी। जब रात की भी हवा ठंडी ना हो तो वो और ख़तरनाक हीट वेव बनती है, जैसे अभी हो रहा है दिल्ली में और बहुत सारे जगह पे, कि रात की भी हवा ठंडी नहीं है, रात की भी हवा बहुत गर्म चल रही है। बॉडी हीट को ऐसे हैंडल करती है कि हमको सबको पता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 point something डिग्री सेल्सियस है, तो उसको नॉर्मल हम एवरेज 37 मान के चलते हैं कि उसको मेंटेन करके रखना है बॉडी को। कम हुआ तो गर्मी की ज़रूरत है और ज़्यादा हुआ तो ठंडी की ज़रूरत है। तो अब हम 47 डिग्री में चल रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि 38-40 डिग्री यहाँ का गोंडा का टेम्परेचर चला जाता है। हाँ 38-41 चला जाता है। तो उसमें मेंटेन कैसे करती है बॉडी हमारी, कि बहुत सारे पसीने को निकालती है। जब पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। जैसे हम सब जानते हैं ना कि बेसिक केमिस्ट्री है कि जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है, कोई चीज़ जब इवेपोरेट हो जाती है तो कूलिंग छोड़ के जाती है। जैसे मटके का पानी इवेपोरेट होता है तो मटके का पानी ठंडा हो जाता है, ऐसे ही जब हमारा ये जो पसीना होता है वो जब इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे शरीर को ठंडा करता है। अब मेन दिक्कत ये है कि इवेपोरेट कैसे हो, कुछ इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं कि टेम्परेचर और विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतनी तेज़ होगा और बॉडी इतनी जल्दी ठंडी होगी। तो ह्यूमिडिटी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि वो मेन दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने सबने सुना है कि यहाँ की दिल्ली की गर्मी जो है 47-48 तक जाती है,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन वो दिल्ली की गर्मी उतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी मुंबई की गर्मी जब मानसून में जाती है। आपने देखा होगा कि मानसून में कुछ ऐसे चिपचिपी गर्मी होती है,
1: कोस्टल एरिया वाले जितने भी क्षेत्र हैं,
2: हाँ वहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी यहाँ पे भी होता है प्लेन्स में कि जब मानसून आने वाला होता है ये जून जुलाई के महीने में, तो बहुत सारी चिपचिपी सी गर्मी होती है, उसमें हम एसी भी नहीं काम करता ठीक से, और उसमें हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा पसीना जो है वो सूख नहीं पाता, इवेपोरेट नहीं हो पाता, तो इसीलिए हमको ज़्यादा खतरनाक फील होता है। और ये और ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें बॉडी, जब पसीना इवेपोरेट नहीं हो रहा है तो बॉडी कूल नहीं हो पा रही है, इसीलिए कभी कभी मुंबई की गर्मी दिल्ली की गर्मी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और यही हो रहा है अभी। कभी कभी जैसे आप देखी होंगी ना कि दोपहर के बाद शाम को अभी
1: बहुत ज्यादा
2: चिपचिपा, हाँ उमस टाइप का कुछ होता है। और दूसरा रीजन इसलिए है कि हम सारे जो सिटीज हैं उन सब को ईंटों से ढकते जा रहे हैं,
1: बिल्कुल पेड़ पौधे तो रह ही नहीं गए हमारे बीच में,
3: जो होता है वो हीट को ट्रैप कर देता है
2: और रात में छोड़ता है, इसीलिए वो रीजन है गर्म रातों का, जो मैंने बताया कि रातें भी गर्म हो रही हैं। और मानसून टाइमिंग, अगर ह्यूमिडिटी अभी इतनी ज़्यादा है तो मानसून में क्या रहेगी, मानसून ह्यूमिडिटी पे ही पूरा टिका हुआ है। अगर अभी मान लीजिए अभी आपके पास ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मानसून आएगा ही नहीं कभी, और अगर मानसून आएगा नहीं तो गर्मी और ज़्यादा ऐसे साल दर साल ऐसे बढ़ती चली जाएगी। एग्रीकल्चर पर इतना इफेक्ट है कि कुछ दिन में तो अगर ऐसे बढ़ते रहे, हम पेड़ नहीं लगाएंगे और नदियों को साफ़ नहीं रखेंगे, और नदियां को साफ रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे जंगल जीवित हैं
1: जी, बिल्कुल
2: हाँ, तो अगर उसको साफ़ नहीं रखेंगे और पेड़ नहीं लगाएंगे बहुत सारे, तो शायद कुछ आने वाले सालों में एसी भी नहीं काम करेगा। और इंडिया जो है इस समय बहुत ज़्यादा हीट वेव, इसलिए
1: ना नदियों के जो मुहाने पे जंगल दिखे उस सदाबहार वन कहलाते हैं,
2: हाँ, जी सुंदरवन डेल्टा जैसे है ये, हाँ, गंगा के किनारे। और इंडिया तो इसलिए भी बहुत बहुत कम उसमें मुझे लगता है रोल है, इंडिया थोड़ा सा इसलिए भी हीट वेव का शिकार है इस समय क्योंकि एल नीनो है भारत में इस साल, सुपर एल नीनो कहा जा रहा है। एल नीनो जो होता है वो भारत के टेम्परेचर राइज का, तो मैं बता चुका हूँ,
1: बढ़ा देता है,
2: हाँ।
1: और जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है वो काफी वीक है,
2: हाँ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस अप्रैल में आया था तो मैं तो बहुत खुश हुआ था कि यार इस साल अच्छी,
1: लेकिन भाई खुशी की तो ये बात है कि अप्रैल हमारा बहुत अच्छा निकल गया और आधी मई भी बहुत अच्छी निकल गई, लेकिन अब जो है समय ये चैलेंज भरा है कि इसमें जो है,
2: और आप कह दीजिए वो भी बता दूं क्या करें क्या ना करें, तो क्या करें वो तो आपने सब बता दिया, क्या ना करें बचा,
1: बच्चों
2: तो,
1: के लिए भाई बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि
2: क्या
1: वो,
2: ना करें ये है मेन चीज कि आप तो पहली बात तो 12 से 4 जो पीक टाइम है, तो बल्कि 11 से 4 निकलने का कम से कम प्रयास करें, हो सके तो ना ही निकलें घर से बाहर,
1: तो इमरजेंसी है तो आदमी निकलता ही है, लेकिन
2: और अगर निकलें तो कुछ वाइट कपड़े या फिर कुछ कम डार्क कपड़े और बहुत
1: होना चाहिए,
2: हाँ कुछ कम डार्क कपड़े जो सन की लाइट को वो दोबारा रिफ्लेक्ट कर दें, और कुछ हवादार कपड़े पहने, अंगोछा लेके साथ में निकले, टोपी लगाएं, चश्मे लगाएं, और जानवरों को थोड़ा सा टीन,
1: हाँ, के तो आज ये हम अपने बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, और हमारी ये जो हम्टी डम्टी के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी छतों पर किसी भी जो मिट्टी के पात्र में आप पानी भर के रख दीजिए, कुछ दाने, हाँ, कुछ अनाज बिखेर दीजिए, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए तो सोचने
2: हम
1: वाला,
2: हम तो कूलर पंखे में आ जाते हैं लेकिन वो जो बेचारे एनिमल्स और ये सब होते हैं ये नहीं आ पाते,
1: उनके लिए भी भोजन पानी, और अपने दरवाजे पर हो सके तो किसी छोटी मोटी बाल्टी जो है उसमें पानी भर के रखे।
2: एक और क्या कह रहे में है वो, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो हम हीट वेव से कतई नहीं हट सकते, पेड़ लगाए, क्योंकि बिना पेड़ के आने वाले सालों में स्थिति और खराब हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हम लोग 60 डिग्री के बाद आदमी जीवित नहीं रह सकता।
3: मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि वो पेड़ लगा रहा है। अभी आप देखेंगे भोपाल के एक पार्क, वहाँ का एक बहुत ही फेमस पार्क है, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल ट्री लगाया गया है और वो आर्टिफिशियल ट्री सोलर पैनल से ही काम करता है, सोलर एनर्जी को कंज्यूम करता है, एंड मैं आपको बता दूं उसमें एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें पानी होता है और पानी में कई सारा एल्गी भर दिया जाता है, नीचे एक टरबाइन होता है उसके, एंड वो जितनी पॉल्यूशन होती उसको खींच लेता है, वैक्यूम के जैसे खींच लेता है, देन वो एल्गी के पास वो जो पॉलिटेंट्स PM2 जो मटेरियल्स होते हैं उनको वो ऊपर जाता है, एल्गी उसको खा लेता है और वो खत्म हो जाता है। फिर जो स्लज उसमें से बचता है वो बाद में निकाल लिया जाता है। ये आर्टिफिशियल ट्री का काम है, वो पॉल्यूशन खत्म कर रहा है, लेकिन ट्री क्यों नहीं लगा रहे हम लोग? आर्टिफिशियल ट्री
1: जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं।
2: तो बल्कि हर जगह लगाया जा सकता
3: है। और इसका मेन पर्पस ये है क्योंकि वो बहुत ही कम स्पेस लेता है और एक ट्री बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, बस इसीलिए। लेकिन
2: बहुत
3: वो एक रियल ट्री को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता।
2: ट्री लगाना, पेड़ लगाना तो बहुत बहुत बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा
1: बहुत जरूरी। हम तो कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति जो है अपने दरवाजे पर इतना स्पेस तो छोड़े कि एक पेड़ लगा सके।
2: हाँ, एक पेड़ लगा सके और उसकी देखभाल करके कम से कम उसको बड़ा ही
1: बड़ा कर सके।
2: क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कह रहा हूँ आने वाले दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और 60 डिग्री के बाद आदमी जीवित नहीं रह सकता।
3: बड़ा करना ये भी बहुत,
1: और सुनिए कि बहुत लोगों की दलील ये होती है ना कि अगर हम कोई, हमने कहा कि कोई फलदार वृक्ष लगाइए जिससे सबका भला हो, तो बोले नहीं फलदार वृक्ष में तो बहुत ज्यादा हमको जो है परेशानी होगी क्योंकि बच्चे जो है तोड़ेंगे और लोग भी तोड़ लेंगे। तो भाई वृक्ष देखिए, वृक्षों से सीखिए आप कि वृक्ष एक संस्कृत में श्लोक भी है और कहा गया है, तुलसी उन्होंने भी कहा कबीर दास ने कि वृक्ष का बहुना फल भखे और नदी संचय नीर, पर मारत के कारण साधुन धरा शरीर। तो हमारा शरीर किस काम का है अगर हम कुछ ऐसा नहीं सोच सकते हैं दूसरों के लिए काम करिए।
2: क्योंकि
3: हम जो ह्यूमंस है उन्हीं के पास ऐसी एक पावर है, सारे क्रिएचर्स में हम ही के पास पावर है जो कि
1: दूसरों के लिए हम कर सकते हैं।
4: भगवान ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाए, लेकिन हम लोगों ने इस धरती
1: नर्क बना दिया है। तो सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन जो बढ़ती चली जा रही, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण है।
2: और पूरी दुनिया में नहीं बढ़ रही, सिर्फ इंडिया में बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है ये दुनिया की लगभग 40-50% आबादी।
3: अभी तो आपके पास टीवी पे एड्स आने लगेंगे पॉपुलेशन काउंटिंग का।
2: हाँ, वो जनगणना होने वाला
1: और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
2: तो
1: मुझे तो पूरा मतलब होप ऐसी है कि यहाँ ये बढ़नी है, बढ़नी
2: वो लगभग 150 करोड़ का आंकड़ा।
3: और वो डेटा भी हम लोग को नहीं दिया जाएगा, एक रॉ डेटा दिया है 150 करोड़, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को नहीं दिया जाएगा।
1: एग्जैक्ट कभी नहीं मिल पाता,
3: एग्जैक्ट कभी इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम लोग को टोटल बताया जाता है लेकिन उसमें से ग्रुप
2: हर साल इंडिया एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, क्या करेंगे अब।
1: चलिए बहुत अच्छी आपने बात बताई है और हम तो सबसे यही कहेंगे कि जैसा कि हम बच्चे आपको बता रहे हैं, आप कम से कम बच्चों की ही सुन लीजिए कि आप फॉलो कीजिए जो रूल्स हैं गर्मी से बचने के लिए और उन पे आप अमल करिए और बचे रहिए गर्मी से। तो चलिए चलते हैं हम, हमारे पास सत्यम जी हैं। सत्यम जी आज उनकी बहुत अच्छी मतलब बातें होती हैं और कोई ना कोई बच्चों के लिए भी वो लेकर के आते हैं, तो देखते हैं आज क्या बच्चों के लिए बताने वाले हैं।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हम टी डम्टी विद गीता दीदी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समस्या की जो धीरे धीरे बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी की जिंदगी को प्रभावित कर रही है,
1: नरक बना रही है, ऐसे कहते हैं।
5: हाँ, विषय है मोबाइल की लत और इसके मतलब इससे कैसे बचें। दोस्तों, आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, सोशल मीडिया, गेम्स और वीडियो, सब कुछ अब मोबाइल पर ही निर्भर हो चुका है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ज़रूरत धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल गई।
1: इस समय तो हम कहेंगे कि सब एडिक्ट हो गए हैं।
3: आजकल कई सारे लोग हैं जो कि पूरे दिन 5-6 घंटे मोबाइल पे लगे
4: और उनका स्क्रीन टाइम चेक कर लीजिए जरा।
2: और वो सबसे खराब चीज़ जो मोबाइल में होती है वो शायद अभी सत्य बताएगा, ये जो छोटे शॉर्ट टर्म कंटेंट है। हाँ, ये बच्चे, अच्छा मैं देखता हूँ बच्चे तो क्या देखते हैं ज़्यादातर शॉर्ट टर्म कंटेंट, ये जो शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील जो एक डेढ़ मिनट के होते हैं, क्योंकि ये हर डेढ़ मिनट बाद अपना टॉपिक बदल लेते हैं और इतना खतरनाक टॉपिक बदल देते हैं। ऊपर वाली रील अगर किसी कार्टून के ऊपर होगी तो उसके जस्ट नीचे वाली रील किसी और चीज के बारे में होगी,
3: बहुत बड़े कोई साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में होगी, और फिर उससे उनका जो माइंड होता है वो हिट कर जाता है कि मैं चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। लेकिन अगर आप कोई लंबी वीडियो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। ये शॉर्ट्स वाला जो टर्म है ना, ये इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाता है और बस एडिक्टिंग
1: बस बोर नहीं होने देता
4: बच्चे
1: है
4: ये जानना चाहते हैं अगले रील में क्या होने वाला
2: ये है। शॉर्ट डोपामाइन को भी रिलीज करता है। सबसे बड़ी बात है शॉर्ट डोपामाइन। शॉर्ट डोपामाइन जिन लोगों को नहीं पता हूं, मैं बता दूं कि हैप्पीनेस हार्मोन होता है एक डोपामाइन जो रिलीज होता है तो हम लोग को खुशी होती है। और जब रील देखते हैं तो छोटे छोटे डोपामाइन रिलीज होते रहते हैं, हम लोग को खुशी होती रहती है
5: एक दो दो मिनट पर।
2: हाँ, और ये आप जितना जिस हद तक सोचते हैं ना उस हद से बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ब्रेन रॉट एक होता है उसको, मतलब इसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि ब्रेन को खा लेता है ये,
3: फॉर रियल ब्रेन रॉट।
5: जैसा कि अभी यश ने बताया कि आज कई लोग 5 से 6 घंटे केवल मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है, नींद की कमी से मानसिक तनाव भी हो सकता है।
1: मोबाइल ये तो सब में देखने को मिलता कि आजकल सोते कम हैं लोग।
5: जी दीदी,
1: क्योंकि अपना सारा टाइम
2: हाँ, मैं एक दिन एक डेटा देख रहा था तो उसमें था कि सन 2000 के आसपास जो टीनेजर्स थे यानी कि हम लोग की उम्र के बच्चे, उनका जो नॉर्मल स्लीपिंग टाइम था, क्योंकि कुछ करने को नहीं होता था, खेलते थे और खाते थे, पढ़ते थे, सो जाते थे, जो नॉर्मल सोने का टाइम होता था, मतलब स्लीपिंग टाइम कितना घंटा सोते हैं, वो 9 से 10 घंटे था, जो आज घट के सिर्फ 6 से 7 घंटे रह गया है। अब सोच जिस टीनेजर को विकास करना है, जिसकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, भावात्मक विकास हो रहा है, वो सिर्फ 6 से 7 घंटे में कैसे होगा ठीक से विकास।
3: और पहले के लोगों का स्लीप साइकिल भी बहुत डिफरेंट हुआ करता था। साल 1700-1600 में लोग 2 स्लीप साइकिल में सोते थे, पहला थोड़ा शाम में सो लेते थे फिर उठते थे, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो माइंड थोड़ा रिफ्रेश होता है, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते थे, जाकि जो फेमस नॉवेल्स वॉल्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वो लोग उसी जनरेशन
4: ऐसे कहते हैं नैप, मतलब कि दोपहर में सोने को नैप कहते हैं।
2: ऐसे सोते थे वो लोग कि जैसे शाम को 8-7 बजे सो गए, फिर रात में 2-3 बजे उठे, फिर वो जो 2-3 बजे उठे ना वो सबसे क्रिएटिव टाइम होता है।
1: हाँ, तो उस समय वो अपना
2: काम करते थे, फिर सुबह 7 बजे सो गए,
3: और रात में पीस माइंड भी होता है, एकदम पीस होती है, तो इसी हाँ, वजह से
1: और सब हेल्दी भी रहते थे। यार देखिए हर बच्चा बीमार
2: और
1: है।
2: हाँ, और मैं जो मेन बात करने जा रहा था कि बच्चों का जो स्लीप साइकिल स्लीप टाइम वो जो 2000 के आसपास था सन, वो 15 से 14 घंटे था, कि 15 से 14 घंटे छोटे बच्चे जो नवजात होते हैं इन्फेंट्स वो सोते हैं। आज वो घट के फोन की वजह से पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो घट के सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे बचा है। अब
1: मुझे सबसे तो इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और वो खाना नहीं खाते हैं तो जो उनकी मम्मी हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को दिखाती हैं वीडियो।
4: दीदी मैंने एक ऐसा मिथ सुना है, पता नहीं सच है भी कि नहीं, कि जो आजकल लोग फोन चला रहे हैं उनकी वजह से उन लोग की एज भी घट रही है धीरे धीरे।
1: बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है ये,
4: पता नहीं मतलब ऐसे मिथ
1: भाई। देखिए हमारा हर जो पूरी हमारी होल लाइफ है उसका साइकिल एकदम चेंज कर रहे हैं ना, हमारे खाने का
4: पहले
1: समय,
4: मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ था,
1: सोने का समय है हमारा एकदम निर्धारित समय हुआ करते थे।
4: पहले जब मोबाइल नहीं इन्वेंट हुआ था तो उससे पहले जो लोगों की एज थी वो 90-100 ऐसे करके होती थी। लेकिन
3: और सुनिए मैं आपको एक सार्कास्टिक थिंग बताना चाहता हूँ, हमारे जो स्कूल्स होते हैं इंडिया के वो इतना होमवर्क दे देते हैं हम लोगों को कि हम लोग रात भर करते रहें, और फिर सुबह का टाइमिंग जो होता है वो सुबह 6-7 बजे, मेरे खुद का स्कूल का ये टाइमिंग 7 बजे का।
2: मैं तो एक बार कह रहा था कि
1: टीचर्स को भी समझाना पड़ेगा,
4: मोबाइल पे भी होमवर्क आने लगा है।
2: जितने भी डेवलप्ड नेशन है जैसे चाइना वगैरह है, चाइना साउथ कोरिया, यहाँ सब स्कूल 9-10 बजे के होते हैं, और हमारे यहाँ स्कूल सिर्फ 6-7 बजे का, और उन लोग को पता है टीनेज का जो होता है
1: चेंज भी होता रहता है, गर्मी आई तो 7 बजे का हो गया, सर्दी आई।
4: फिनलैंड के स्कूलों को देख लीजिए, दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, सुबह 9 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, सुबह 9 बजे स्कूल शुरू होता है और 1 बजे खत्म भी हो जाता
5: है। तो सवाल यह उठता है कि इससे कैसे बचें।
1: अच्छा,
5: सबसे पहली बात, मोबाइल के इस्तेमाल का समय तय करें, पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट या दूर रखें, सोने के समय उससे 1 घंटे पहले मोबाइल का यूज बंद कर दें, खाली समय में खेल कूद, किताबें पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें, और सबसे
1: अच्छी बात है
5: और सबसे जरूरी बात, असली जिंदगी को मोबाइल से ज्यादा महत्व दें।
1: आज दुख का विषय तो यही है ना कि हम सब परिवार से दूर जा रहे हैं, मोबाइल अपने अपने कमरों में सब हैं, मोबाइल लेकर के पड़े हुए हैं, और परिवार का कोई मतलब ही नहीं रहा जा रहा, सबके साथ बैठना
3: लोग उसमें खो जाते
4: हैं, लोग खाना खाते समय मोबाइल चलाते हैं।
1: बिल्कुल और खाने में भी जो रस होता है उसका भी
2: वो भी इफेक्ट करता है, उसको भी मोबाइल इफेक्ट करता है।
1: बिल्कुल, तो चलिए कंप्लीट करिए आप सत्यम जी अपनी बात जल्दी से, हमारे पास समय की बहुत कमी रहती है।
5: अंतिम संदेश यह देना चाहूंगा, मोबाइल का सही उपयोग हमें आगे बढ़ाता है लेकिन उसकी लत हमें पीछे
1: खींचती है। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय था मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी और जितने हमारे लिसनर्स बैठे उनके लिए भी। तो चलिए चलते हैं हम अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से हमारे दार्शनिक, हम उनको कह सकते हैं विचारक कह सकते हैं।
4: दीदी एक टाइटल सही है लेकिन इतने ज्यादा टाइटल मत दीजिए कि कंफ्यूज हो जाओ।
1: तो चलिए अथर्व की ओर चलते हैं और अथर्व आज कुछ अच्छा बताने वाला है।
4: देखिए दीदी आज हम लोग एक ऐसे महान थिंकर कह सकते हैं, विचारक जैसे ही, लेकिन ये बड़े विचारक हैं। आप मुझे छोटा विचारक कहते हैं, ये एक बड़े विचारक हैं और ये साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने दुनिया की सोच ही बदल दी, मतलब कि ह्यूमैनिटी की सोच बदल दी। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों को ये समझाया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो वैसा नहीं है जैसा पहले सदियों माना जाता था। तो देखिए क्या था, ऐसा कहा जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो, मतलब जैसे पहले माना जाता था कि अर्थ है वो एकदम सेंटर है और उसके चारों ओर सन मून ऐसे ऐसे प्लैनेट्स घूमा करते हैं। लेकिन ये जो मिथ था ये इतना पावरफुल था, मैं आपको बता दूं पहले क्या था, पहले ये बिलीफ इतना पावरफुल था कि कोई इसे चैलेंज ही नहीं कर सकता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सन मतलब पृथ्वी हमारा एक सेंटर नहीं है, कोई इसे चैलेंज ही नहीं कर सकता था। लेकिन फिर आते हैं कॉपरनिकस जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ निकोलास कॉपरनिकस के बारे में। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस मिथ के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन और लॉजिक पर एक थ्योरी की खोज की जिसे कहते हैं हम लोग हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की खोज तो ऋग्वेद में पहले ही हो चुकी है, लेकिन मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न है। क्या था कि हमारे ऋग्वेद में जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी तो बहुत पुरानी है, बहुत से लोगों को ये आज पता चला है या फिर बहुत पहले ही पता चल चुका, लेकिन ऋग्वेद में जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी वो सिर्फ हम लोग को पता थी और लोगों को तो पता थी नहीं। इसीलिए निकोलास कॉपरनिकस ने इसको ऐसा ग्लोबली बताया, मतलब पूरे दुनिया में ये बताया कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी है। हमारे ऋग्वेद में इसकी खोज पहले हो चुकी थी लेकिन ये ग्लोबली इसको पब्लिश नहीं किया गया था कि हमारे ऋग्वेद में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की खोज हो चुकी है।
6: देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो वेस्टर्न लोग लेके आए हमारे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में लेके आए, क्योंकि उनका एक समय पर एक्सटेंड पूरे वर्ल्ड में था, तो ये जो लोग एक सिस्टम लेके आए थे अब जो चीज तुम्हारी है उसको पेटेंट कराओ तभी मानेंगे। अब ये था कि ऋग्वेद में पहले से लिखा हुआ है तो वो एक आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जब तक हम उसके नाम पे, अब मैं चाहूँ तो कोई भी आज ऐसा इन्वेंशन जो कि पेटेंट नहीं हुआ है उसको फिर से रिक्रिएट कर दूं और मतलब जो कि हम लोग अपने नाम से पेटेंट करा लूं बस।
4: हम लोगों ने बस क्या किया, हम लोगों ने उसको ग्लोबली बताया नहीं कि ये ऋग्वेद में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की खोज हो चुकी है, लेकिन फिर बाद में निकोलास कॉपरनिकस आते हैं और उन्होंने ग्लोबली बताया था।
6: मतलब आप ये भी देखिए कि इंडिया में जो एक पेटेंट टर्म होता है वो लगभग पहली बार में 20 साल का होता है, ठीक है। अब ये निकोलास कॉपरनिकस कब से चल रहे हैं, कब उनका जन्म हुआ था, 1473 में उनका जन्म हुआ था। अब 1473 में उनका जन्म हुआ था और आज देख लीजिए लगभग 500-600 साल हो चुके।
4: और मैं आपको एक प्रूफ बताता हूँ, ऋग्वेद में एक श्लोक है, सविता यंत्र है पृथ्वी मरमणा दस कम भने सविता दया मद्रतम अश्वमेवा दुक्षद अंतरिक्ष मतुर देवधम सविता दया सविता समुद्रम। मतलब ये जो श्लोक है इसका मतलब है कि सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आकर्षण के माध्यम से इस प्रकार बांध दिया है कि जिस प्रकार एक प्रशिक्षक नए प्रशिक्षित घोड़ों को अपनी लगाम लगाकर अपने चारों ओर घुमाता है। तो ये श्लोक से आपको पता ही चल रहा है ना कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की खोज ऋग्वेद में हो चुकी है। तो चलिए
1: कहा भी सूर्य जो है सात घोड़ों के रथ पे,
6: बिल्कुल
1: सवार,
4: जैसे कि आपने तो देखा होगा उसमें फोटोज में होता है कि सात घोड़ों की पिक्चर लगी होती
1: है। कल्पना कहिए या सत्य कहिए।
6: अब एक बहुत महान कवि थे, अब उनकी बात मुझे याद आ रही है, अब वो कौन थे मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने ये चीज कही थी कि जो वेस्टर्न लोग ये वाला सिस्टम लेके आए ना ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा इन्वेंशन हमारे भारत में।
1: खाली ऐसा कि हमारे जो देश के लोग थे देश के बाहर इन चीजों को लेकर नहीं गए,
4: हम लोग बस ये भूल जाते थे कि
1: और इसको इसी को आधार मान करके जो बाहरी जो भी हाँ इन्वेंशन उन्होंने हमारे भारत
6: के रेडियो वेव्स था उसकी खोज किसे आज कहा जाता है, रेडियो वेव्स जो होते हैं उनकी खोज, उनके इन्वेंटर कौन थे आप बताइए। उन्हें वैसे तो एक इंडियन ने ही खोज किया था, जगदीश चंद्र बसु ने, लेकिन कहा किसे जाता है, एक इंग्लिश बिजनेसमैन को।
1: तो वही कहा कि वो ग्लोबल अगर स्तर पे देखा जाए तो इन्होंने ही बातों को बढ़ाया और
4: हम लोग
1: तो
4: बस ये भूल जाते हैं कि इसे ग्लोबली पब्लिश भी करना है,
1: करना है,
4: लेकिन फिर बाद में वेस्टर्न साइंटिस्ट आते हैं और फिर वो
1: हमारी चीजों को जो है सोचिए
6: वो है। एक बिजनेसमैन था, उसने अपने नाम पे बस पेटेंट करा दिया, वो इन्वेंशन जानता भी नहीं था ये कहाँ, वो बिजनेसमैन था, उसका दूर दूर से इन सब चीजों से कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन तब भी वो एक आज साइंटिस्ट बना बैठा है।
1: जी बिल्कुल। तो वही समय हो रहा है, हमारे यश जी हैं कुछ बताना चाहते हैं, और यश जी आप थोड़े से शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिए क्योंकि हमारे पास समय का बहुत ही अभाव है।
6: चलिए बात करते हैं द फेयरलेस क्वीन ऑफ एवरेस्ट के बारे में। आप जानती हैं वो कौन है? बछेंद्री पाल। आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, सब
1: बिल्कुल
6: सुना
1: बिल्कुल
6: है। नमस्कार दोस्तों,
1: और हमें गर्व भी है महिलाओं के।
6: ये हमारी महिलाएं जो ने किया था ये कार्य, ये बहुत बड़ी बात है। उनको ये इंस्पिरेशन जो थी उन्होंने हम लोग को दी, वो बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल इंस्पिरेशनल सेगमेंट, और आज हम बात करने जा रहे हैं
1: आज हमें एक बात और आपको बता दें कि बड़ा भी पढ़ रहे थे हम, तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई, पर्वतारोही थे और उतरते समय उनकी जो है,
6: और सिर्फ देखिए ये
1: 2 की उतरते समय मृत्यु हुई और 3 की चढ़ते समय मृत्यु हो गई,
6: क्या कर सकते हैं। और ये एक पैसन होता है, लेकिन फिर उसके पैसन का जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो हम नहीं जान पाते हैं क्या होता है, ये अभी हम लोग को सामने देखने को मिला। 5 पर्वतारोही एक ऐसी लड़की जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकली और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भारत की फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल की।
1: तो भाई देखिए, बछेंद्री पाल आज हम उनको बड़ी श्रद्धा से याद करते
6: और
1: हैं
6: इस, हम लोग उनको आज इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वो वहाँ पे चढ़ी थी 23 मई 1984, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और उसके
1: वहाँ
6: शिखर पर चढ़ी
1: थी हमारी लहराया था
6: बछेंद्री पाल।
1: तो बच्चों एक बार ताली बजा दो हमारी जो पर्वतारोही बछेंद्री पाल के लिए।
6: आज तक एवरेस्ट पर बहुत क्लाइंबर्स गए हैं, बहुत माउंटेनियर्स गए हैं, लेकिन बछेंद्री पाल जैसा कोई नहीं हुआ। वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी, वुमन थी, ये सबसे बड़ी बात है।
1: तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम अगले संडे को इसी दिन इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए
4: आपका अपना फेवरेट शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404095 84। अब सपने होंगे साकार।

Come on, man. Exit, man.

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भाई आज तो रविवार है और कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब वक्त हो चुका है कि आपका टैलेंट केवल आप में जाने बल्कि और लोग भी जाने। हमारे साथ बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, एक एक करके उन सबसे आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए भाई सबसे पहली बार सबसे शुरुआत करते हैं भाई 10 मई को। मई का जो दूसरा सप्ताह होता है, दूसरा जो रविवार होता है, उस रविवार को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था मदर्स डे के रूप में और इत्तेफाक ये था कि उस बार रीता जी नहीं आ पाई थी
1: जी।
0: सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रीता जी आपका, वेलकम है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: कैसा लग रहा है
1: सर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ जब भी आते हैं अच्छा ही लगता है।
0: और मतलब रजाई वगैरह निकाल ली कि नहीं? कंबल से तो काम चल नहीं रहा होगा इस समय, ठंडक बहुत ज्यादा है।
1: दो दो तीन तीन रजाई ओढ़नी पड़ रही है।
0: हाँ मतलब इसमें दो दो तीन तीन रजाइयाँ ओढ़नी पड़ रही हैं। और रजाई मतलब कंबल तुमने रख दिया, मैंने कहा कंबल अब काम नहीं करेगा, अब रजाई ही काम करेगी
1: जी।
0: तो फिलहाल आप कितनी रजाइयाँ ओढ़ रही हैं इस जाड़े के मौसम में?
1: सर एक्चुअल में मैं रजाई नहीं ओढ़ रही, ना ही कंबल ओढ़ रही, ना ही चादर, क्योंकि इन सबका कोई काम नहीं है इतनी गर्मी में।
0: लेकिन हमको तो बहुत ठंडक लगती है, तो कल इतनी ठंडक थी कि हम बोले और हमारी जो है सांस के साथ जो है वो बर्फ के ओले गिर गए
1: जी।
0: हाँ इतनी जबरदस्त ठंडक है। तो मतलब इस ठंडक में आप क्या फील कर रही हैं, मतलब क्या गर्म चीज क्या खा रही हैं?
1: गर्म चीज पानी पी रहे हैं इस समय।
0: अच्छा पानी खोला कर, गर्म पानी,
1: बहुत गर्म पानी
0: एकदम। हाँ मतलब गर्म पानी पीते रहिए, ठंडा पानी एकदम मत पीजिए। तो फिलहाल क्या लेकर आई हैं आज आप मेरे साथ?
1: सर आज मैं सुबह उठी तो मेरी मम्मा का 11 जून को उनकी पुण्यतिथि है।
0: अच्छा अच्छा,
1: आने वाले 11 जून को
0: जी।
1: तो उनकी यादें अब धीरे धीरे सारी चीज़ें नज़दीक आ रही हैं, तो वो खैर वो तो हर पल हमारे साथ रहती हैं, हम लोगों को कभी ये नहीं लगता कि वो है नहीं। दुनिया कहती है कि अब वो नहीं है, लेकिन हमारा दिल मानने को तैयार नहीं है कि वो अब नहीं है। तो आज सुबह मैं उठी तो बस ऐसे ही बैठी थी तो कुछ मम्मी के लिए मैंने लिखा,
0: क्या
1: सपनों में मिल जाया करो माँ।
0: क्या बात है, बस तुम्हें हाँ, यादें इंसान के साथ हमेशा रहती
1: जी,
0: हैं
1: जी बिल्कुल। तो बस कुछ लाइंस है जो मैंने आज माँ के ऊपर लिखी हैं
0: जी।
1: मिल जाया करो कभी सपनों में माँ, हकीकत में तो अब देख पाना मेरे नसीब में कहाँ। आसान होता है यह कहना जो चला गया वो चला गया, पर सच तो यह है दिल है कि कभी मानता ही नहीं। यकीन मानो जिसका जाता है ना उसे ढंग से सांस भी नहीं आती। हर खुशी अधूरी लगती है, हर हंसी में बस एक खामोशी सी छुपी रहती है। माँ को छीन कर किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में अपने सारे शौक पूरे करते। मैंने अब दर्द से रिश्ता बना लिया, अब बस यादों का सहारा ही है और सपनों में ही मिलने की आस। ये दिल हर पल हर दिन हर क्षण करता है आपको याद माँ। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सदियों से लंबी हैं रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है।
0: क्या बात है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। और फिर होता ही है कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं,
1: दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं,
0: लेकिन कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी यादें छोड़ जाते हैं। और वो यादें
1: सबसे बड़ी निशानियां तो हम ही लोग हैं।
0: सही बात है हाँ।
1: क्योंकि कोई भी आता है तो वो ये जरूर कहता है कि ये अपनी माँ पर गई है या ये चीजें इसकी माँ की तरह है। तो वो चीजें हर पल वो हर क्षण कहीं ना कहीं उनकी यादों के रूप में वो सामने आ ही जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और भाई वास्तव में हम 10 मई को आपको नहीं सुन पाए मदर्स डे के दिन, और आज आपने उस कमी को पूरा कर दिया, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: और अब चलते हैं भाई अपनी जो है वो पूर्व दिशा की ओर जी। प्राची जी आपका स्वागत है
2: जी। सर थैंक यू सो मच।
0: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक।

0: वाह कैसे
1: बढ़िया, मतलब ठंडक लग रही होगी बहुत ज्यादा। आप मतलब ये ब्लेजर के ऊपर आपने स्वेटर पहन रखा है, उसके बाद मफलर बांध रखा है, मतलब बहुत टेस्ट ठंडक लग रही
0: है। बहुत ठंडी है सर, बहुत ज्यादा ठंडी है, रहा नहीं जा रहा
1: मतलब एकदम से पानी से छूने का मन नहीं कर रहा होगा।
0: एकदम पानी चाय के समान हो गया है।
1: पानी चाय के समान हो गया जी हाँ, पानी चाय के समान हो गया। 2024 का रिकॉर्ड 2026 ने तोड़ दिया।
0: जी जी सही बात।
1: तो मतलब क्या लगता है, रिकॉर्ड अभी और टूटेगा कि नहीं टूटेगा?
0: हाँ, अभी तो जून में बहुत बुरा हाल होने वाला है,
1: बहुत बुरा हाल होने वाला है। मतलब ठंडक अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है,
0: माइनस में जाने वाला है।
1: हम लोगों को कम से कम दो दो तीन तीन रजाइयां और जो है वो खरीद लेनी चाहिए,
0: खरीद लेनी,
1: क्योंकि हमको लगता है कि जब ठंडक बढ़ेगी तो रजाइयों की डिमांड और बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मतलब आपने कुछ खरीदा, मतलब गर्म कपड़ों
0: नहीं,
1: में?
0: अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाला है तो मिलेगा ही।
1: अच्छा मतलब कंबल बचेगा,
0: कंबल बचेगा।
1: अच्छा ये बात है, कंबल बचेगा और कंबल बचने का इंतजार है। तो आज आपके पास क्या है हमारे लिए बहुत खास?
0: सर एक बहुत ही प्यारा गाना है, खामोशियाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: जी सर,
1: क्या बात है, खामोशियाँ।
0: इस
1: गाने, हाँ इस गाने को जो है वो कभी प्रशांत जी ने भी इसी महफिल में बैठकर गाया था।
0: अच्छा
1: हाँ, चलिए तो आज से खामोशियाँ।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, अद्भुत अतुल और अविश्वसनीय, सीधा सटीक और संपूर्ण एकदम बाउंड्री लाइन के पार।
0: थैंक यू सर।
1: क्या गात, मतलब जिस प्रकार से आपने इस पिच को उठाया है, खामोशियाँ, अभी हम जाते तो खाली खामोशी या पर तो हम अटक ही जाते हैं। मतलब आसान नहीं होता, आपने बहुत ही कठिन गीत को बहुत ही आसान तरीके से गाया।
0: मुझे मालूम ही नहीं था कि मतलब मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनने को मिलेगा मुझे।
1: अच्छा, ये बात, मतलब खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं।
0: अचानक से सरप्राइज भी हो गया और लक हो गई मेरे लिए।
1: क्या बात है। जब खामोशियों के बारे में आपका क्या मानना है, आप बताइए पहले, आपने गीत गाया है।
0: यस, खामोशियाँ मतलब कभी कभी जैसे हम बहुत ही वो हो जाते हैं कि हमें मन करता है कि कोई हमारे आसपास ना हो, बस हम खामोश हो जाएं।
1: हाँ।
0: है ना। और एक खामोश होना मतलब एक अच्छे वे में भी होता है।
1: हाँ।
0: और एक वैसे में भी होता है, सैडनेस में भी होता है।
1: हाँ।
0: कभी कभी मम्मी डांट देती तब भी हम खामोश हो जाते हैं। कभी कभी अंदर का दुख होता है तब भी हम खामोश हो जाते हैं। तो मेरा, अगर मैं खामोश होती हूँ या मैं खामोशियों में होती हूँ, तो मैं तो गाने सुनती हूँ, क्योंकि मेरा तो भाई फेवरेट है सिंगिंग। तो मैं फिर, मैं अच्छा हो जाता है मेरा पूरा दिन।
1: मतलब खामोशियाँ अच्छा है या बुरी है, मतलब क्या कहेंगे इसे आप?
0: कभी कभी अच्छी भी है।
1: हाँ, अच्छी,
0: क्योंकि
1: भी
0: खामोशियों में रहने के बाद हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना है।
1: अपने अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ती है वास्तव में। कभी कभी अकेलापन जो है बड़े ख़राब चीज़ नहीं है,
0: ज़रूरी
1: मतलब
0: है।
1: हाँ, मतलब हमको लगता है कि हम अपने आप को ज़रा देख सकें कि हम कहाँ हैं।
0: हाँ।
1: और हम तो मानते हैं कि, लेकिन एक चीज़ है कि मेरा अपना मानना है कि खामोशी बड़ी अजीब चीज़ है, अगर रिश्तों के बीच आ जाए तो घुटन बन जाती है।
0: जी बिल्कुल,
1: होता है कभी कभी घर में रह रहे हो, कोई बोले ना आपसे, नाराज हो जाए।
0: सही बात है।
1: और कभी कभी खामोशी एक अजीब सा रिश्ता लेकर चली आती है कि सामने वाले से आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी एक कुछ नाता उससे लगता हुआ जुड़ा है। तो मतलब है बड़ी अजीब चीज खामोशियाँ। क्या बात है, आपको क्या लगता है जीता जी, क्या है खामोशियाँ?
2: सर, खामोशियाँ मैं अगर कहूँ, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में जाना है, खामोशियाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि दिन भर की भीड़ में हम तो सबके साथ होते हैं।
1: हाँ।
2: बहुत बोलते हैं।
1: हाँ।
2: इंसान थक जाता है जवाब देते देते, कान थक जाता है सुनते सुनते, फिर शाम की एक तन्हाई चाहिए होती है जिसमें इंसान खामोश होता है या अपने आप से बात करता है। तो उसमें ये होता है कि इंसान फिर वो, मेरा तो हमेशा से ये है।
1: अच्छा।
2: कि 24 आवर में, आप दिन में सुबह जब मैं रेडी हुई, उसके बाद में शाम तक किसी से भी मिलवा दो।
1: अच्छा।
2: बकवास भी कर लूँगी, अच्छे से बात भी कर लूँगी, लड़ाई भी कर लूँगी।
1: हाँ।
2: उसको हंसा भी दूँगी, वो हो सकता है सामने वाले को कभी मैं रुला भी दूँ।
1: हाँ।
2: लेकिन लास्ट में, लास्ट मोमेंट में, जब सोने का टाइम हो या थोड़ा सा सोने के टाइम से पहले भी, जैसे एक होता ना डिनर टाइम।
1: जी।
2: मेरे घर में सब लोग डिनर बहुत पहले कहेंगे, डिनर कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो। मेरा क्या है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे।
1: हाँ।
2: जो चीज़ लोगों को लगता है कि बहुत ही बुरी चीज़ होती है, वो मेरी आदत है। मीन्स ये कि मैं छत पर टहल रही हूँ।
1: हाँ।
2: मुझे कोई ना रोके, कोई ना टोके। हाँ। और उस चीज़ को अगर आप अच्छे लेवल में सोच रहे हैं तो लगेगा कि हाँ, वो अच्छी चीज़ें हैं। भाई, मैं घर के सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे से चांद की रोशनी आ रही है, यानी कि चांदनी की चांदनी में, या अंधेरी रात हो, एक दो बल्ब जल रहे हो, फिर भी मेरा काम चल जाएगा।
1: काम चल जाएगा,
2: काम चल जाएगा। और मैं उसको तकती रहूँगी, कुछ सोचती रहूँगी, अपने बारे में सोचने का वही टाइम होता है।
1: मतलब आपके हिसाब से खामोशियाँ वो हैं जो आपको ये एहसास कराती हैं कि आप क्या हैं,
2: आप क्या हैं,
1: क्या
2: आपके अंदर का हुनर क्या है, कुछ है भी या यूं ही दिन भर आपने क्या किया, सारी दिनचर्या जो है उसी टाइम में तो आप उसको नाप तोल करते हैं।
1: क्या बात है, वास्तव में भाई नाप तोल करते हैं। और हमको लगता है कि आपसे बातचीत हो चुकी है और आपका कंटेंट जानते हैं, लेकिन इसके पहले ले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल सा ब्रेक। क्या है? जी हाँ, तो लेते हैं एक संगीतमय अंतराल और मिलते हैं आपसे संगीतमय अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM। ये जी हाँ, सुपर डुपर संडे वाला। तो आपसे मिलते हैं एक संगीतमय साल के उस पार, और आप कहीं मत जाइएगा, हम शीघ्र ही लौट रहे हैं।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल। और हमारे साथ हैं भाई, अब चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की ओर। अभी तक हमने उनका ओपिनियन जाना और अब चलते हैं अजीता जी की तरफ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है
1: सर। थैंक यू सो मच स्वागत करने के लिए।
0: नहीं बिल्कुल, स्वागत करने के लिए क्या, हम जो है फूल बिछाए बैठे हुए हैं।
1: क्या बात है,
0: कलियां ना बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं।
1: तो
0: मतलब
1: so
0: पहले कली बिछाई, फिर फूल बिछाया, अब दिल बिछाया है।
1: क्या बात है सर, ऐसा तो कोई स्वागत करता ही नहीं मेरा।
0: हम ऐसा ही स्वागत करते हैं।
1: स्वागत अच्छा लगा कि कोई ऐसे भी तो करता है।
0: हाँ, लेकिन मतलब ये है कि हमारे जो है स्वागत का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यूं अचानक निकल के मत जाओ, इस तरह से बदल के मत जाओ। मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। तो चल के चले जाइएगा तो अच्छा है, लेकिन कुचल के मत जाइएगा।
1: सर एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है
0: जी,
1: जो चल के जाएंगे तो क्या वो कुचलेगा नहीं? अगर कुचल के जाएंगे तो क्या उस पे हम चलेंगे नहीं?
0: आपने कभी जो है वो बारिश में वो देखा, सड़क पर गई हो, किसी कच्ची सड़क हो
1: जी,
0: तो लोग जो है वो ईंटा रख देते हैं, ईंट रख देते हैं ना, तो इंसान आराम से एक पैर यहाँ, एक पैर वहाँ, एक पैर वहाँ, तो मतलब खाली पैर जो होता है वो ईंट पर ही पड़ता है, बाकी जगह पर नहीं पड़ता है।
1: जी।
0: उसी प्रकार से हमने दिल बिछाया है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जहाँ जहाँ दिल देखेगा वहाँ वहाँ आराम से पार कर लीजिएगा, ईंटे पर आपका कदम पड़े। हाँ मतलब हमारा हृदय ज़रा बचा के रखिएगा।
1: तो आप पूरा जोर देंगे।
0: हाँ तो मतलब यही कहा है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ।
1: वही मैं सोचती हूँ कि सर अक्सर कहते हैं चल के जाओ कुचल के ना जाओ, तो मींस क्या है?
0: हाँ चल के जाओ मतलब आराम से आप चलिए।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: अच्छा,
0: कुचलिए मत।
1: अच्छा,
0: तो आज क्या है आपके पास हमारे लिए?
1: आज जो है हर बार की तरह एक शेर ही है।
0: अच्छा, ये पिछली बार आपने शेरनी भी सुनाई थी हमको यार।
1: शेरनी मैं खुद हूँ।
0: अच्छा शेरनी आप खुद है, तो फिर शेर आपको लिखने की क्या आवश्यकता है? शेर भी कहीं आसी पास होगा।
1: हाँ इसीलिए तो लिखती हूँ।
0: अच्छा ये बात है। मतलब एक शेरनी ने एक शेर के लिए
1: हूँ तो शेर की तो तलाश होगी।
0: अच्छा मतलब हमको लगा कि आपको आपका शेर अभी मिला कि नहीं मिला। आपको आपका
1: मिल गया,
0: मिल
1: तभी लिखती हूँ।
0: अच्छा तभी लिखते हैं, तो भाई शेरनी को शेर मिल चुका है और उस शेर पर इन्होंने शेर लिखा है।
1: जी जी
0: जी।
1: जो मैंने लिखा है उसके पीछे का थोड़ा सा मैं रीजन बताऊंगी
0: जी,
1: कि आज का जो युग है उसमें हमें बहुत सीधे साधे बन के नहीं रहना चाहिए, वरना लोग फायदा बहुत उठाते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी की बातों को काट के, उसकी गलतियों को इग्नोर करके हम बच के निकल ले रहे हैं। इग्नोर करिए उसको, छोड़ दीजिए, पर ये मत सोचिए कि हम अगर उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं तो वो गलतियां नहीं करेगा। क्योंकि जितना हम इग्नोर करते हैं, जितना उस चीज़ को हम पोलाइटली लेते हैं, उतना ही लोग हम पे क्या करते हैं,
0: तंज कसते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसी पे मैंने आज एक शेर एक ही लिखा है।
0: हाँ।
1: बस लेकिन जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ। लोग कैसे कैसे लोग फायदा उठाते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, कि हम जितना ही उनकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: क्या बात है।
1: हम जितना ही उनकी गुस्ताखियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मीन्स आप गुस्ताखी अगर कोई कर रहा है, कोई मिस्टेक आपके साथ कर रहा है, एक बार मिस्टेक होती है, दो बार मिस्टेक होती है, हमेशा नहीं होती है।
0: हाँ।
1: फिर तो उसका कोई प्लान है,
0: प्लान
1: आपको अलर्ट रहना चाहिए। उतना ही वो हम पे वार कर देते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: कि हम जितना ही उनकी गुस्ताखियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उतना ही वो हम पे वार कर देते हैं। मसला ये नहीं कि हम कुछ समझते नहीं।
0: क्या बात है।
1: मसला ये नहीं कि हम कुछ समझते नहीं, बस मुस्कुरा के हर बात को आसान कर देते हैं।
0: आसान कर देते हैं, क्या बात।
1: क्योंकि हमने मुस्कुरा के छोड़ दिया तो सामने वाले को ये लगता है कि भाई इसको तो कुछ समझ में नहीं आया।
0: हाँ, फर्क ही नहीं पड़ा।
1: फर्क ही नहीं पड़ा।
0: हाँ।
1: अब इसके आगे क्या प्लान करो।
0: हाँ, सही बात है।
1: और कितना खंजर कुछ क्या करने घोपना है।
0: सही बात है। नहीं खंजर से याद आ गया कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मरेगा।
1: जी।
0: मतलब लोग पीठ पर वार करते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी आंखों के ऐसे आंखें मिल जाएंगी तो उनका खंजर वहीं पर रुक जाएगा,
1: वहीं रुक जाएगा।
0: और मेरा ये मानना है कि इंसान अगर मोहब्बत से दुनिया को चलाए तो अच्छा हो सकती है ज़िंदगी। मतलब सामने वाला आपसे नफरत करता रहे। मैंने एक शेर वसीम बदलवी साहब का पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। आप सामने वाले को मजबूर कर दो कि वो आपसे मोहब्बत करने पर
1: कर बैठे।
0: हाँ
1: जी बिल्कुल,
0: क्या लगता है आपको?
1: जी
0: है कि नहीं? नफरत मतलब मेरा सिद्धांत यह है, बदला नहीं, हम बदला नहीं लेते, आगे वाह जोड़ देते हैं।
1: हाँ, तो बदलाव मैं भी कह रही हूँ कि बदला नहीं लेना चाहिए,
0: बदलाव करने
1: को वहीं पे छोड़ देना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल, क्या बात।
1: फिर वो इंसान हो या कुछ भी हो,
0: कुछ
1: भी, XYZ।
0: हाँ।
1: तो मैं यहाँ थी कि मसला ये नहीं कि हम कुछ समझते नहीं, मसला ये नहीं कि हम कुछ समझते नहीं, बस मुस्कुरा के हर बात को आसान कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें तो तकलीफ होती ही नहीं, उन्हें लगता है कि हमें तकलीफ तो होती ही नहीं, और वो हमसे वक्त बे वक्त मजाक कर लेते हैं।
0: क्या बात है, क्या
1: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर उन्हें रियलाइज करा रहे कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपसे मजाक ही करते रहेंगे, वो कभी आपको सीरियस लेंगे ही नहीं। इसलिए अपना वजूद बना के रखना चाहिए। आप भले ही मोहब्बत बहुत करिए सबसे, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाए रखिए।
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। क्या बात है भाई, तो अपना स्वाभिमान बनाए रखना है। चलते हैं भाई, सृष्टि जी की ओर। तो कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छा।
0: चलिए, ईश्वर करे आप इंटर में फेल हों। अरे मतलब गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमको हाई स्कूल के पास होने का लड्डू खिला दे, नहीं तो इंटर में ये भी हो सकता है। तो मतलब अभी तक आपने खिलाया नहीं, हम जितने लोग यहाँ बैठे
2: खाने को मिला है। हम आए थे दुखरनाथ, वहाँ बट रहा था, खुद खा लिया।
0: अच्छा, वो तो बात ठीक है, आप दुखरनाथ को सोमवार को बैठती हैं, मंगलवार को हनुमान गढ़ी बैठती हैं। अच्छा नहीं मतलब अगर आप बैठती हैं तो मतलब लड्डू खाने भर का तो मुझे
2: जो बैठती है वो बाहर है।
0: अच्छा, वो बाहर है।
2: हाँ।
0: मतलब कांटेक्ट में है। चलिए भाई, भाई स्टाफ का मामला है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं।
2: ये वो बैठती है, ये देखती है कि कोई जान पहचान का ना हो।
0: हाँ, ये बताती है कि थोड़ा सा मुंह और ढक लो, है कि नहीं?
2: ढक के नहीं बैठती, ऐसे चलती है।
0: अच्छा, मतलब पूरे गोंडा में मशहूर है?
2: बहुत मशहूर है, किसी भी गली जाएंगे पूछ लीजिए प्राची किधर गई है, बता देंगे वो उधर गई है।
0: अच्छा, मतलब सोमवार को दुखरनाथ, मंगलवार को मंगली,
2: हर गली पहुंचती रहती है। हाँ। यहाँ से कुछ बाकी नहीं होगा उससे।
0: अच्छा, से बुधवार को कहाँ बैठती है?
2: ये बुधवार को बुध बाजार में बैठती है। वही मैं
1: कहने
0: वाली थी। क्या बात है, तो क्या है आपके पास?
2: मेरे पास कुछ लाइनें हैं,
0: कुछ पंक्तियाँ हैं। क्या बात है, लाइनें क्या होता है?
2: लाइन पटरी।
0: मैंने कहा लाइनें कोई अजीब सा शब्द होता है, लाइन का बहुवचन लाइंस होता है या तो पंक्तियां होता है। तो आपके पास क्या है?
2: पंक्तियां। अच्छा,
0: पंक्तियां। हाँ, यही कह रहे हैं, पढ़ लीजिए आप। तो मिठाई खिला दीजिए। है कि नहीं जीता जी?
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल। देखिए, जीता जी ने जब हाई स्कूल पास हुई थी तो मिठाई खिलाई थी, इंटर में इनका 80% आया था। हाँ, तो जो हमको मिठाई खिलाता है उसका नंबर बढ़िया आ जाता है। दो तीन इसमत मलमास भी चल रहा है, इसमें दुख पे भीड़ भी चल रही है। दो सोमवार को बैठेंगे तो एक हल्दीराम का सोन पपड़ी वाला पैकेट भर का आ जाएगा,
2: उसको मिलता है रोज।
0: हाँ ठीक है, ये अच्छी बात। चलिए, तो आज चलते हैं भाई अपनी सृष्टि जी की ओर। और क्या देखें उनके पास, क्या पंक्तियाँ हैं?
2: किताबें करती हैं बातें जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की गम, फूलों के बम, जीत की हार, हार की बात प्यार, मार क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबें में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खतियाँ लहराती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताब कितने बड़े संसार है, किताबों का ज्ञान भरा बार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, किताब कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है।
0: क्या बात है भाई, किताबों की दुनिया वास्तव में
3: बहुत अच्छा लिखा है।
0: हम लोग को तो ऐसे कॉमिक्स वगैरह कभी पढ़ी होगी अगर आपने,
1: सपने में खो जाते थे सर।
0: हाँ मतलब हमको ऐसे चाचा चौधरी सुपर स्टार ध्रुव ये सब रीता जी, आपने कॉमिक्स वगैरह पढ़ा है कि नहीं?
3: देखा है घर में रखे रहते थे क्योंकि बड़े भाई बहन थे उस टाइम के, तो उनकी जब पुरानी किताबें हम लोग निकालते थे वो लोग अपना निकालते उसमें देखते थे, कॉमिक्स में कई ऐसे पिक्चर्स बने रहते थे उसके नीचे लिखा रहता था
0: चाचा चौधरी साबू और ये क्या नाम सुपर स्टार ध्रुव नागराज भौकाल।
1: मैं सर शक्तिमान का पढ़ती थी।
0: अच्छा
1: मेरा फेवरेट
3: चंपक,
0: चंपक हाँ चंपक पाक्षिक पत्रिका,
3: छोटी लघु कथाएं होती थी बच्चों के लिए,
1: बड़ा अच्छा लगता है वो सब,
0: बहुत अच्छा लगता है। वो किताबों का दौर ही खत्म हो गया
3: सर, असल ये आ गया डिजिटल आ गया, अब तो सारी चीजें आपको डिजिटल ही।
0: अब जानती हैं आप इसका जो एआई का जो यूज हो रहा है, ये एआई जो डेटा स्टोर करता है इसके लिए शुद्ध पानी चाहिए। और अमेरिका की एक जगह है जार्जिया जहाँ पर एआई का सेंटर है, वहाँ पर लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। और भारतवर्ष के गुजरात में पानी की स्थिति बहुत ख़राब है, महिलाएं जो है वो नीचे जा कर के कुएं के नीचे जा कर के लाइन लगा कर पानी ले रही हैं क्योंकि वहाँ का ब्राउन कलर का हो गया है पानी। हाँ तो एआई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट,
3: बहुत ज्यादा पानी खर्च करता है ये अपनी चीजों को।
0: हाँ मतलब उसको नहीं उसके उसका जो डेटा स्टोर करने से चाहे उसके लिए प्योर वाटर चाहिए।
3: अच्छा।
0: और धरती पर प्योर वाटर एक ही परसेंट है। और उस प्योर वाटर को वो एआई यूज कर रहा है, तो जिसको आज हम बहुत अच्छा मान रहे हैं कि चैट जीपीटी और
3: भविष्य के लिए
0: बहुत खतरा चीज है। मतलब अगला हमको लगता है कि अगर विशुद्ध छुड़ा तो पानी के लिए छुड़ेगा क्योंकि एआई का लोग यूज कर रहे हैं और ये बहुत
3: बहुत तेजी से ऑल ओवर वर्ल्ड यूज हो रहा है। हाँ। एआई का बहुत तेजी से।
0: तो कुछ गाएंगी आप रीता जी?
3: गाएं की मतलब कुछ बोल दें,
0: कुछ बोल दीजिए।
3: खामोशियों की बात हो रही थी अभी, मैम बता रही थी कि खामोशियों में बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनको आवाज मिल जाती है।
0: हाँ।
3: तो मैंने यार खामोशियों के ऊपर भी इसे जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं
0: जी
3: कि वो हमसे दूर रहकर भी वो हमेशा पास रहते हैं।
0: हाँ।
3: मतलब वो वाला दूर नहीं।
0: हाँ।
3: इसी दुनिया में रहते हैं वो।
0: हाँ।
3: लेकिन वो इतने दूर रहते हैं कि लगता है कि वो दूर रहकर भी बहुत पास।
1: लॉन्ग डिस्टेंस।
3: हाँ। तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी है
0: जी।
3: कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो याद बनकर हमेशा साथ रहते हैं, दूर होकर भी हमेशा दिल के पास रहते हैं, हर सांस में उनकी बात बसती है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, पर कुछ रिश्ते एहसास कभी नहीं बदलते।
0: क्या बात।
3: हंसी हो या आंसू की बारिश, हंसी हो या आंसुओं की बारिश, वो हर हाल में साथ रहते हैं। खामोशियां को भी आवाज मिल जाती है, खामोशियों को भी आवाज मिल जाती है जब उनकी यादें एहसास बनकर साथ होते हैं। ये दिल आज भी उतना ही उसका है, ये दिल आज भी उतना ही उसका है जितना पहले था, और हमेशा उसका ही रहेगा। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। धन्यवाद।
0: क्या बात है भाई, मतलब इंसान अपने माजी से अपने बीते हुए कल से छुटकारा नहीं पा सकता।
3: बिल्कुल नहीं।
0: हाँ मतलब मुझे पंक्तियाँ याद आ गई कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है, और उसने कल मेरी शर्ट में एक बटन टाका था, उसने मेरी शर्ट में कल एक बटन टाका था, गांव शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है, जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, गांव के मोड़ पर वो कच्ची सड़क
3: आज भी है।
0: तो मतलब वो आज भी है और हमेशा रहेगा। जी हाँ, आप फिर चलते हैं भाई आवाज़ की मल्लिका, क्या बात है, प्राची जी की तरफ, और देखते हैं भाई इनसे कौन सा गीत दोबारा सुनने वाले हैं हम।
1: सर एक गाना है बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है, हम तेरे प्यार में सारा आलम।
0: आय हाय हाय हाय हाय। क्या बात है लता मंगेशकर जी की, बहुत प्यारी आवाज है जी।
1: जी

0: क्या बात है भाई, क्या बात है, कहा जाता है ऑल इज वेल फैंस वेल अंत भला तो
1: सब भला।
0: तो हमको लगता है आपने इस कार्यक्रम का जो अंत किया वो बहुत भला किया।
2: जी
0: हमारे पास संदेश भी है, अनिल वर्मा जी सदापुर से लिखते हैं, भाई शुभ दोपहर या सभी सुनने सुनाने वालों को, आपको भी भाई शुभ दोपहर या। कमल नयन जी हैं भाई, कमल के समान नयन वाले, गुड आफ्टरनून आदरणीय मनुषा सभी आरजे को, गुड आफ्टरनून और आप सभी को। जी हाँ, सभी सभी लोगों को शुभ दोपहर बोला, आप भी बोल दीजिए इनको
1: शुभ दोपहर
0: जी
1: हमारी तरफ से।
0: और जो कंबल रजाई रखी हुई है वो गर्मी में धुलाई नहीं तो ठंडी में जल्दी सूखेगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कमल नयन जी भी अपनी जो है वो रजाई वगैरह धुल ली है और रुई उसकी निकाल करके दोबारा जो है उसको इजी से धोया है।
3: हाँ
0: भाई, बहुत सारे। और मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं भाई, हेलो। जी हाँ, और शेर पर शेर लिख दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपने जो शेर लिखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो अब चलते हैं, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। और चलते चलते जी हाँ चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तुम लोग कुछ साथ जी। तो रीता जी, आपके चेहरे पर कुछ लग रहा है कि प्राची जी के बाद रीता जी हम में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं।
1: नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप कह रहे थे भाई हम लोग
3: बच्चे हैं,
1: आप सबसे श्रेष्ठ हैं यहाँ पे, हम सभी
0: नहीं, नहीं, लोग आप लोग जिसे यो हम तो कम जान पाते हैं।
3: हाँ नहीं सर, आप जान पाते हैं। हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ,
4: आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट
1: हैं सर, आप कम जान पाते हैं,
4: छोटी हैं आप,
1: छोटी आप हैं, हम तो आपके स्टूडेंट हैं।
0: नहीं चलिए,
1: कुछ एक गाना है जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है
0: जी
1: लता जी का, तो वो मैं बस
0: गुनगुनाना चाहूंगी

हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सुअसर,

0: मुझको लगता है डर।
1: है क्या बात है भाई, क्या बात है। और वास्तव में पुराने और नए गीतों में बस एक ही अंतर है, पुराने गीतों को सुनकर आपका मन नाचता है
0: बिल्कुल,
1: और नए गीतों को सुनकर आपका तन नाचता है,
2: खुद ही नाचने लगते हैं,
1: है कि नहीं। हमारे साथ कोई श्रोता जो है वो काल पर आए भाई, हमसे बात करना चाहते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
3: हेलो सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
3: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
1: जी जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: आप कैसे हैं सर? हम तो आपके दुआ से ठीक हैं सर।
1: नहीं तो आपकी दुआ हमारे ऊपर, हमारी दुआ आपके ऊपर, हम दोनों एक दूसरे की दुआ से अच्छे हैं
3: बस। और क्या चाहिए सर?
1: और कुछ नहीं चाहिए।
3: तो शाम को मिलेंगे सर?
1: शाम को मिलेंगे, जब आप कहिए बिल्कुल मिलेंगे।
3: ठीक है, स्टूडियो में आएंगे फिर, और क्या।
1: अच्छा तो स्टूडियो में आ जा पाएंगे, शाम को पधारेंगे।
3: तो क्या खाएंगे आप?
1: क्या खाएंगे?
3: तोहफा लेके आएंगे भाई।
1: तोहफा लेकर के आएंगे, और हमको ये जानना है कि क्या खाएंगे।
3: जी जी,
1: तो हम सोच रहे हैं कि आधा किलो सोना खा ले आज।
3: सोने की जो कीमत नहीं है।
1: अच्छा तो फिर क्या खाएं भाई, अब कोई अच्छी चीज। हम आपकी ये जो है दुआ खा लेंगे।
3: दुआ?
1: हाँ,
3: तो बस यही कहना है आपसे
1: जी,
3: कि बना के रस में मुलाकात को सदा रखना।
1: हाँ,
3: तो बिछड़ भी जाऊं तो ख्वाबों का सिलसिला रखना।
1: क्या बात है,
2: क्या बात है।
1: नहीं आप ना, आप बिछड़ेंगे ना हम बिछड़ेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो हम दोनों का साथ एकदम बना रहेगा।
3: और सर एक बात और कहना है आपसे।
1: जी जी,
3: मोहब्बत यही है, अकीदत यही है, और तुझे देख लेना इबादत यही है।
1: जी,
3: मेरी जुप्तजू में जो गुम मेरी हसरत, खुदा की कसम मेरी हसरत तू ही है।
1: क्या बात है, काश इतना प्यार मेरी पत्नी मुझसे करती तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता। लेकिन चलिए, आज दिल को बहुत सुकून मिला कि कोई तो है जो इतना प्यार करता है।
3: सर जी,
1: जी
3: प्यार के मामले में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे।
1: जी जी बिल्कुल कहें आप।
3: कि फूल खिलना चाहता है पर कलियां खिलने नहीं देती।
1: हाँ,
3: और दिल से दिल मिलना चाहता है, मजबूरियां मिलने नहीं,
1: मिलने नहीं देती। लेकिन आज ये मजबूरी समाप्त हो जाएगी और आप शाम को हमसे मिलेंगे।
3: जी सर
1: बिल्कुल, मजबूरियों को हम दरकिनार करते हुए मुमताज अंसारी जी से शाम को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: शुक्रिया सर।
1: जी हाँ, तो भाई अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मत लेने का वक्त आ चुका है। आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ, इसी मंच पर रविवार को ठीक 1 बजे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक हमको दीजिए अनुमति और सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी आरजे उन्नति, और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। घड़ी में वक्त हो चला है 2:04 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आप सभी ने ट्यून कर लिया आपका फेवरेट एफएम, एंड दैट्स व्हाई चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम सोने का स्पेशल इंडिया टॉप 20, जिसको लेकर आती है आज उन्नति आपके लिए स्पेशली बॉलीवुड के 20 वो गाने जो आते हैं आपको बेहद पसंद। फिलहाल के लिए आज के गाने हैं थोड़े से अलग, और बात करें अगर गहराइयों की, चलो हटाते हैं गहराई, आज गहराई वहराई हटाते हैं, क्योंकि आज हम बजाने वाले हैं पंजाबी गाने। वो कहते हैं कि पंजाबी मस्त हो जाते हैं जब भी शाम का वक्त आता है, लेकिन क्यों ना दोपहर में ही आज पंजाबियों को महसूस किया जाए। अब जब भी बॉलीवुड ने फ्यूजन किया है ना हिंदी को बॉलीवुड में पंजाबी बीट्स के साथ, मेरा दिल तो हमेशा बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले करता है। आई थिंक आपका भी करता होगा। तो आज के गाने होने वाले हैं थोड़े से हटके, थोड़े से हम आपको मिलेंगे झटके, क्योंकि एक के बाद एक प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम आपके लिए पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी बीट्स, और इन्जॉय करते रहिए बॉलीवुड के धमाकेदार 20 गाने। एंड आपका पसंदीदा इनमें से कौन सा है या मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, तो उससे पहले लगाएंगे अपनी अपनी अटेंडेंस कि आप मौजूद हैं आज के शो को एंजॉय करने के लिए। और आई होप आज की प्लेलिस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि पहला ही गाना हम दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में लेकर आए हैं गुड न्यूज़ फिल्म से, है सौदा खरा खरा। भैया सौदा तो खरा है, क्योंकि आज हम गाने बड़े मस्त लेकर आए हैं। तो फिलहाल आप कहाँ हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या गर्मी में शिकंजी बना रहे हैं, वाटरमेलन लेकर आ रहे हैं? फिलहाल जो भी करना है फटाक से आ जाइए और अपने रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज आपका मूड होने वाला है बिंदास। ये मैं लिख के दे रही हूँ, वैसे लिखा कहाँ है मुझे भी नहीं पता, बट हाँ मैं लिख के दे रही हूँ कि आज का मूड आपका हो जाएगा झकास, क्योंकि आज गर्मी भी है कम, थोड़ी सी पहले से कम है यार, अभी आप मानो या ना मानो, लेकिन कल या परसों से तो कम ही है आज की गर्मी। और इसी गर्मी को एंजॉय करते हुए चले चलते हमारे सॉन्ग नंबर 20 की तरफ, और एंजॉय कीजिए गुड न्यूज से सौदा खरा खरा। हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: जी हाँ जी हाँ जी। तो भाई पहले गाने में ही आपने सुन लिया है सौदा खरा खरा और डिस्को वाला डांस हो चुका होगा आई थिंक आपका, क्योंकि पंजाबी बीट्स और सूर्यास्त पंजाबी मस्त, ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहा हूँ सलमान खान के मुंह से, आज तक अपने मुंह से नहीं गाया था, बट जैसे ये गाने बजते हैं ना जो पंजाबी बीट्स में होते हैं हमारा दिल हो जाता है गार्डन गार्डन, और उस गार्डन गार्डन दिल में बहुत सारे फूल भी खिलाते हैं और फूल आपके पास भी होंगे आई थिंक होंगे, क्योंकि गर्मियों में बड़े अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। वो अलग बात है कि अब आपने उनको पानी नहीं दिया है तो मुरझा गए हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 19 की तरफ। सॉन्ग नंबर 19 हम लेकर आए हैं लॉन्ग द लश्कारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, चांद से प्यारा कि जान से प्यारा। फिलहाल हम लिरिक्स गलत गाते हैं, आप बताइए आपने क्या सुना था आज से पहले इस गाने को, और एंजॉय करते रहिए इन द टॉप 20 आपकी अपने एफएम रेडियो गाना 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गाना 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

पटियाला हाउस से आप सुन रहे हैं लॉन्ग द लशकारा। अब बेबी तेरा जान से प्यार, मैं फिर गलत गा रही हूँ ना, चांद होता है कि जान होता है, मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा पे फिल्माया गया गाना है, जबरदस्त सॉन्ग है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर महादेवन, एहसान नूरानी जी, और आर्टिस्ट में मैंने आपका नाम बता ही दिया है। फिलहाल हम आपको बता दें, गीतकार हैं अनविता दत्ता जी, और बहुत ही खूबसूरत गीत को आप इंजॉय करते हैं, कहें तो बहुत खूबसूरत पंजाबी बीट को आप इंजॉय कर रहे थे। और इसी बीट को इंजॉय करते वक्त के जी पधार चुके हैं, लिख रहे हैं 200 की स्पीच वाली मैम जी, तहे दिल से नमस्कार, आप कैसी हैं? नमस्कार आपको भी, और आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं हम इंटर टॉप 20 में। मैं मस्त झकास बिंदास, और एक हफ्ते के बाद मुलाकात करने के बाद, और मुझे लग रहा है कि मैं आज कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने लिसनर्स से काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ, मतलब पूरे एक हफ्ते बाद मिल रही हूँ। एंड मैम जी, गर्मी बहुत है, आपके लिए तरबूज, थैंक यू सो मच। मेरे लिए वाटरमेलन, वाटरमेलन इज़ माई फेवरेट फ्रूट बाय द वे। गर्मियों में सबसे ज़्यादा मैं इसी फल को खाती हूँ, और सबसे ज़्यादा मज़ा भी मुझे इसी फल को खाने में आता है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि आम फलों का राजा है, मुझे लगता है कि तरबूज को अगर राजा बना दिया जाए तो कैसा होगा। फिलहाल आप सोचिए, ये तो मेरे ख्याल हैं, आपको इसमें भिड़ना नहीं है, आपको सिर्फ पंजाबी गाने इन्जॉय करने हैं। एंड डांसिंग सॉन्ग लिखा है, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ, सॉन्ग नंबर 18। सॉन्ग नंबर 18 हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम से। कहने को तो ये गाना दिल टूटे आशिक का है, लिरिक्स तो भैया बताती है कि ब्रेकअप हो चुका है और उस पर लिखी गई है, लेकिन सुखबीर जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि हटाओ यार, ये कौन ब्रेकअप वाले गाने सुनता है, हम डालेंगे पंजाबी बीट्स, लगाएंगे इसमें पंजाबी म्यूजिक, और ये गाना पार्टी म्यूजिक में चलेगा, क्योंकि हमें ब्रेकअप श्रेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है।

0: और पंजाबी ब्रेकअप करने के बाद रोते धोते नहीं है भाई, हम एंजॉय करते हैं एंड हम एंजॉय ही करेंगे। तो भाई ये गाना जो बनाया गया था ब्रेकअप के लिए, यानी कि किसी का दिल टूट चुका है और वो उसकी याद में बैठ के गाना गा रहा है, वहीं पर सुखवेंद चंद्रिका जी, बिल्कुल नहीं, हम इसको शादियों का गाना बजाएंगे, इस पर लोगों को डिस्को डांस कराएंगे। और उन्होंने कराकर भी दम लिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो सुन के देखिए हिंदी मीडियम से। ओ हो जी हाँ, आपका सॉन्ग नंबर 18, आप एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20। हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

0: हाँ जी, तो भाई हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक दिलकश शायरी हो जाए, लेकिन फिर हमको याद आता है कि अरे कैसे हो जाए भैया, हम तो सुखबीर सिंह को सुन रहे हैं। और जो हम शायरी करने की सोच रहे थे वो भी बस यही था कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे मिलकर जब उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर सोच गुजारा कैसे हो सकता है। और यही लाइन मुझे अभी तक याद आ रही थी जब हम सुखबीर सिंह के गाने इन्जॉय कर रहे थे। एंड इसके बाद ओके मैसेज आई है अनिल वर्मा जी की, वो लिख रहे हैं बहुत खूब, थैंक यू सो मच, और आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं हम इंडिया टॉप 20 में। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना उन जनाब का है जिनके गाने को वायरल करने के लिए लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था, ये कहकर कि भाई साहब आपके बैकग्राउंड में लड़कियां होती हैं इसीलिए आपका गाना वायरल होता है। और उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज लेकर के अपना एक ऐसा गाना बनाया जिसमें अलग अलग एंगल, अलग अलग यूनिफॉर्म, अलग अलग ड्रेसेस में खुद को ही रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद वो गाना ग्लोबल लेवल पे वायरल हो गया है। अब जनाब कौन से हैं जो चैट बॉक्स में बताइए, और उनका एक गाना एंजॉय कीजिए, कुड़िया शहर दिया। जी हाँ, आप ये गाना सुने जा रहे हैं सॉन्ग नंबर 17 टॉप 20 की प्लेलिस्ट में। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली।
1: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: हां जी, मुंडिया तो बच के रही। और ये गाना अगेन आपने सुना पंजाबी बीट्स, और पंजाबी बीट सुनकर हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनके कुछ अल्फाज, कुछ मैसेजेस, कुछ पैगामात भी आ चुके हैं। और अनिल वर्मा जी लिख रहे हैं, दलेर मेहंदी साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये वही सिंगर हैं जिनके ऊपर नाम था कि भैया आपके गाने इसलिए वायरल हैं क्योंकि आपके बैकग्राउंड में लड़कियां होती हैं और लड़कियों की वजह से आपका गाना वायरल है। और उन्होंने इस चीज़ को गलत प्रूफ करते हुए बता दिया कि लड़कियां नहीं, मेरी आवाज़ बुलंद है साहब और इसीलिए मेरे गाने पॉपुलर हैं। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज़ विकास से लिख रहे हैं, रुधिर जी नमस्ते, टॉप 20 में स्वागत है आपका, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस टॉप 20 में, आप बताइए आप कैसे हैं। अनिल जी लिख रहे हैं, आरजे उन्नति जी, जब ये गीत आया था उस समय कोई भी शादी पार्टी में ऐसा ना होगा जिसमें ये गाना बजाना हो। जी हाँ, बेशक आपने सही कहा भाई, कुछ गाने ऐसे आते हैं पंजाबी में जो हर एक शादी की जान बन जाते हैं और आज भी वो गाने चलते हैं। इवन आपने गाना सुना होगा मेरे यार की शादी है, और न जाने ऐसे कितने ही गाने हैं जो हर एक वक्त, हर एक शादी में, हर एक बारात में प्ले होते हैं और ये शादी का एंथम हो जाता है। और उनमें से ये गाना भी था, कुड़िया शहर दिया, ये शादी एंथम मुझे लगता है ऑलमोस्ट। एंड उन्नति जी क्या बात है, सारे पंजाबी गाने बजाकर दिल खुश किता, थैंक यू सो मच। और अभी आपका दिल बचाकर रखिए क्योंकि आगे जाकर और खुश होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक आज आपको सिर्फ पंजाबी बीट सुनने को मिलेंगे, फिर चाहे वो बात हो हाई बीट्स की या फिर बात हो रोमांटिक सॉन्ग्स। भाई साहब, रोमांटिक गाने भी बड़े अच्छे होते हैं पंजाबी में, आपने सुने होंगे, अगर सुने हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। और आइए लेके चलते हैं वहां आपको अगले गाने की तरफ। अगला गाना है मस्त पंजाबी, नाम में ही पंजाबी मस्त हो रहे हैं तो सोचे गाना किस लेवल पे जाएगा। फिलहाल सुनते रहिए टॉप 20, हम मिलते हैं अगले गाने की तरफ अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: साजिद वाजिद का म्यूजिक और एंजॉय कर रहे हैं आप मस्त पंजाबी। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगले गाने की तरफ, सॉन्ग नंबर 14। और सॉन्ग नंबर 14 के बाद हम आपको लेके चलेंगे बॉलीवुड की न्यूज़, बॉलीवुड की गॉसिप की तरफ। तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 अपनी आर चुनौती के साथ। और आज की पंजाबी वाली प्लेलिस्ट आपको लग कैसी रही है, इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा चैट बॉक्स में। प्लस आपके चेहरे की स्माइल और आपके पैरों का थिरकना साफ बता रहा है कि गाने काफ़ी मज़ेदार हैं और आपको मज़े आ रहे हैं। फिलहाल इन्जॉय करते रहिए और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए। और जिसने अभी तक वॉच ब्रेक नहीं लिया है, कृपया करके वो सबसे पहले जाएंगे एक ग्लास पानी पी कर आएंगे, यानी कि अप्रॉक्स 250 ml पी लीजिए पानी, एक वाटर ब्रेक ले लीजिए। हम भी वाटर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं अगले गाने पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gala 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

0: बन के।
1: हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे आपका सॉन्ग नंबर 13 मोरनी बनके। बधाई हो नेहा कक्कर की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की, और बॉलीवुड में सुनने में आ रहा है भैया ये कि चांद मेरा दिल ओपन्स टू लो 3.31 करोड़, यानी कि 3.1 करोड़ के आसपास की कमाई हो चुकी है चांद मेरा दिल। आए हाय, चांद नहीं हो तुम। अब आपको बता दें भाई, कुछ रोमांटिक फिल्में बनाने का प्रोसेस चल रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड कुछ रोमांटिक, कुछ बहुत ज़्यादा फिल्मी, कुछ हिस्टोरिक और कुछ लेजेंडरी फिल्में लाने के ख्याल में है। मोहित सूरी की अगली फिल्म शायद आने वाली है बहुत जल्द, और जब तक वो आएगी तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भैया उनकी फिल्में वक्त ज़रूर लेती हैं लेकिन मज़ा बहुत आता है। अवारापुन 2 की बात चल रही है, रामायण को लेकर बात चल रही है। रामायण में भैया किरदार बता दिए गए हैं, कौन किसका किरदार होने वाला है, कौन क्या निभाने वाला है। और इसी के साथ हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं आज संडे। जी हाँ, आज बेशक संडे है और संडे में आपका स्वागत भी करते हैं हम इंटर टॉप 20 में। धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, मैं तो डांस कर रहा हूँ, अच्छा सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप मस्ती करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम आपको बताते हैं भाई एक और फिल्म के बारे में, लेकिन आज से पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। और फिर से मैं कहती हूँ, जिन्होंने अभी तक वाटर ब्रेक नहीं लिया है ना, वो कृपया करके पानी पीकर आ जाए, क्योंकि इस ब्रेक के बाद ही आपके लिए गाना हम प्ले करने वाले हैं। तो आप इस ब्रेक को एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे सॉन्ग नंबर 12 की तरफ। एक्शन जंक्शन फिल्म से हिमेश रेशमिया की आवाज में सुनने वाले हैं आप पंजाबी मस्त। क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बजाया था मस्त पंजाबी, अब बजेगा पंजाबी मस्त। मतलब आपस में मेल झोल है, देखो दूर दूर के कजिन है, लेकिन बीट होने वाली है जबरदस्त, इसीलिए सुनते रहिए द टॉप 20। मिलते हैं अगले बीट पर लेकर के बॉलीवुड की कुछ बातें, बॉलीवुड की कुछ न्यूज। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
7: अरे सुना
8: क्या,
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ,
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।
9: डिलीशियस
10: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
10: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
11: रेडियो 99.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12।

0: भाई इमोशंस का रोलर कोस्टर बैलेंस करते हुए हम सुन रहे थे फलक की आवाज में साजना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। एक्चुअली रात में सुनने में ज्यादा मजा आता है। मैं और तुम फिल्म से आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे और अब हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड की न्यूज की तरफ। और हमने ये तो बता दिया था बॉलीवुड में काफी सारी बातें चल रही हैं रोमांटिक फिल्में बनाने की, कुछ एक्शन, कुछ मार ताड़, कुछ तोड़ फोड़। लेकिन इसी के बीच में मोहनलाल की जो दृश्यम 3 है उसने 100 करोड़ पार कर लिए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के रिलीज होने पर। अभी अपने आप में काफी बड़ी बात होती है, मात्र 3 दिन के अंदर अगर आपकी फिल्म 100 करोड़ पार कर ले जाती है तो ये कितना बड़ा जैकपॉट है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो भाई अगर आप दृश्यम 3 देखने गए हैं या आपने दृश्यम के कोई भी सिक्वल देखा है तो मुझे जरूर से बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त सॉन्ग और नाम है कंगना। तब तक के लिए आप सुनिए कंगना, हम ढूंढ के आते हैं मेरे हाथ का कंगना जो कि मिल नहीं रहा। आप इंजॉय कर रहे हैं इंडिया टॉप 20 आपके अपने FM रेडियो 99.6 FM यही गोदा शहर की धड़कन पर अपनी आरजी के साथ। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 10।

0: कंगना तेरा नी सानू करता है इशारे, और आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। एंड हमारे साथ शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं पंजाबी तो मस्त है लेकिन ओके। तो जिनका आई थिंक आप करण का नाम लिख रहे हैं, और मुझे लगता है आपका अगला गाना करण की आवाज़ में ही होने वाला है, तो ज़रा इंतज़ार कीजिए, कुछ भी अधूरा नहीं है। जितने भी पॉपुलर फेमस एंड हाई बीट वाले सिंगर, या फिर कहें जिन्होंने रोमांटिक गाने गाए हैं, जिन्होंने पंजाबी सॉन्ग्स हमारे लिए बनाए हैं, पेश किए हैं, उन सभी की आवाज़ आज की प्लेलिस्ट में सुनने को मिल सकती है। वो अलग बात है कि आपको ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा पड़ेगा। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और आप इन्जॉय कीजिए करण की आवाज़ में सॉफ्टली। बहुत खूबसूरत गाना है, और इस गाने पर तो भैया कितने लोगों ने धूम मचाया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ज़रा इन्जॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Darasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 9.

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
1: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
0: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
0: जी।
1: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगी तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
0: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
0: जी
1: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है, वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
0: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
1: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
0: जी।
1: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है
1: आकांक्षा जी? यह बहुत गंभीर खतरा है
0: जी।
1: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं
0: जी,
1: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
0: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
1: जी जरूर
0: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
1: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
0: जी।
1: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
0: जी,
1: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
0: जी।
1: हम साफ कहते हैं।

0: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
1: देखिए खानसा जी,
0: जी
1: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
0: जी,
1: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
0: जी,
1: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम, एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
1: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका
0: जी।
1: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
0: बिल्कुल,
1: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
0: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
1: जी आकांक्षा जी।
0: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
1: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
0: जी।
1: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
1: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है
0: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: मेरा संदेश बहुत साफ है
0: जी।
1: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
0: जी।
1: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: तो दोस्तों, याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।

0: शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना छल्ला की लव ना फिरे जब तक है जान। एक वो दौर था जब गाने जब बनते थे तो वो कार पे, थार पे, गन्स पे, सूट पे, कलर पे नहीं, मोहब्बत, इश्क और रोमांस पे बनते थे। पंजाबी गाने जब आप इन्जॉय करते थे तो आप उन्हें महसूस करते थे। हाँ, आज भी पंजाबी गाने बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव ये है कि भाई अब पंजाबी गाने आपके दिलों की बात नहीं करते, अब आपके जज्बातों की बात नहीं करते, अब वो बात करते हैं सिर्फ कार की, थार की, गन्स की, रात की एंड न जाने किस किन चीज़ों की। बट वो जो एक फीलिंग है, एक जो वाइब है, एक जो जज्बात है, वो मिस हो गया है जब हम सुनते थे पुराने टाइम के सॉन्ग्स। चाहे वो पार्टी सॉन्ग हो, चाहे वो शादियों के लिए स्पेशल बनाया गया हो, चाहे वो यूं ही बनाया गया हो, या फिर सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आप उन्हें अकेले बैठकर महसूस कर सकें। और उनमें से ये गाना आप इन्जॉय कर रहे थे छल्ला। बहुत खूबसूरत सॉन्ग था, बहुत प्यारा गाना था और आप इन्जॉय कर रहे थे इंडिया टॉप 20 की सॉन्ग नंबर 8 काउंटडाउन प्लेलिस्ट में। ज़बरदस्त सॉन्ग को इन्जॉय करने के बाद आइए लेके चलते हैं हम आपको अगेन एक ऐसे गाने की तरफ जो फिर से आपको वही फील देगा, वही नॉस्टैल्जिक फील, वही राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ की राहत और खूबसूरत सी लिरिक्स। नाम है गुमसम गुमसम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे ज़रूर बताइएगा चैट बॉक्स में ये गाना आपको कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 7।

0: और इसको सुनने के बाद आई होप आपको फील हो गया होगा वो मोहब्बत, वो इश्क, वो जज्बात जो शायद राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। गुमसुम गुमसुम राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में जो राहत है, जो जादू है, वो आपने इन्जॉय किया। और आइए लेके चलते हैं हम आपको बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड में बात चल रही है स्पिरिट फिल्म की, और सुनने में आया है कि भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है। जिस तरह से हम म्यूज़िकल वाला ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक लेते हैं, इस तरह से उन्होंने अपनी शूटिंग से ब्रेक लिया है कुछ दिनों के लिए। और सुनने में आया है कुछ दिन के ब्रेक के बाद दोबारा से एक फिफ्थ शेड्यूल तैयार किया जाएगा जिसमें शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। और शूटिंग में नज़र आने वाले हैं प्रभास, प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी, और उनके साथ नज़र आएंगे विवेक ओबेरॉय। हम आपको बता दें अभी तक प्रभास ने अपनी पूरी शूटिंग में कहीं भी खाकी यानी कि यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। आगे आने वाले सीन्स में, आगे आने वाले शेड्यूल में वो अपनी यूनिफॉर्म के अंदर दिखाई देंगे और आपको एक एक्शन से भरी हुई फिल्म बहुत जल्द नियर बाई थिएटर्स पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए विवेक ओबेरॉय एज अ विलन अगर नज़र आते हैं तो बहुत बिंदास आएंगे, क्योंकि भाई उनकी एक्टिंग विलन के तौर पर बखूबी बहुत कमाल की होती है। और आपने भी कई बार देखा होगा जब विवेक ओबेरॉय ने कॉमेडी की फिल्में की हैं तो हंसाया बहुत है, लेकिन जब जब उन्होंने विलन का किरदार निभाया है वो उस कदर उसके अंदर डूब गए हैं कि आपको भी उस किरदार से नफरत हो जाती है। और बस यही एक जीत होती है एक्टर की कि अगर किसी इंसान को उस किरदार से नफरत हो जाए जिसको उसने प्ले किया है, तो भाई एक्टर सोचता है कि हमने कमाल किया। लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि भाई जब लोग एक्टर को देखते हैं उस कैरेक्टर के अंदर तो लोग कैरेक्टर से नफरत बाद में करते हैं, एक्टर से पहले कर लेते हैं। और इसका सीधा असर उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, क्योंकि लोग फिर उसे वैसे ही जज करते हैं जैसे वो उसने उस कैरेक्टर को प्ले किया था। हालांकि हम आपको बता दें कोई भी विलन रियल लाइफ में विलन नहीं होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम ना चाहते हुए भी किसी के दिल में ऐसे जख्म दे जाते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। और कई लोग इसकी वजह से न जाने कितने थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो आप ऐसा अपनी लाइफ में ना करें, किसी की बाहरी तौर को देखकर उसका अंदरूनी अंदाजा ना लगाया करें। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अखिल की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं तेरी कमी, और जिसकी कमी है आपकी ज़िंदगी में उस तक ये गाना पहुँचाने की थोड़ी सी मेहनत करें और इन्जॉय करते रहे। कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहा है गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं मेरे टॉप 20 में। एंड वाह वाह मैम अधूरा पार्ट पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। शर्मा जी मैं सुन रहा हूँ जी, बेशक धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ लगातार सुन रहे हैं और हमें सुन रहे हैं वो लोग भी जो मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं फ्रिक्वेंसी से या रेडियो गार्डन से, या फिर वो लोग भी जो एप्लीकेशन से जुड़े हैं अपने कामों में व्यस्त हैं, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करते रहे सॉन्ग नंबर 6, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garden 39.6 FM presents India Top 20 Songs.

0: हाँ जी, तो आप इंजॉय कर रहे थे तेरी कमी बाय अखिल, और उसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं सतिंदर की आवाज़ में, और कहते हैं भाई इनकी आवाज़ में वो जादू है जो आज भी पंजाबी सॉन्ग्स के रोमांटिक वर्जन को ज़िंदा रखता है। जब भी कॉन्सर्ट होते हैं तो भाई साहब बैठ कर आराम से गीत गुनगुनाते हैं और हर कोई इनके गीतों में डूब जाता है। सॉन्ग है उदारियाँ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं इंटरप्ट 20, आपका अपना काउंट डाउन वाला शो, जिसके अंदर आज बज रही है पंजाबी वाली प्लेलिस्ट। हमने इन्जॉय किया हाई बीट हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स, और अब बारी है हमारे थोड़े से सूथिंग प्लस रोमांटिक गानों की तरफ रुख करने का, और हम ऑफकोर्स आ भी चुके हैं उनकी तरफ। तो इन्जॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 5, मिलते हैं अगले गाने पर। अगला गाना है बेहद प्यारा, करण की आवाज़ में होने वाला है। हाँ, वो वाले करण नहीं, दूसरे वाले करण सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन्जॉय कीजिए उदारियाँ। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 5.

0: पल मेरे बस दी रही। सतिंदर की आवाज़ में इस गाने को सुनने के बाद आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। स्पेशली अगर आप शाम के वक्त में इन तरह के गानों को सुनते हैं तो आपका मूड भी हो जाता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक और आपको गुस्सा करने का मन नहीं करता। और इसीलिए हम इस गाने को प्ले करते हैं कि जब भी आपको कोई गाना समझ ना आए और आप कहो कि ना आई डोंट लाइक पंजाबी सॉन्ग्स ब्रो, जस्ट लिसन सतिंदर। इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि आपको भी पंजाबी गानों से मोहब्बत हो जाएगी और आपको भी मोहब्बत में पंजाबी गाने याद आने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे पंजाबी गाने पार्टी सॉन्ग्स होते हैं तो जी नहीं जनाब, ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग ड्राइव पे सुने जा सकते हैं, जो दोस्तों के साथ सुने जा सकते हैं, जो अपनी पार्टनर के साथ सुने जा, जो अकेले भी सुने जा सकते हैं। वो अलग बात है कि अकेले सुनने के बाद आप अकेले ही ब्लश करेंगे, पीछे से मम्मी आके ज़रूर पूछेंगे हाँ किधर किधर किसके लिए क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, और आप कहोगे हाँ कहाँ मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा होता है, फिलहाल आप मुस्कुराइए। तब तक के लिए हम आपको लेके चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, और एक्चुअली बॉलीवुड की तरफ नहीं, जूनियर NTR की तरफ। और सुनने में आ रहा है वो करने वाले हैं ड्यूअल रोल, यानी कि एक नहीं डबल धमाका जूनियर NTR, वो भी अपनी अपकमिंग फिल्म ड्रैगन में, जिसका टाइटल हाल फिलहाल में ही रिलीज़ कर दिया गया है। जब हम छुट्टी पर थे तभी इस टाइटल को रिलीज़ कर दिया गया है और बता दिया गया है कि जूनियर NTR की जो आने वाली फिल्म है उसका नाम होने वाला है ड्यूअल। और हम आपको बता दें इस फिल्म के डायरेक्टर ने ये कहा है कि 3 ऐसी और फिल्में आपको मिलने वाली हैं जो थोड़ी सी डार्क कलर में होने वाली हैं, यानी कि थोड़ा सा डार्क होंगी, और इसके बाद शायद मूवीज़ इस तरह की ना बने, थोड़ी सी लाइट बने, थोड़ी सी हैप्पी हैप्पी बने। तो किस तरह की होगी? सलार 2, ड्रैगन 2 एंड KGF 3। जी हाँ, ये 3 फिल्में अभी बाकी हैं जो आपको थोड़ी सी डार्क थीम पर, डार्क पैलेट्स पर देखने को मिल सकती हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट एक्टर के साथ आपकी 3 फिल्में आने वाली है। और इसी के साथ आइए चलते हैं रंग की तरफ, आपकी ज़िंदगी में रंग भरते हुए करण की आवाज़ में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सारे दुनिया दे रंग फीके लगने, मेरे इश्क के दा रंग जब चढ़िया। अब कुछ ऐसा ही बहुत खूबसूरत सा गाना है जो हम कभी सुना करते थे, तो सोचा क्यों ना आपको भी सुना दे। फिलहाल ये मेरी प्लेलिस्ट का सबसे ज़्यादा प्ले किया जाने वाला सॉन्ग है, जो मैंने बहुत कम लोगों को सुनाया है और स्पेशली आज मैं अपने लिसनर्स के लिए लेकर आई हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये गाना आपको कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 4.

0: जी तो आप बताइए क्या ख्याल है आपके। सारी दुनिया दे रंग फीके लगने, मेरे प्यार वाला रंग जदो चढ़िया, कितनी खूबसूरत लाइंस है। बाय गॉड, कभी कभार आपने सोचा नहीं होगा बट हम वो इंसान हैं जो इस तरह के लिरिक्स सुनकर लिरिक्स से मोहब्बत कर बैठते हैं। और हम सोचते हैं राइटर ने जब इस गाने को लिखा था तो क्या सोच के लिखा था, किसके ख्यालों में लिखा था। बहुत ही खूबसूरत का गाना था। और धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं इस गाने में क्या रंग क्या तरंग, मैं तो इस गाने के साथ चाय के संग हूँ। क्या बात है भाई, वैसे चाय भी भारतीयों की मोहब्बत है। 50 डिग्री सेल्सियस पड़ रही होती है बाहर, फिर भी हम घर जाके कहते हैं एक कप गरम गरम चाय हो जाए। और जब किसी से कहा जाए कि भाई गर्मी में चाय, तो वो कहते हैं वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द ना हो, है कि नहीं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और सुनते हैं सॉन्ग नंबर 3, ये जो सिली सिली आंधी है हवा, किथे कोई रोता होवेगा, कुछ इसी तरह से लाइन से। वेल, अब आप बताइए कि सिली सिली जो हवा आ रही है, क्या सच में कोई रो रहा है या कहीं बारिश हो रही है। वैसे बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि आसमान रोता है ज़मीन के लिए। अब आप बताइए आपके क्या ख्याल है। मेरे ख्याल तो बड़े शायराना होते जा रहे हैं क्योंकि हम शायरी ही कर रहे थे उतनी देर से बैठ कर और हम कुछ गुनगुना रहे थे। फिलहाल आप इन्जॉय कीजिए इन पंजाबी सॉन्ग्स को और हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि होने वाला है रुसिया न कर मेरी जान सोनिया। स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 3.

क्या बात है, क्या बात है। अबे रुसिया ना कर मेरे यार सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। गाने की खूबसूरती उसके अल्फाजों में है और प्लस ये आवाज, ओ माय गुडनेस। भाई अगर आपसे कोई रूठा है ना, तो उसको मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उससे जाकर कहेगी रुसिया ना कर मेरे यार सजना। चलिए आइए चलते हमारे आखिरी गाने की तरफ, और इस गाने के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में, जिसमें हम बात करेंगे आज कार्ब्स के बारे में, यानी कि भाई दुश्मन दोस्त क्या है ये। मुलाकात करते हैं आपसे अपने अगले वाला शो। आज की प्लेलिस्ट, आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो रेडियो ज्ञान असली के एप्लीकेशन से, 89.6 FM फ्रीक्वेंसी से, या जो हमसे सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और आई थिंक आज का शो आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदा गाने, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट जरूर चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ ख्याल रखिए, छोड़कर जाते हैं हम आपको एक ऐसे गाने के साथ जो आपने सुना था 90s में, चन्ना वे घर आ जाए यार। तो आप सुनते रहिए कुणाल की आवाज़ में, और हम मिलते हैं अगले वाले शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
4: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
5: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
4: जी,
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
4: जी,
5: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
4: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
5: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
4: जी,
5: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं। पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ, और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
4: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
5: जी आजी दीदी,
4: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
5: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
4: जी।
5: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रूप के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
4: जी,
5: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
4: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
5: जी दीदी
4: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
5: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
4: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
4: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
6: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
4: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
6: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
4: अच्छा।
6: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
4: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
6: बहुत सारी,
4: जैसे?
6: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ
4: जी।
6: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
4: और बाकी?
6: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
4: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
6: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब

0: बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
0: जी
1: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी, खासकर कम वजन वाले बच्चे 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
0: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
1: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस NBSU।
0: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
1: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
0: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्यों?
1: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं, और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
0: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
1: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM के साथ। नमस्कार।

0: सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है।
1: बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरे लिसनर से बहुत प्यार है, इसलिए हम वापस आ चुके हैं आपके अपने वाले शो क्लीनिंग कैनसली में, रेडियो कैनसली और स्मार्ट एनजीओ की खूबसूरत पहल जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम क्लीनिंग कैनसली को, जिसमें बात करते हैं सेहत की। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति, और ये जो गाना था ना, मैं हूं ना, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूं ना, और मैं हूं ना आई थिंक आपके लिए जाता है सर।
2: जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए फिक्र नहीं करने का, क्योंकि मैं हूं ना, और
1: इसीलिए मैं सोच रही थी सारे सप्लीमेंट्स एक में आ जाते तो अच्छा होता।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसी वैसे ऐसा होता है बहुत से, मतलब पेशेंट आते हैं वो डॉक्टर से, मतलब कुछ देखिए हम इसको उनका इनोसेंस ही कहेंगे, ये उनकी मासूमियत होती है, कभी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा लिख दीजिए कि जो है ये एकदम से मेरे बाल जो है उगाए, तो हमको मतलब कभी कभी थोड़ा सा हंसी भी आती है कि कैसे मासूमियत से, मासूमियत भरे सवाल पेशेंट के होते हैं। तो ऐसे ही उन्नति मैम भी चाहती हैं कि ढेर सारे सप्लीमेंट्स इनको सिर्फ एक सिंगल टैबलेट में मिल जाए।
1: एक्चुअली वो हमने बचपन में सुना था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भगवान होते हैं, तो मुझे लगा भगवान के पास जादू की कोई तो पुड़िया होगी।
2: बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर पुड़िया होती है, और कभी ना कभी डॉक्टर्स के द्वारा दी गई दवाएं वो जादू की पुड़िया ही साबित होती हैं, और आशा करते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको हमारे द्वारा दिया गया जो एडवाइस है, जो हेल्थ के बारे में सलाह होती है, वो भी उनके किसी काम आती होगी, छोटी सी भी सही, लेकिन वो भी एक पुड़िया मुझे लगता है कि उनको वो लगती होगी।
1: तो मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए अपनी पुड़िया खोलनी चाहिए और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर लेना चाहिए।
2: चलिए तो जानते हैं कि आप आज के लिए क्या टॉपिक लेकर के आई हैं।
1: अच्छा, आपसे कभी किसी ने आकर ये कहा कि डॉक्टर साहब अब तो मैंने चावल खाना भी छोड़ दिया है लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा है?
2: बिल्कुल, ऐसा लोग बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम तो अब तो हमने चावल भी खाना छोड़ दिया है, जबकि ऐसा भी होता है कि उन पेशेंट से जब हम दूसरे सवाल पूछते हैं आलू खाना भी छोड़ दिया तो कहते हैं नहीं, हम कहते हैं चाय पीना भी छोड़ दिया वो कहते हैं नहीं, मीठी चीज़ें एकदम से बंद है वो कहते हैं नहीं, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन ऐसा कहते हैं पेशेंट।
1: अब चावल खाना छोड़ दिया, और मैं आपसे कहूँ तो मैंने कभी चावल खाना नहीं छोड़ा है, इसके बाद भी मैंने अपना वेट लॉस किया है।
2: बिल्कुल, देखिए वेट लॉस करने के लिए चावल खाना छोड़ना या आलू खाना छोड़ना यही सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं होता है। बेसिकली हमको क्या होता है कि इसके लिए कैलोरीज बर्न भी करनी होती हैं। अभी देखिए चावल आलू अगर आप खाना बंद कर रहे हैं तो आप जो फर्दर फैट इंटेक है आप उसको रोक रहे हैं, आपके बॉडी में जो डिपॉजिटेड फैट है मतलब जो जमा फैट है उसको निकालने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं ये भी मायने रखता है।
1: चलिए सर, तो मुझे लगता है आज हम दोनों के बीच में डिबेट होने वाली है इस बात को लेकर के कि कार्ब्स को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, फ्रेंड है या दुश्मन है, क्योंकि मैं उसके फ्रेंड की तरफ हूँ, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कार्ब्स इज़ गुड फॉर एनर्जी, प्रोटीन इज़ गुड फॉर मसल्स रिकवरी एंड फैट इज़ गुड फॉर योर हार्मोन्स।
2: जी बिल्कुल,
1: और आज डिबेट तो हो जाए तो फिर एक कि कार्ब्स हमारे दोस्त है कि दुश्मन।
2: चलिए ठीक है, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक ऐसी डिबेट हो सकती है, और मैं अपने लिसनर से भी चाहूँगा कि आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें कॉल करके ज़रूर दें, और ज़रूर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स जिसे हम कह रहे हैं, मतलब जो फैट है, जो वसा है जिसको हम लेते हैं, वो आपके समझ से क्या है, वो आप कोई बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, आप अपनी राय ज़रूर दें।
1: अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर एक चीज़ का एक क्वांटिटी होता है, एक पोर्शन होता है, और जब उस पोर्शन से हम बाहर निकल जाते हैं तब वो हमारे लिए दुश्मन होता है, चाहे वो दवा हो, चाहे वो जहर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो। पानी भी अगर आपके लिए 8 ग्लास लिखा गया है और अगर आप उस 8 ग्लास की जगह पर 80 ग्लास पीते हैं तो आपकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती है।
2: बिल्कुल, और ऐसा एक मतलब एक काफ़ी प्रचलित ऐसी घटना भी है मेडिकल फील्ड में, किसी फॉरेन कंट्री का ही शायद ये है कि किसी एक कोई कंपटीशन टाइप का था और उसमें ऐसा था कि आप कितना पानी कितने कम समय में पी सकते हैं, तो उसमें एक आदमी ने काफ़ी सारा पानी, मुझे लगता है 8 या 10 लीटर के आसपास पानी विद इन कुछ मिनट्स में वो पी गया। इसके थोड़ी देर बाद फिर उसको चक्कर आया, फिर वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी जान बच गई, बट बात उसकी जान पे बन आई थी।
1: और इसीलिए कार्ब्स के लेकर भी बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे भ्रम्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो मुझे आज आपकी तोड़नी है। जब मैं स्कूल में थी और जब भी कोई कहता था कि बेटा आपको थोड़ा सा वजन कम करना चाहिए, आप चावल छोड़ दो, आप आलू छोड़ दो, आई वॉज लाइक क्यों छोड़ दो भाई, कम करने की सलाह दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर आप ये कहते कि एक टाइम पर एक ही कार्ब्स का सोर्स लो तो भी अच्छा होता, क्योंकि आपने बायो नहीं पढ़ी है और आपने बस आकर कह दिया कि कार्ब्स में आपको आलू चावल छोड़ देने चाहिए और उससे आपका वेट लॉस हो जाता है। ये कहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे वो पॉइंट दिखाओ। और इस बात में मैंने कई लोगों से बहस भी की है।
2: ठीक है, वैसे तो हम ऐसी किसी चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे कि हमें बहस करनी पड़े, लेकिन हम एक बहुत ही संतुलित और मेडिकली जो एक्यूरेट होती है वो एडवाइस ज़रूर देंगे।
1: बिल्कुल।
2: और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एक छोटी सी डिबेट हो जाए, तो जो मेरा ओपिनियन है
1: जी।
2: जैसे हर इंसान का अपना पर्सनल ओपिनियन भी होता है, तो ये मेरा ओपिनियन की अगर आप बात करेंगी तो मैंने अपने 8-9 साल के मेडिकल फील्ड में ये चीज़ें एनालाइज की कि कार्ब्स कुछ लोगों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे भी हो सकते हैं। जिनके लिए अच्छे हैं वो अच्छा कह रहे हैं, जिनके लिए बुरे हैं वो बुरा कह रहे हैं। बट मैं अगर ये ना कहना चाहूँ कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है या नहीं नहीं ये बहुत बुरा है, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है।
1: बिल्कुल। और ये हमारे बॉडी के लिए इतना नेसेसरी है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने दिनचर्या का ही क्यों कोई काम क्यों ना करना चाह रहे हो, अगर आपने अपनी कार्ब्स को बिल्कुल कट आउट कर रखा है और आप चाह रहे हैं कि अब मैं काम अच्छे से कर लूं, तो नहीं हो पाएगा, उस एनर्जी से आप नहीं कर पाओगे।
2: बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये सभी जानते हैं कि जो नमक होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ये सभी जानते हैं। स्पेशली बहुत सारे ऐसे मतलब नमक भी हैं मार्केट में जिनमें लिखा रहता है कि लो सोडियम सॉल्ट, मतलब ये नमक है बट इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम है। बट अगर वही नमक का सोडियम और क्लोराइड, अब आपकी बॉडी से जितना सोडियम आपकी बॉडी में अवेलेबल है वो सारा अगर एक मिनट के लिए निकाल दिया जाए, तो आप गेस करिए कि क्या हो सकता है इंसान के साथ।
1: उसका बीपी डाउन हो सकता है अचानक से।
2: उसका बीपी डाउन हो सकता है, इनफैक्ट उसका हार्ट फेल हो सकता है।
1: ओके।
2: मतलब उसको उसका हार्ट चलना बंद कर सकता है और वो हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट का शिकार होकर के वो पेशेंट मर सकता है।
1: ओके।
2: हमारे बॉडी में सोडियम की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए, आप सोडियम कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे बुरा है, बट वो अच्छा है या बुरा है ये तो पता नहीं, लेकिन वो नेसेसरी ज़रूर है। हाँ, उसी तरह से आपके बॉडी में जो फैट होता है वो अच्छा है बुरा है ये तो पता नहीं, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, बट वो नेसेसरी ज़रूर है। अगर आपके बॉडी में फैट नहीं है, रिक्वायर्ड फैट नहीं है, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस सिस्टम है वो आपका ठीक से काम नहीं करेगा। ठंडी के समय में आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, आप ज़्यादा ठंड फील करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो मसल्स हैं वो मसल्स टेम्परेचर लॉस हो सकता है उनका, उससे मसल्स जल्दी बूढ़ी हो सकती हैं, जल्दी डैमेज हो सकती हैं, मर सकती हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपके बॉडी के लिए नेसेसरी है। अब अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो नुकसानदायक है, ज़रूरत से कम ले रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में फैट की मात्रा कम है, तो ये नेसेसरी है। अब कितना लेना है, कैसे लेना है, ये डिबेट का अगला विषय होगा
1: जी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जो आई थिंक हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी प्लेट लगाता है और प्लेट में सबसे पहले कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी आखिरी में रखनी है, ये बात कोई नहीं जानता
2: जी।
1: कई बार लोग ऐसा करते हैं कि आखिरी की चीज़ सबसे पहले रख देते हैं और सबसे पहले की चीज़ उठाकर आखिरी में रख देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं अपनी प्लेट लगाने बैठती हूँ, सबसे पहले उसमें मैं रखती हूँ अपना सैलड वगैरह जिसमें थोड़े से प्रोटीन है, यानी कि 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन शामिल होता है। उसके बाद मेरी सब्जियां शामिल होती हैं, उसके बाद दही शामिल होता है, फिर दाल होती है और उसके लास्ट में जाकर मैं चावल रखती हूँ। तो मेरी प्लेट इस तरह से राउंड है। बट मैंने कई लोगों को देखा है कि सबसे पहले लोग चावल रखते हैं, फिर रोटी रखते हैं, फिर आलू रखते हैं, फिर दाल रखते हैं और फिर जाकर कहीं वो एक कटोरी दही शामिल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्ब्स की क्वांटिटी मुझे ज्यादा लगती है।
2: बिल्कुल, कार्ब्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और देखिए, कार्ब्स पे अगर जैसे हम जो हमारी डिबेट है, अगर हम इसका जो फैक्टर है कि कार्ब्स गुड हैं या बैड हैं, अगर इस पे अगर हम
1: फ्रेंड है या दुश्मन
2: हाँ फ्रेंड है या दुश्मन है अगर इस क्वेश्चन को सोशली पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इसके नेगेटिव फीडबैक देने वाले ज्यादा मिलेंगे आपको।
1: बिल्कुल, लोगों को लगता है कि चावल खाने से आलू को खा लेने से फैट बढ़ता है, बट मैं आपको बता दूं लोग कहते हैं मतलब साइंस कहती है कि आलू वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको सही तरीके से खाओ तो।
2: बिल्कुल, और देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे कि जो आपको उसको बोलेंगे कि वो फ्रेंड नहीं है वो एनिमी है
1: जी,
2: ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी। बट देखिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं, जो लोग खाने के शौकीन होते हैं, उनको क्या होता है कि जैसे आप जो भी खाते हैं, आप जनरली देख लीजिए जो भी आप मार्केट का जंक फूड खाते हैं जिसमें पकौड़ी, खस्ता, कचौरी या जो थोड़ा सा और चाइनीज ट्रेंड है वो फिंगर फ्राई, चाउमीन हो गया, मोमोज, मंचूरियन, इन सभी चीज़ों में आप पाएंगे कि कार्ब्स की मात्रा भर भर के है, मैदा है, आलू भी सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट खस्ता कचौरी पकौड़ी वगैरह में, ऑयल भी जो है वो भी एक तरह का फैट है जिसमें वो फ्राई करते हैं, जिसमें उसको पकाया जाता है। तो मतलब अच्छा अब ये तो हो गया आप जंक फूड की बात, जब आप खाना खाते हैं नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें भी आप समझिए जैसे जो दाल चावल रोटी सब्जी हम लेते हैं, अब इसमें रोटी भी जो होती है रोटी में सारा कुछ प्रोटीन ही नहीं होता है, एक 15-20% उसमें प्रोटीन केवल होता है, ठीक है। तो आप रोटी भी खा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है
1: जी।
2: आप सब्जियों में भी जो खा रहे हैं आलू वगैरह हो गया इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। जो दूसरी सब्जियां होती हैं जैसे कि करेला, भिंडी, तरोई, लौकी, बेशक इनमें विटामिंस होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं बट इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहती है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से चावल में लोग सिर्फ कार्ब्स का सोर्स समझते हैं तो 1% अगर उसमें प्रोटीन है तो फिर इस तरह से आपकी सब्जियों में भी कार्ब्स है, भले ही वो 1% ही क्यों ना हो,
2: भले ही वो 1-2% 5% ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब हम चावल, आलू ऐसी चीज़ों पर आते हैं तो वो तो फिर मतलब 80-90% कार्ब्स ही हैं। तो हमारे खाने के आसपास इर्द गिर्द जो है वो कार्ब्स बहुत भर भर के पड़े रहते हैं
1: जी,
2: ठीक है। चाहे आप जंक फूड खाइए, चाहे आप घर का जो सात्विक भोजन है वो आप करेंगे, सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको ज्यादा दिखेगी
1: जी।
2: प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं वो आपको कम दिखते हैं, जैसे अगर आप नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो उसमें ले दे के आपको थोड़ी सी रोटी और दाल में आपको प्रोटीन मिल रहा है।
1: बिल्कुल, या फिर अगर आपने दही लिया है तो 6-7 ग्राम
2: हाँ, दही, दूध या कोई डेयरी प्रोडक्ट लिया है तो थोड़ा सा उसमें मिल सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोटीन की सप्लीमेंट है वो कम होता है, कार्बोहाइड्रेट के जो अवेलेबल सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
1: इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम थाली लगाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को ऐड करना चाहिए, ये आज आप कंफर्म करेंगे।
2: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जब जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो लोग यही सारी चीज़ें ज़्यादा खाते होंगे, या तो जंक फूड ज़्यादा खाते होंगे, चावल वगैरह, आलू, यही सारी चीज़ें ज़्यादा खाते होंगे, तो उनके बॉडी में फैट का डिलीवरी ज़्यादा होती है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है और इसके वजह से फैट गेन होता है। तो ये सारी समस्याएं इस वजह से आपको आती हैं क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ों में फैटी कंटेंट ज़्यादा होते हैं।
1: ऑलराइट, तो बात कर लें कि फिर किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। एक मैंने अपना एग्जांपल दिया जो मैं पर्सनली फॉलो कर रही हूँ, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं होना होता है कि आप एकदम जीरो पे चले जाए, ऐसा भी नहीं है, आपको फिट होना है और फिट होने के लिए आपको सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी दोनों पता होना चाहिए कि किस तरह से एक बैलेंस मील होती है। फैट इंपॉर्टेंट है, वो भी होना चाहिए। लोग कई बार फैट ही कट कर देते हैं जिसकी वजह से फिर आपकी अंदर की चीज़ें, आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं।
2: उससे बीमारियां तो होती हैं आपकी बॉडी में। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक टाइम तक आप भाई फैट कट वही करेगा जो बहुत मोटा होगा
1: जी,
2: पतले लोग ऐसे जो दुबले पतले लोग होंगे उनको तो फैट कट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो थोड़ा हैवी होगा, हेल्दी होगा, मोटा होगा वो फैट कट करेगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अभी तक वो भरपूर फैट और भर भर के फैट लेता था, अब वो उसने क्या है सडन फैट को कट डाउन कर दिया है, तो इसके वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
1: एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी बाकी बीमारियों के कारण बनते हैं जिसमें डायबिटिक, थायराइड और यहाँ तक कि हमने बात की थी कार्डिक अरेस्ट की
2: जी,
1: भी होता है
2: जी।
1: तो बात कर ले अगर उस प्लेट की जो आप आज रात लगाने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले क्या ऐड करें हम?
2: देखिए सबसे पहले अब आपने कहा कि वो प्लेट जो हम लगाने वाले हैं उसमें हम क्या ऐड करें। देखिए सबसे पहले अगर वो रात का खाना है तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, दिन का खाना है तो डिफरेंट होगा।
1: ओके okay. और जो लोग बेचारे जिनको टाइम ही नहीं मिल पाता सुबह का ठीक से खाना खाने का, वो तो रात में ही खा रहे हैं।
2: देखिए वो लोग जिनको ठीक से खाना खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको रात का जो खाया हुआ खाना है वो आपके बॉडी में डिपॉजिट ज़्यादा होता है, कंज्यूम कम होता है. जो दिन का खाना होता है वो कंज्यूम ज़्यादा होता है, डिपॉजिट कम होता है,
1: बिकॉज ऑफ मूवमेंट.
2: ठीक है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट. तो वो लोग जो सुबह में, दिन में, दोपहर में खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, वो फिर रात को भी अच्छे से खाना नहीं खाएं, या अगर अच्छे से खाना खा रहे हैं तो खाने में फैट की मात्रा कम, बाकी वेजिटेबल्स और प्रोटीन इन सभी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा रखें.
1: तो यानी कि सबसे पहले हमारी थाली का जो 30% जाएगा वो फिर इन्हीं, मतलब सबसे पहले प्रोटीन या फिर फाइबर का जाने.
2: जी बिल्कुल, फाइबर, प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स के जो सोर्सेज होते हैं. ठीक है, विटामिन मिनरल्स के सोर्सेज के लिए हम सब्जियों पे और सब्जियों की वैराइटीज पे जाते हैं. ठीक है, दूध आप ले सकते हैं एज एन ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी बाकी जो बची खुची कमियां हैं उनको पूरा कर रहा है. तो ऐसे समय में जब आप रात का खाना खा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाढ़ी भरी हुई दाल लगभग आप मान के चलिए 1.5 कटोरी.
1: ओके.
2: ठीक है, अब इसको आप जिस भी पैमाने पे आप अंदाज़ा लगा सकें.
1: मैं आपको बता दूँ, एक नॉर्मल में 200 से 250 ग्राम दाल आती है. मैं हमेशा वेट करती हूँ.
2: जी बिल्कुल, तो लगभग आप मान के चलिए कि इतनी दाल, वो प्रोसेस्ड दाल है, मतलब कच्ची दाल की बात नहीं हो रही, 250 ग्राम वो बहुत ज़्यादा होती है. तो प्रोसेस्ड दाल आपके पास इतना हो. फाइबर आप मान के चलिए एटलीस्ट 100 से 150 ग्राम फाइबर, जिसमें आप वेजिटेबल सोर्सेज से आप फाइबर को फुलफिल कर सकते हैं.
1: दिन का 25 ग्राम आपको पूरा करना है.
2: जी बिल्कुल. और इसके अलावा फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मतलब अंडरवेट नहीं हैं, अगर आपका वेट सफिशियंट है और आप ओवरवेट नहीं होना चाहते हैं, तो आपको चावल, आलू, इन सभी चीज़ों के कंटेंट, फैटी कंटेंट्स को कम रखना है.
1: ओके.
2: दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा मन कहे तो चावल ले सकते हैं.
1: और मतलब कि मैं आपको समझा दूँ, अप्रॉक्स अगर क्वांटिटी की बात करें तो 30 ग्राम यानी कि 30% आपका प्रोटीन रहेगा, 20% आपका फाइबर रहेगा, एंड जब आप दाल ले रहे हैं तो 250 से 300 ग्राम आपकी दाल रहेगी और 150 से 200 ग्राम पके हुए चावल रहते हैं.
2: जी, तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं. स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत से पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं जो दिन में बहुत ही लाइट खाना खाते हैं और रात में वो बहुत ही हैवी खाना खाते हैं.
1: जी.
2: और इस, अच्छा, इसका वो कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि हम ये कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, जबकि वो साल डेढ़ साल से बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि उनकी डाइट ही गलत है. ऐसे लोगों को मैं विशेष बताना चाहूँगा कि आप दिन का खाना भरपूर लें, रात के खाने को अवॉइड करें.
1: ओके.
2: और इसके अलावा जो लोग फैट कट डाउन कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप फैट अपनी हमेशा 80% जो अमाउंट आप ले रहे हैं उसको ही कट डाउन करें. 20% फैट आपको रेगुलर लेते रहना है.
1: क्यों? यानी कि एक चम्मच घी लेने से आपका भला ही होने वाला है.
2: जी बिल्कुल, भला ही होने वाला है. और मतलब जो भी, जिस भी सोर्सेज से आप फैट ले रहे हैं, आप उस सोर्सेज से लेते रहिए. इसके साथ साथ फैट को कट करने के साथ साथ आपको ज़रूरत होती है कि आप फिज़िकल मूवमेंट बढ़ाएं. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा.
1: जी.
2: बेसिकली ऐसा कई बार फीमेल से, जो पोस्ट मैरिटल फीमेल्स होती हैं या पोस्ट डिलीवरी जिनके बेबीज़ वगैरह हो गए हैं, उनको जब थोड़ा सा उनके बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है, जो बेली फैट वगैरह होता है, पेट वगैरह बाहर निकलता है, इसके लिए जब वो औरतें थोड़ा परेशान होती हैं फीमेल्स, उनको जब हम एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, वो मतलब इंस्टेंट हमारी बातों का विरोध करते हैं कि भैया हम सारा दिन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घर में जाते हैं, काम करते हैं, बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज की हमें ज़रूरत नहीं है. देखिए, मैं उनको वहाँ कभी कभी समझा पाता हूँ, कभी कभी नहीं समझा पाता हूँ, कभी कभी समझाता ही नहीं हूँ, बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे वो काम करना, आपका दिन भर मूवमेंट करना, वो डिफरेंट होता है. फैट को बर्न करने के लिए आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है कि आपके बॉडी से पसीना निकले, आपकी बॉडी एक्सर्बेट करे. ठीक है, मतलब इतना उसके अंदर टेम्परेचर जनरेट हो, इतना उसके अंदर जो है मूवमेंट जनरेट हो कि वो फैट धीरे धीरे वहाँ से डिज़ोल्व हो. अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म होता है जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं. जैसे जो फैट आप ले रहे हैं, स्पेशली देखा गया है कि अगर कोई मेल है तो तो मेल का अगर फैट डिपोजिशन होता है तो उसका सबसे पहले पेट निकलना स्टार्ट होता है, फीमेल्स हैं तो पेट के साथ साथ उनके हिप्स में भी जो फैट डिपोजिशन की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये होता है एडिपोज टिश्यूज़ के वजह से, वो फैट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप लंबे समय तक ढेर सारा फैट खाते हैं, आलू चावल इन सभी चीज़ों का भरपूर सेवन कर रहे हैं, वज़न आपका बढ़ चुका है, तो हमारी बॉडी उस फैट को वापस से कंज्यूम करना भूल जाती है, उसे सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट ही करना आता रहता है। कई बार जब ऐसे कंडीशन में पेशेंट मेडिकेशन का सहारा लेते हैं, ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी भी दवाइयां चलाई जाती हैं जो शुगर की दवाइयां होती हैं, शुगर के पेशेंट्स में दी जाती हैं, क्योंकि शुगर भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और उसी मेटाबॉलिज्म को, फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने के लिए, डिपॉजिटेड फैट जो है आपके बॉडी में, जो जमा चर्बी है उसको गलाने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ चलाई जाती हैं जो कि शुगर की होती हैं। फिर मरीज उसको गूगल करके फिर चौंक जाता है कि हमको डॉक्टर साहब ने जो है शुगर की दवा क्यों चला दी, हम शुगर के पेशेंट थोड़ी हैं। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा करना पड़ता है।
1: ओके वेल हमारे धर्मेंद्र मोहन जी पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक फैट अधिकतर बैठने वालों को होता है, ये देखा गया है। जी हाँ, अब ये तो होता है और इसके पीछे का रीज़न होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है।
2: बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है और वो फैट धीरे धीरे हमारी बॉडी, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो जमा करने लगते हैं, स्टोर करने लगते हैं, तो स्टोर करने के बाद वो फैट बढ़ जाता है बॉडी में।
1: अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं वो खाना भी ठीक लेते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका फैट डिपॉजिट होता रहता है और वो हमेशा चेयर पे बैठे रहते हैं, थके भी रहते हैं। घर जाने के बाद 9 to 5 अगर आप बैठे ही हो तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आप जिम में जाकर अब बड़े बड़े डंबल्स उठाओ। तो उनके लिए जैसा कि मेरा ख्याल है कि अगर आप बीच बीच में उठकर 5 मिनट 2 मिनट की वॉक भी ले लेते हैं या हल्का फुल्का स्ट्रेच भी ले लेते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म वो ठीक तरीके से काम करता है।
2: जी, और इनको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसे लोग जो
1: ओके, हमारे पास सविता जी का कॉल आ रहा है। हेलो
3: हेलो हेलो,
1: हाँ जी, कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, बहुत ही ठीक हूँ। मैं डॉक्टर शाह से बात करना चाहती हूँ।
1: जी बेशक, वो आपको सुन रहे हैं।
2: जी सविता जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
3: जी मैं बहुत ही ठीक हूँ, पिछले साल से इस साल मैं बहुत ठीक हूँ, ताकि मेरा जो जो फैटी लिवर था वो सब, मुझे लगता है कि मुझे पिछले साल मेरे को बहुत ही दिक्कत होता था ऐसे ही गर्मी में। मैं अगर मैं दो तीन बाल्टी अगर मैं हैंडपंप चला लेती थी तो मेरे को लगता था कि 10-12 बाल्टी मैंने पानी भरी। जैसे कि रोटी बेलने बैठी थी, दो रोटी बेलने पे लगता था कि कितना सारा काम कर लिया,
2: जल्दी थकान लगने जाती है। बिल्कुल,
3: वो सब अभी मैं बिल्कुल सही तरीके से हूँ। और मुझे सवाल पूछना था कि चावल में एक बार खाऊं कि दो बार खा सकती हूँ?
2: ठीक है सविता जी, वैसे आप कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है और मुझे लगता है आप अंडरवेट ही हैं, तो आपके लिए चावल आप खा सकते हैं, बट चावल बहुत ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में चावल खाना ठीक नहीं है। तो आप रोटी खा करके या मतलब दूसरे अनाजों का सेवन करके और फिर थोड़ा चावल खा सकते हैं, आप 2 टाइम भी खा सकते हैं।
3: अच्छा, शुक्रिया।
2: जी, और यदि आप चावल खा रहे हैं और दाल वगैरह के साथ खा रहे हैं तो दाल की मात्रा भरपूर रखें उन चीज़ों में, तो आप वैसे चावल खा सकते हैं 2 बार।
3: अच्छा,
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और इसी के साथ हम वापस अपनी चर्चा पे आते हैं। चर्चा हमारी,
1: चावल का डर बहुत बड़ा डर होता है।
2: जी बिल्कुल, चावल का डर सबसे पहले क्या होता है ना कि वेट लॉस या मतलब मोटापा ऐसी समस्याओं में सबसे पहला जो इल्ज़ाम जाता है
1: वो बेचारे चावल,
2: वो चावल पे जाता है, तो इसीलिए ऐसा होता है।
1: एंड पता है आपको, एक टाइम था जब मेरा वेट भी अच्छा खासा था, क्योंकि आपको भी पता है टीनेज ईयर में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, उसमें आपका वेट गेन हो जाता है।
2: जी,
1: एंड उस दौरान मुझे भी जब कोई देखता था या फिर जो मेनली हमारे आसपास की आंटियां देखती थी, वो कहती थी हमेशा बेटा चावल छोड़ दो। और मेरा था कि मुझे चावल बहुत पसंद है एंड मैं चावल के बिना रह सकती, बिकॉज आपको भी पता होगा इस एरिया के लोग चावल बहुत खाते हैं।
2: जी,
1: तो हमें चावल का शौक बहुत ज्यादा है और हम हमेशा अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं। अगर मैं रोटी खा भी लूँ तो लगता है यार कुछ खाया नहीं है।
2: जी,
1: इसके बाद भी तो मैंने शर्त लगाई थी कि मैं चावल भी नहीं छोड़ूंगी, वेट लॉस करके भी दिखाऊंगी, और ये आपके लिए चैलेंज है।
2: उन्होंने
1: कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ऐसा करके दिखाओ। और इसके बाद आज जब वो मिलती हैं तो हमसे पूछती हैं बेटा आपकी डाइट क्या थी, हमें कहते चावल।
2: बिल्कुल, और मैं यही जैसा कि हमारे इस चर्चा का विषय भी है, तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ प्रॉब्लम फैट इनटेक की नहीं होती है जो आपकी बॉडी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझिए, जैसे वो लोग जो हार्ड वर्क करते हैं
1: जी,
2: जो लेबर वर्क करते हैं, जिनको फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करना होता है, अब अगर वो चाहें कि वो चावल आलू और मतलब जितने भी फैट के सोर्सेज हैं उनको अगर वो कट डाउन कर दें और वो चाहें कि उसके बेसिस पे वो अपने सारी दिनचर्या जो सारा दिन वो फिज़िकल वर्क जो मतलब गंभीर शारीरिक वर्क करते हैं अगर वो कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी में कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा है, ज़्यादा काम करने की वजह से ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है और उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए आपको चावल आलू और ऐसी चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा
1: जी। फिलहाल के लिए आज जब राइस की इतनी बात चल रही है तो मुझे लग रहा है कि अब एक नया ट्रेंड आया है कि जब भी हम चीज़ों को खाएं तो मल्टीग्रेन खाएं, आटा मल्टीग्रेन, चावल मल्टीग्रेन
2: जी,
1: एंड उस चावल मल्टीग्रेन को बनाने के लिए लोग उसमें काला ब्लैक राइस आता है, रेड राइस आता है, उसको भी शामिल कर रहे हैं, प्लस लोग अपने स्टेपल फूड को निकाल के मिलेट्स ज्वाइन कर रहे हैं
2: जी,
1: एंड मिलेट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट में कम होते हैं, उनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी थोड़ा कम ही होता है बाकी चीज़ों से
2: जी,
1: बट उसको खाने के बाद भी वो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? यानी कि मतलब मिलेट्स जो हमारे हैं वो कभी कभी तो ठीक होते हैं, उन्हें हम साइड में ऐसा रख सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, जैसे बैकबोन होते हैं हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, बट अगर हम सोचें सिर्फ बैकबोन ही पूरी बॉडी में काम करेगा और दिमाग को निकाल के ही साइड में रख दें तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है। इसीलिए आजकल जो मिलेट, बाजरा और जौ, न जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं, किनुआ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है
2: जी,
1: जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं गेहूं चावल और इन सब चीज़ों को हटा करके, क्या ये सेफ है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा, आप अपना स्टेपल फूड नहीं हटा सकते ना, वो हर किसी को डाइजेस्ट होते हैं
2: जी। देखिए जो बात की जाती है मिलेट्स की, ठीक है, और ऐसे जो दूसरे मोटे अनाज हैं, देखिए हमको समझने की आवश्यकता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जैसे हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम डाइल्यूटेड यूज़ करते हैं। डाइल्यूटेड का मतलब ये हो गया कि हम रॉ मात्रा में उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो पैरासीटामोल जो टैबलेट है, पैरासीटामोल जो ड्रग होता है, जो दवा होती है, वो 650 mg ही होती है, बट अगर आप टैबलेट का वेट करेंगे तो वो टैबलेट मुझे लगता है 4-5 ग्राम की होती है। तो हम सीधे पैरासीटामोल का उतना छोटा सा वो डोज नहीं दे सकते, तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब चीज़ों में मिक्स करते हैं। जो मेलेट्स हैं वो इसलिए बने हैं कि हम अपने जो रेगुलर जो अनाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उनके साथ उनका सेवन करें, ना कि हम रॉ सिर्फ उन्हीं का सेवन करें। तो जब आप अपने जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनके साथ, अब जैसे जो मल्टीग्रेन उसका जो सिस्टम है, मल्टीग्रेन अनाज का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें मतलब आपका जो बेस होगा वो गेहूं ही होगा, बट उस गेहूं में बाजरा हो गया, जौ हो गया, केनुआ हो गया, या और भी जो दूसरे ऐसे अनाज हैं,
1: समक, फॉक्सटेल, जो भी आप चाहते
2: जी, वो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट इनकी मात्रा आप ऐसे समझिए कि जैसे 50% जो अमाउंट हो वो गेहूं का हो, बाकी अगर इसके अलावा 5 इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं तो 10-10% वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। अब अगर आप सिर्फ रॉ मिलेट्स को ही लेकर के आप खाना शुरू कर देंगे तो देखिए वो चूंकि मोटा अनाज, मतलब सिर्फ साइज में मोटा नहीं होता है, वो अपनी आप में उसकी बनावट भी मोटी होती है और वो इतना सुगमता से सरलता से डाइजेस्ट नहीं कर सकती आपकी बॉडी।
1: और अगर आपको सेंसिटिव गट है, यानी कि आपको कोई चीज़ अच्छे से नहीं पचती है, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको और ज़्यादा परेशान करेगा।
2: बिल्कुल। अब जैसे देखिए कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जो तने होते हैं, जो प्लास्टिक जो वुडन का जो पोर्शन होता है, वो एक तरह का प्लांट सेल ही होता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन उसको हम खा करके पचा नहीं सकते हैं। लेकिन जो दीमक होते हैं वो सोचिए वही प्रोटीन खा करके और सिर्फ उसी के दम पे जीवित रहते हैं, तो उनके गट में इतनी ज़्यादा मतलब क्षमता होती है कि वो प्लांट प्रोटीन को, जो एकदम वुडन लकड़ी है, उसको भी खा करके वो पचाने में सक्षम होते हैं।
1: ओके, और हमारे एक लिसनर आपसे जानना चाहते हैं कि मोटे लोग जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझाइए।
2: बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेक्निकल प्रश्न पूछा है इन्होंने, शायद धर्मेंद्र मोहन
1: जी, जो मैं आवाज़ विकास से सुन
2: जी, धर्मेंद्र मोहन जी का ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप जितने मोटे होते हैं आपके बॉडी में नसों की सप्लाई उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। नसों की सप्लाई इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हर हिस्से को ब्लड को डिलीवर करना होता है, इसीलिए मोटे लोग हार्ट के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट पे नॉर्मल पेशेंट के अपेक्षाकृत ज़्यादा लोड पड़ता है, उनके हार्ट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये एक फैक्टर आप समझिए। दूसरा फैक्टर ये है कि जो मोटे लोग होते हैं उनके बॉडी में चूंकि वेट फैट और मांस ज़्यादा होता है तो उन नसों को दबाता भी ज़्यादा है, तो उनकी नसों में हार्ट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है ब्लड को प्रेशर से पहुँचाने में, ठीक है। तो हार्ट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। अब हार्ट को अगर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है तो फिर हार्ट को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और आपके बॉडी को भी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस ज़्यादा ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए आपके जो आपका जो डायफ्राम होता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है ताकि आपका फेफड़ा ज़्यादा ज़्यादा हवा को अंदर ले सके, ज़्यादा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। तो जब वो सीढ़ियाँ चलते हैं या चढ़ते हैं तो चूंकि उनके हार्ट को मतलब डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक गाड़ी है जिसको जिस पे आपने 50 किलो का लोड रखा है खींचने के लिए, उसके इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, या फिर आपकी वो गाड़ी पे एक कुंटल का यानी 100 किलो का अगर आप लोड डाल देते हैं तो उसको खींचने में इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है। ठीक इसी तरह का लोड हमारे हार्ट पे भी पड़ता है। तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनके हार्ट को डबल मेहनत करनी पड़ती है ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए। वो ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करने के साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करके बॉडी के हर हिस्से तक डिलीवर किया जा सके। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा लंग्स मतलब जल्दी जल्दी और तेज़ी से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से सांस अंदर बाहर खींचते हैं और छोड़ते हैं। इसके वजह से ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है कि जब भी आप मोटे लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या लंबे समय तक चढ़ते हैं या भारी काम करते हैं तो उनकी सांस जल्दी फूलने लग जाती है।
1: अच्छा सर, जब मैं अभी कुछ टाइम पहले तक यानी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल होता था कि जो मोटे लोग होते हैं जिनका फैट बढ़ जाता है क्या उनकी हड्डियाँ भी बढ़ जाती हैं? ऐसा मैं सोचती थी, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा होता था कि अगर मैं एक्सरे करूं तो अभी इनकी बॉडी के अंदर इनकी हड्डी दिखेगी एकदम पतली सी जिस पर बहुत ज़्यादा लोड होगा फैट का, या फिर उनकी हड्डियाँ भी उनके फैट की इतने बड़ी हो जाती होंगी?
2: देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है एक 2-4% का, 2-4 भी ज़्यादा हो गया, 1-2% का थोड़ा सा आपको मतलब डिफरेंस हो सकता है, बट हड्डियों का साइज केवल मतलब वो एज तक जब तक वो
1: मतलब वो सिर्फ लंबाई में बढ़ती हैं और वैसे नहीं बढ़ती हैं। और मेरा ख्याल ये भी था कि जिनका फैट ज़्यादा होता है उनके जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से हॉलो होती हैं, वो डेंस नहीं होती हैं।
2: देखिए, वैसे मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने जब तक उसका ग्रोथ हुआ है, बॉडी का फिजिकल ग्रोथ हुआ है, अगर उस टाइम तक उसने कैल्शियम और ये चीज़ें भरपूर ली हैं तो उसके बोन्स का डेवलपमेंट तो अच्छा रहेगा। बट अगर वो फैट का कंटेन ज़्यादा करने लगे, फैट इनटेक ज़्यादा करने लगे तो फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फैट बढ़ने की वजह से वो हॉलो ज़्यादा नहीं होगा, बट अगर फैट बढ़ने के साथ साथ वो विटामिन डी का डेफिशिएंट हो जाए, कैल्शियम का, जैसे जो हमारी बोन्स होती हैं ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है
1: जी,
2: ठीक है, मतलब वो भी ऐसा होता है कि जो फॉर्मेशन भी हो सकता है, डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो मतलब जैसे जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें हड्डियों के बीच में बहुत बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं और धीरे धीरे जो हड्डियाँ होती हैं वो बेंड होने लगती हैं। ऐसे कुछ लोगों का पैर में आपने देखा होगा कि वो पैर ऐसे मतलब बाहर की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे गोलाई में
1: जी।
2: तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या है, तो वो हड्डियाँ धीरे धीरे बेंड होने लग जाती हैं। तो अगर वो बाद में कैल्शियम का डेफिशियंट हो जाए, विटामिन D3 का डेफिशियंट हो जाए तो उसकी हड्डियाँ धीरे धीरे हॉलो हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, ठोस उतनी नहीं रह सकती हैं। बट अगर वो कैल्शियम, विटामिन डी, इन सभी चीज़ों का डेफिशिएंट नहीं है तो हड्डियाँ उसकी नॉर्मल लोगों के जैसा रहेंगी।
1: ऑल राइट, फिलहाल हमारे साथ नीना जी जुड़ी हुई थी जो लिख रही है नमस्कार मैम जी, नमस्कार आपको भी। कमल नयन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं नमस्ते डॉक्टर साहब, राहुल सर को भी नमस्कार और मुझे भी नमस्कार, थैंक यू सो मच, एंड आपको भी नमस्कार
2: जी। नमस्कार सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल नयन जी और नीनू जी का भी।
1: सविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं शुभ दोपहरिया राहुल सर, उन्नति मैम, शुभ दोपहरिया, शुभ संध्या
2: जी, बिल्कुल
1: आपका भी स्वागत करते हैं हम क्लिनिक ज्ञान असली में। वेल क्लिनिक ज्ञान असली एक मुझे मेरी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने की एक बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है.
2: बिल्कुल, और मैं इस बात को कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत उन्नति मैम करती हैं, ऐसे तमाम तरह के टॉपिक्स को लाना, उन पे रिसर्च करना, उन पे जो समाज में जो भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी, मुझे लगता है बहुत सारा काम करती हैं उन्नति मैम इसके लिए. और कहीं ना कहीं इनका जो क्यूरियस माइंड है, मतलब चीज़ों को लेकर के जानने की जो क्यूरियोसिटी है, वो भी इस शो के सक्सेस का कुछ ना कुछ हिस्सेदार तो ज़रूर है.
1: और फिलहाल के लिए, क्योंकि जनरेशन बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, आपका खान पान भी उतनी ही तेज़ी से बदल रहा है. फिर चाहे आप सब्जियों की बात कर ले, या बात कर ले आप अपने अनाज की, या फिर पैकेट वाले फूड की. जो आपके मम्मी पापा के ज़माने तक था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है. तो इस वक्त आपको सही जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
2: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हमारे जैसे कुछ लोग जो एक ऐसी आपको, मतलब आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो मतलब उस डिपार्टमेंट से भी नहीं बिलोंग करते.
1: अब डर का बिजनेस हो गया है कि अगर आप ये खाओगे तो ये हो जाएगा, वो खाओगे तो वो.
2: बिल्कुल बिल्कुल, और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कि लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो बात ऑथेंटिक है नहीं है कुछ भी नहीं पता, बट वो बोल रहे हैं. इन चीज़ों से लोग बचें और ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के, ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेस की द्वारा दी गई जानकारियों पे ही भरोसा करें और इन्हीं चीज़ों पे ही कोई निर्णय आप लें.
1: ऑल राइट, फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया कि वक्त है आपसे विदा लेने का. जाने से पहले मेरा लिसनर से एक सवाल है कि आप बता सकते हैं कि आपके पूरे शरीर की सबसे नाजुक हड्डी कहाँ मौजूद है?
2: तो चलिए हमारे लिसनर्स के लिए कि ये सवाल हम ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि कोई लिसनर इसका सही जवाब देता है या नहीं.
1: और हम मिलेंगे आपसे लेकर के एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक अगले हफ्ते. फिर बात करेंगे उस टॉपिक के दौरान ट्रांस फैट की भी, जिसकी समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ट्रांस फैट क्यों आपके लिए ख़राब है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप किसी और की बातों में आकर के अपने शेड्यूल को ख़राब ना करें. फिलहाल इसी थॉट के साथ हम लेते हैं अब आपसे विदा. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आप सुन रहे 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपनी कोना शहर की धड़कन. बाय बाय, टेक केयर.

स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हरे राम हो, कमवा करत करत मर जाई थे, कितना काम हो जाते, जाई चटपटो बलाई नहा हमें, चटपटोक जाई ले आई हाल चाल, लाओ अम्मा चटनियों लिहा जाई, और बिटीवा कहीं सराहवेक नहीं आई, कतना घाम हुई गा दादा, अरे बाप मुड़वा जान पड़ते फाटी जाई।
2: राम राम काकी, राम, चाची।
1: राम राम बहनी राम, ये का तू सब दुसाला ओढ़ ओढ़ आई हो बहनी,
2: बहुत गर्मी है,
1: घमवा कतना तेज है, अब चलो चटपटो बलाइन नहा, सतुआ घोरे ही आज,
2: चलो चलो चलो
1: सतुआ पियक बलाइन नहा, चलो जल्दी जल्दी चलो बहनी चलो, देखा तू कतना तेज घाम होत है, गरम बहुत होला ये पानी वानी बहनी खूब पिया करो,
2: ग्लूकोन-डी वाला पानी।
1: आए
2: हां
1: ये का होते बहनी, ग्लूकोन-डी,
2: ग्लूकोन-डी
1: हैं, ग्लूकोन-डी,
2: ग्लूकोन-डी,
1: ग्लूकोन-डी। अच्छा है बहनी, पल्लवा खटखटाओ, चटपटो घर आए गवा, खटखटाओ
2: चाची,
3: चाची ओ चाची
2: बोलो,
1: वल्ली हुई है, सूती रहती मैं, सूती रहती, वो चटपटाओ।
4: अरे राम रे, लागत है दुलारी आई गई, अरे भाई धई लो, ईका छुपा दो, दुल्हन आवत है दुलारी, अब बस अब मांग ले हैं,
1: वो चटपटाओ,
4: आई थे आई थे, अरे आओ बहनी, आ बहनी लोग सब आई गए,
2: राम राम काकी,
3: राम राम काकी,
1: राम राम बहनी, राम राम, राम, राम।
4: जियत रहो बहनी, जियत रहो,
1: कहो सखी इतना देर काहे लगायो,
4: अब देखो तो कतना धूप और घमो है,
1: अरे घमो में तो
4: छता पर रहिन, छता पर,
1: छता पर रहू तो ये ठंडवा चलाए, छत चली गयो,
4: हां कमर वो ठंड रहा है, हस चलाए दिया रहा है,
1: अच्छा
4: हाँ, और कपड़ा पड़ा पसारा रहा है, वह उठावे गई रहा,
1: अच्छा, और तबे तवा ठीक है,
4: हां तबे तुआ तो ठीक है,
1: हां
4: इस समय,
1: हां अच्छा अच्छा, मनी घमावा से धूपों में जातू तो छतरी वतरी तान लीन करो,
4: अरे अब का चार जीना चढ़े का है, और कपड़वा उतार के ले आई, और छतरी लेके चली कि कपड़ा लेके चली,
1: हां यह पूरा कहा तू, और यह कुल मिली, देखो कालीज मां पढ़ाती ना कालीज मां, तो यह कुल बताई हमें कि ग्लूकोन-डी पिया करो, देखो
4: ग्लूकोन-डी ना ही होत है,
1: हां
4: नहीं ना कहो
1: ग्लूकोन तो कहू रहा बहनी, ग्लूकोन-डी
2: नहीं, ग्लूकोन-डी बोले रहे,
4: डी बोला जात है, ग्लूकोन-डी,
2: ग्लूकोन-डी,
4: हां यह कहा
2: ग्लूकोन-डी,
1: ग्लूकोन-डी,
4: ग्लू नहीं ग्लूकोन-डी,
1: ग्लूकोन-डी,
4: हां
2: ग्लूकोन-डी बोला जात है,
1: ग्लूकोन-डी, हंसत ही बहनी है,
2: चाची आप खराब कह दे थू नाम,
1: तब यह तू
4: ढंग से बता दो बहनी, ठीक से बता,
2: ग्लूकोन-डी,
1: ग्लूकोन-डी है ना,
4: ग्लू कहीं ना, ग्लू
2: एनर्जी ड्रिंक,
4: ग्लूकोन कहीं ना, ग्लू
1: ये कहनो कोनो ड्रिंक ड्रिंक कहती बहनी, हम लोग शराब आराम नहीं पीते, ड्रिंक
4: कहीं ना, ड्रिंक माने
2: शराब ना हो चाची,
1: हां
2: गर्मी से गर्मी में पिया जात है,
4: हाँ
2: चक्कर उक्कर ना आवत है,
4: ठंड हो जात है, जो शरीरिया होत है
1: गर्मी में पिए वाला ड्रिंक,
4: ड्रिंक का माने तो पिया पिया जाते है
1: ना,
2: हाँ, हाँ।
1: अच्छा तो वहाँ ये लोग पिए ही,
4: हाँ पिए चाहिए गर्मियम, पिए चाहिए
1: गर्मियम, पिए बहनी कहाँ मिली
4: गर्मियम, सुनो अब देखो ये सब शहरी चोचला कहा जाता है,
1: हाँ
4: ग्लू ग्लू का कहीं ना
1: वह ग्लू ग्लू
2: ग्लूकोन-डी,
1: ग्लूकोन-डी,
4: ये सब जो है शहरियम लोग पिया करते हैं, और हमरे गाँव में तो भाई सत्तू पी लो घोर के,
1: हाँ हमारे सबके वहाँ ग्लूकोन-डी,
4: गुड़ू का कहा जाता है, गुड़ का घोल लो,
1: गुड़ का घोल बहनी, रसा नवा बनाई लो,
4: रसा बना लो, बना बना लो, और नींबुआ गार के पी लो,
1: हाँ
4: ये सब हमरे यहाँ सब बढ़िया चला था, अब शहरिया तो हम ना ही जाने,
1: बहनी मैं तीन चार मेर के बताए तो जैसे एक बाजी पनवा बनाई लो,
4: हाँ पना तो इस समय खूब बना बनाई धई लो,
1: हाँ
4: और दिन भर में पी लो दो चार बार,
1: कस के बताऊ रहा एक बाजी फिर से तो दोहराई दियो,
4: ऐसे हो तो कहाँ जलत है तोरे यहाँ गैसवा जलत है,
5: हाँ, गैसवा बरत है, हाँ।
4: तो गैसवा पर मुआ छील छाल के धाई दो तनी
5: कच्चा,
4: पानी ना दो
5: कच्चा मुआ,
4: हाँ,
5: हाँ, हाँ।
4: पानी ना दो माँ,
5: हाँ।
4: वो खाओ जाए है बढ़िया से
5: कुकुर में धाई दे,
4: कुकुर में धाई दे,
5: अच्छा
4: फिर वो बढ़िया उबल जाए,
5: हाँ।
4: और उबल जाए जब जरा ठंड हुई जाए,
5: हाँ।
4: तो उसका खूब बढ़िया मसाल लो, मीज डालो,
5: हाँ।
4: पानी डाल दो,
5: अच्छा।
4: और पानी डाल के गुठुल गुठुल जो रुके है निकाल डालो,
5: हाँ।
4: और निकाल के वहाँ तनी धनिया और पुदीना,
5: हाँ।
4: एक चटनिया पीस लियो,
5: धनिया पुदीना,
4: हाँ। और जीरा जीरा ले लियो,
5: हाँ।
4: और धनिया ले लियो ऐसा वाला खड़ा वाला धनिया जो
5: सुखलका सुखलका,
4: हाँ
5: हाँ हाँ।
4: और उसका ले के,
5: हाँ। पीस डाली,
4: पीसो ना पहले उसका भून डालो तनिक,
5: धनिया ले ले जीरा ले ले,
4: हाँ।
5: और दोनों भूट डाली,
4: हाँ। तनिक सौंफ डाल लो,
5: तनिक सौंफ यो डाल लिया, हाँ।
4: फिर उसका पीस डालो खूब महीन,
5: हाँ।
4: महीन भूख लो,
5: हाँ।
4: सिला
5: फिर
4: और उसके बाद वह मत धनिया और पुदीना वो सब मिलाए डालो, और अगर तनी मीठ लागे मीठ पिए खो तो मिसरी है, मिसरी तो धरी रहते घर में ना,
5: है हमारे वो वाली मिसरी जो मन धगवा निकला,
4: धगवा वाली,
5: हाँ हाँ,
4: वहाँ को पीस के मिलाई,
5: वहीं पीस लियो,
4: हाँ।
5: और अमावा के पनियम घोर दो,
4: घोर दो सब बढ़िया घोर के,
5: हाँ।
4: खाई दो ठंडा मशीन तो तोरे है ये
5: फ्रिजिया, हाँ, फ्रिजिया है,
4: फ्रिजिया में धाई के उका पियो,
5: अच्छा।
4: एक को लू ना लगी लड़कवन का पियावा करो,
5: अच्छा अच्छा, हाँ। नीक लगी बहनी,
4: बहुत नीक
5: खट्टा रही, नमकीन और रही, मीठा और रही,
4: लगी
5: तोर लोग बहनी सुन ले कैसे बनावे,
4: गोल मिर्च डाल दे तनिक तनिक चरपरा हो जाए, गोल मिर्च डाल दे उमा,
5: अच्छा।
4: ये सब चीजें जो है पेट के लिए बहुत बढ़िया,
5: हाँ।
4: और लूक नहीं लगी,
5: हाँ। ये जो गर्मियाँ लगा थी,
4: ये जो चलत है इस समय लूक हुआ,
5: देखो देखो बहनी जेका देखो ते
4: बीमार है,
5: बीमारे है बहनी, घर से निकले थे बहरे गए बेहोश हो गए पर कई,
4: हम तो कहते यह खूब पानी पियो और पाना वाना बनाए बनाए के,
5: हाँ।
4: सब पियो घर में,
5: नींबुआ पियो,
4: नींबू गार के पी लो,
5: हाँ।
4: और ठीक ठाक रहो और करने की सुख रहो भाई,
5: हाँ। घबो तभी बचो,
4: और पनिया तो खूब पियो,
5: हाँ,
4: और ठंड पनिया बहनी ना पियो एकदम से, जैसे
5: अब
4: जाइयो घरे और निकाल के फ्रिजिया से ठंड पनिया पियो,
2: हाँ, चाची
4: नुकसान कर जाए बहनी,
2: पतर को देखो बीमारी तब तो ना ही आई,
4: हाँ, नुकसान कर जाए,
5: पतर का कहाँ ही बहनी पूछ भाई रहे,
2: पतर को अपने घरे ही
5: बेराम ही,
2: हाँ।
3: बीमार हो गई नहीं इस कहीं हम ना जा रहे,
5: बहुत बेरामो रहा थी पतर का,
4: अपना जो न हैंड पंप चलाए के पानी निकसी,
2: हाँ।
4: वह पानी पियो,
2: ठीक है चाची,
4: और धूप से जुड़ते जाए के ना पिए ठंड पानी, और ठंड पानी काहे पियो, हम तो
2: अच्छा
4: कहीं
2: लागत है चाची,
4: अच्छा तो लगबे करी लेकिन
5: बहुत ठंडा है, बहुत नुकसान है जान,
4: हैंड पंपवा से भी तो
5: पूरी
4: तरह से ठंड पानी,
5: हम तो माटी घड़ा ले आओ,
4: हाँ।
5: वो हमन पानी दे दो धोए के, पहले के लोगवा यही कुल कट रहे तब नीक राहत रहे, अब देखो जगह 72 बेरामी, अब 72
4: और सत्तू को घोर घोर के पियो,
5: है बहनी हमारे याद आएगा, चटपटा भी बताओ सत्तुआ कैसे घोर के पी, कौन चीज के सत्तू लाई, चना का,
4: हाँ चनवा, अरे घर में पीस डालो
5: सबसे अच्छा,
4: भुनाई लियो, भुनाई के पीस डालो घर में
5: खाली चना,
4: हाँ चना और तनिक उकर डाल दो, जो हम पुरान का सत्तू रखे हुई हो ना,
5: नहीं धरे है ना आज खत्म
4: खत्म होगा,
5: हाँ।
4: तना तो हम तुका दिया रहा, कौन मेर खाती हो,
5: खाई डाले हो का घोर घोर खाई डाले,
4: तो चलो अब हम पिसाई तो तुका दे,
5: तो अब बताओ का पीस ले, चनवा
4: भुनवा लो, भुनवा लो,
5: हाँ भरवम
4: भरवम भुनवाए के उका, हाँ। घरम पीस डालो,
5: हाँ।
4: मिसकिया तो है तोरे,
5: हाँ मिसकिया है,
4: मिसकी डाल के पीस डालो,
5: हाँ।
4: और उमा तनिक से जाओ भून डालो, वह पीस लो तनिक डालो,
5: अच्छा, हाँ।
4: और ज्यादा चना डालो,
5: चना ज्यादा हो जवा कम
4: जाओ,
5: अच्छा अच्छा।
4: अब जो नी पना बनोती है ना, यह हम सत्तू घोर दो, यह है पनवम
5: अमावा के पनवा में सत्तू डाल दी,
4: सत्तू डाल दो,
5: हाँ।
4: चम्मच भर डाल दो, बस उसका घोर दो, उसमें पी लो, बहुत ठंड रही पेट,
5: यह है कुल बहनी इसे भमा मैया ये जो है सबका बताई दो चटपटो,
4: हम तो बताए थे भाई कि सब जन जौन जौन सुनत हो सब, हाँ। जान ले के
3: सब ऐसे कर पाए,
4: हाँ।
3: पियत
4: रहो बहनी,
5: और का पिया जा सके,
2: हम लोग का सत्तुआ देबो आप,
4: हम पिसाई तो ले लियो बहनी, तो दान पूर्ण हो बहनी बिटियन का, देख चाहिए और का,
2: हमें दो इनका नदी
3: नाही काकी
4: हमरे हम दो अखी नाई करी थे हमरे लिए दोनों जनी बराबर
2: तब आपका पतरको देख परी फिर
4: तो पतरका हुई उन्हों के देते भूमा का हमें
3: पतरका थी हमें केले सत्तू खाई
4: हमरे कम नाई पिसावा जात है
5: ये जान लो पतरका पतरका जो जान पाइन तू सबे पाए हो तो यही है चटपटा उसे लड़का ही ले ले
4: हमरे को बाद ना छुड़ी है वो
5: हाँ और यही लाई ले कि ना ही चाची वो इतना देखियो रहा हमारे खड़तीन जब बांधत रहू गलगवा पीछे लागी गए
4: हम हो चाहे हम ना ही
5: काकी हम में दे ले आए बहनी पन्निया हेयर वर के ले आए लो यही दाओ यही हम में दे बांध के लेके गए
4: और यहाँ चटनियों बना लो ना गलकवा कहा जाता है।
5: अच्छा गलकवा कैसे बनावा
4: जाता है? गलकवा बहुत नीक लागा था इस समय तो हमें बहुत नीक लागा था हम बस बिस्नौटी रोटी बनाए के और एक संग गलका संग खाई थे
5: कस के बनाई वहाँ बताओ गलकवा
4: गलका बनावे का है
5: बताओ
4: छील डालो
5: हाँ
4: हाँ और तनिक उमा कलौंजी ले लो सौंफ ले लो जीरा ले लो
5: हाँ
4: तड़का डाल के
5: तेलवम
4: तेलवम
5: हाँ
4: तनिक भात तेल लियो
5: हाँ
4: ज्यादा नहीं
5: हाँ
4: और उसका तनिक कलहर डाल
5: अमवक
4: अमवक
5: हाँ
4: और बस उमा पानी डाल दो तनिक नमक डाल दो गुड़ बढ़िया डाल दो उमा
5: बस बनेगा
4: हाँ बल
5: तनिक खौल जाए
4: हाँ वह जो मसाला बताया है ना
5: हाँ हाँ
4: जीरा और धनिया भुना वाला
5: हाँ हाँ हाँ
4: और कड़ुआ करे खोए तनिक तीत करे खोए तो मर्च तनिक ना दो
5: मर्चा
4: ज्यादा नहीं हाँ। काली मिर्चिया गोल मिर्चिया ना दो
5: हाँ।
4: बहुत बढ़िया लागत है लड़कों सब बड़े प्रेम से खाई
5: अब देखो बहनी कहता ना चीज बताएं चटपटो के एक बड़ा ज्ञान है देखो नींबुआ पानी बताएं हाँ नींबुआ पानी बताएं बहनी गर्मी से बचे के लिए हमारे जो श्रोतागण है वो सुन ले कि गर्मिया से बचे के लिए हमारे चटपटो कतना जाना थी कि बताएं कि सत्तू बना लो और सतुआ बनावे बताए दी इनकी बहनी चना भूज लो और जौ भूज लो उका पीस लो
4: बढ़िया रहा था
5: हाँ और पना बताई
4: हाँ बजरिया में जाओ वहाँ पैकेट बंद मिलत वो ना ठीक होत है
5: और पना बताए दी देखो गर्मी से बचे के लिए पना बताई अब आम एक पना बनाए लो ओका बने पियो
4: और हैंड पंप पानी पियो
5: हैंड पंप पानी पियो बहुत हो तो मटका खरीद लो गरम पानी
4: खरीद लो
2: मटका अब हम लोग हैंड पंप का पानी पियो फ्रिज के ना
4: पानी पियो बहनी
5: बहनी फ्रिज के मशीन के पानी बहुत नुकसान
4: बहुत नुकसान करत है
5: हाँ और गर्मी से बचे के लिए यह कुल करेक परत है नींबुआ धरे रहो नींबुआ गार पानी पी लो कल जब जाती हूँ
3: तब हाँ काकी जाए
4: और कोल्ड ड्रिंकिया छोड़ दो जो कोल्ड ड्रिंकिया बताए रहा हूँ
3: अब ना
4: ये सब छोड़ दो कोल्ड ड्रिंक ये सब बहुत बेकार इसमें का होता है एक बार हम सुनी रहा
5: हाँ।
4: रेडियो पर
5: हाँ।
4: तो कहा रहा कि इमा सोडा ना देते है और चिनिया और वहाँ घोल बना देते है वहाँ कुछ होता नहीं है
5: तब बहनी ये कुल ना फिर देखो सब हम देखे था घमोम खड़ा था और लड़के कोल्ड ड्रिंक वहाँ ठंड गन गट गट गट गट
4: बहनी
5: कुल पी ले तो यही बेरामी हो जाती
4: ना पियो बहनी तू लोग ना पियो
5: हाँ
4: तोरा सब पिया था तो काफी है
5: देखो तोरा सब

0: पेसर, बिलेड
1: पेसर बोला जाता
2: है। अरे राहिल जो तुम ना बोलो बिलेड पेसर, बिलेड पेसर ना बीपी कहा जाता है अब।
0: बीपी,
1: बीपी
2: अब बिलेड पेसर ना ही कहते कोई।
0: अच्छा बिलेड, बिलेड
1: बीपी कहते हो बस, बिलेड पेसर होगा।
0: तो ऐसे हमें और कोई चीज बता दो, हम बोल ले जल्दी जल्दी
2: जल्दी से
0: छोट छोट कह लो
2: यहाँ बीपी कहा करो।
0: बीपी तो देखो अब सब क्या कहेगी, बीपी कम होगा बा कोई बढ़ेगा है ना। तो ये जब पीबो ड्रिंक किया जो बताई नहीं चटपटा नींबू वाला तो तुम्हारे बीपी ठीक रही है ना, तब व्यायाम ना होबो। कहा तू चक्कर आवे लागत
1: बतावो तो यह बतावो छन डॉक्टर लो।
0: हाँ
2: हाँ यह बतावो
0: डॉक्टर भाई। हाँ पूरा ही कहा तू बनी बतिया तो पूरा ही।
1: तो इस समय जौन है सुनवा बहुत महंगा हुई गा है।
0: अरे सुनवा
1: और तो सुना मोदी कहा, अब मोदी के ऊपर तो हमें बड़ा गुस्सा लागत है।
0: हाँ
1: कहे से वो तो सास हुई गए ससुर हुई गए वह।
0: हाँ।
1: कोई चाहे सास मान ले उनका चाहे ससुर, वो तो राष्ट्रीय सास ससुर की तरह हुई गए।
0: हाँ।
1: जानो कहे
0: कहे
1: कहा था कि कौनो शादी विवाह पड़े कौनो कारी करें पड़े तो सुनवा ना खरीदो,
0: ना खरीदो। हाँ मऊ दे
1: कही ना है। अब बताओ सासे का जैसे हम पहनित रहा हमारा बूढ़ा रहा है।
0: हाँ।
1: कहा कि खियाई जई है तोहार सोना टूट जई है कर निकाल के धै दो, वहाँ मोदियो कहा था बैंक में धई दे अपन सोना। अब बताओ बैंक में धई दे हमरे तो लगे तो है ये नहीं, अब बैंक में धई दे तो पहने का बहनी
0: बहनी शौक मारे पहना जाता।
1: और तो और सुनाओ तो हाँ। बताई कहा था कि तेल कम खाओ
0: तेल कम खाओ
1: तेल कहा था तेलवा कम खाओ तो अब देख लो जो तेरे भैया हो।
0: हाँ
1: तो उन्हें तो रोज बरिया चाहिए, लौके की बरिया बनाई दो, कटहर की बरिया बनाई दो, कपनिया पकाई दी का
0: नहीं हो तेलवा तो लगभग करी बहनी बिना तेल कौन मेरे के।
1: हाँ
0: ऐसे बेटा बताओ दनी हमें चीज और बता दो।
1: हाँ
0: जब हमारे याद
1: तो वही सास हुई गए मोदी जी का, आप सास कहा करो उनका जो है देश की सास मान लो।
0: हाँ बहुबे करें कहा जाए
1: चाहे ससुर मान लो।
0: हाँ कुछ मान
1: ऐसे ससुर जो है टांग अड़ावा करत रहे हैं।
0: हाँ।
1: ऐसे मोदी टांग अड़ावत हैं।
0: सही कछु मान लो कछु मान लो तो ये बताओ तनी हमें।
1: अच्छा सुनो कब्बो कब्बो तो हम सोचित है और रेडियो आप सुना करी थे तो उनकी बतिया हमको नीको लागत थी कि ये सब दिखावा होते हो सोना उना पहन के जाओ शादी ब्याह खड़े
0: तो
1: हो
0: तो फुरे है।
1: हाँ तो ये सब तो खैर दिखावा है ये।
0: हाँ, दिखावा
1: है। और ऐसे में कहा होता है अमीरी गरीबी की जो खाई होता है वो और गहरी हुई जात है।
0: हाँ।
1: कहो कैसे हमरे लगे है तो हम पहन के चमक के खड़े हुई गए।
0: हाँ, हाँ,
1: और तुहरे लगे नाई है तो तू एकदम लगी है कि अपने का वो समझे लगे
0: हाँ,
1: होगी।
0: हाँ,
1: मन में लागे लगा था कि हमरे लगे नाई है तो मोदी कहा ये बात ठीक है। और कहा था कि तेलवा थोड़ा कम इस्तेमाल करो तो तुम्हार सेहतिया ठीक रही।
0: वहाँ बतिया ठीक
1: वहाँ ठीक है अब लेकिन घर वाले तो ना ही मानत है ना,
0: उनका तो कटहर बरिया चाहिए
1: तो हाँ कहा था हमरे लिए कटहर अब इस समय रोजे कहा था कि कटहरवा जब चला जाए तब बनाइयो बरिया।
0: कसके बनेबो कसके बनेबो बरिया हमें कटहर एक बरिया बताओ पहले।
1: अरे कटहर की बरिया कौन बहुत बड़ी
0: कौन मैं बताओ सब सुना थे सुनी ले
1: तू खुद सीखियो बहनी।
3: हाँ चाची
1: अब तो ठीक है अब बहुत बड़ा वाला कटहर ना लियो छोट मझलका लियो
3: जिसमें
1: बहुत ज्यादा
0: बीज ना हो।
1: हाँ बीज ना वह कटहर लेके उसका बढ़िया से धो धा के काट लियो ऐसे बस पीस पीस बना लियो पातर पातर का हल्का उसे डालो।
3: हाँ।
1: ज्यादा ना उसे
3: काकी लेकिन हम तो कटहरवे ना काट पाई हथवे कट जाए मार
1: तो कोई बड़े से कटवाए लियो बहनी कोई बड़ा हो तो काट ही दे तू लोग ना काटो बे बच्चा हो कट जाए सही कहा थे।
3: हाँ चाची बहुत टाइट होता है।
1: हाँ कटहर में ना ताजा ले हो तो ना ही होता इतना लगी जैसे बसियाए जाते है ना।
3: हाँ।
1: तब ज्यादा जांगर लागत है
3: हम लोग मम्मी से कटवा।
1: हाँ कटवाई लियो और का ज्यादा ना उसे हल्का हल्का उसे लियो उसे के तनिक बेसन ले लियो और चाउर का आटा है कि नहीं है।
3: हाँ चाची
1: तो वह मेरा ही लियो दोनों तनी बेसन,
0: बेसन
1: और चाउर का आटा और उमा लहसुन धनिया मिर्चा अदरक सब
0: हाँ।
1: मतलब पीस लियो मसाला पीस के
0: हाँ।
1: और वही बेसन और चाउर के आटे मिला लियो
0: हाँ।
1: और एक गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लियो
0: हाँ।
1: अब तेल तो डायरेक्ट पर ही मोदी चाहे जितना

0: मन तो परवा करी
1: तेलवा पड़ी
0: हां
1: ओ मा बस मिलाए मिलाए करके
2: बस
1: छौ मा डाल दे तेल मा
0: कढ़लवा उबाल ले
1: ता उबाले तो परी है और का
0: तो ठिकाने से उबाल ले कितनी हल्की
1: ना ही हलक हलक उबालो ज्यादा ना
2: बस भाप लागे वाला है
1: हां बस भाप लाग जाए एक बार खौल जाए पनिया ढंग से अब बस निकाल लो छान के धई ले का
0: अच्छा
1: अब बहुत नीक बना थे कुरकुरी कुरकुरी वह बरिया
0: अच्छा
1: हां और के ऊपर तनिक फिर वो मसाला एक होता है वह धनिया जीरो जीरा लेके और मिर्चा मसाला लेके पीस डालो महीन महीन
0: हाँ।
1: और उसके ऊपर फिर भुरक देते हैं
2: आज चाची सब सोच के नहीं कि हम सब सीख ले बाजे
0: सीख ले तो बनाई पे बनी इससे बस सीजनवा है ना
1: हाँ खाए लोग खाए चाहिए देखो ये जो
2: अच्छा चाची आप दोनों जनी तो सखी हो तो आपका ज्यादा कैसे आवत है इनका कम कैसे आवत
1: ये हमारे घरे खात रही बहनी बनौते नहीं कहा थी क्या करी बनाई
0: अब ए देखो ये बनावा थी तो हमें बलावा थी तो जब हम बना बनावा पाई जाई थे खाए तो हम बनावे ना ये जाई थे किनारे और कैसे बना थे हम यहाँ नहीं जान पाई
1: तो, तो कही थी हमारे घर खाई
0: तो ये बनावा थी तो
1: इनके पाड़े जी का भिजवाई दे थे
0: हम खाई थे और बांध ले जाई थे
1: तो खा
0: तो ही ये जब बनावा थी तब बलाई ले थी तो हम का करे बनाई बताओ
2: अरे चाची तो सीख तो लिया करो
0: अरे तब का करे मुरखैली पाली बहनी
1: सीख ले सीखे को तो हमें बुला लेती अपने
0: जब हमका अच्छा। बना दो तो इनका बुला लेती कि आओ तनी सखी बनवाई दो बस ये बैठ जाती
1: बढ़िया दोस्ती निखन निभावती दोनों
0: हां बस ये बतावा करती अब चटपटो दुलारो ई करो अभी करो ई करो
1: बहुत बचपने के हमार लोगन के दोस्त
2: हां सखी जो रह रहा काकी
0: हां सखी जो बहनी सखी जो वरिया मौनी कुल लइके ओहन कंघी सीसा चिमटी बिंदी
1: हमें दिन हम इनका
0: धाई के धान गेहूं कुल धाई के इनका तब सखी जुरा ने दुपट्टा धाई दिया ना वही में हां याद है
1: सब याद है काहे ना याद
0: है ललका दुपट्टा
1: ये बताओ बचपन की दोस्ती कौनो भूलत है
2: कोई ना भूलत है
0: तब
1: आज तक देखो किस्मतिया की जोरदार हम बैठी हैं यहो की नो किस्मत बहुत जोरदार एक के गांव में बैठे
0: या होएगा
2: अब हमेशा निभाओ दोस्ती
0: अब अपन हम सब
1: बढ़िया से रही थे बहन बहन की तरह
0: ऐसे बहनी सबका रहा चाहिए है कि नहीं
1: और क्या हमारे कोनो दुख पड़ा ही दौरी चली आई इनके कोनो दुख पड़ा हम दौरी चली गई
0: चार दिन की जिंदगी खाए
2: खातिर ज्यादा आवत ही आपके
0: यहाँ ये अब भाई लाका मारे तू है अब भाई मारे तू है
1: खाए पिए ये इसे कोनो घटत नहीं बहनी
2: और का चाची
1: इसे बढ़ाती है
0: या हमें बहुत बनाए बनाए खवावती जानी की नहीं जानी हूँ
2: यही तो कही
1: अब इनके एक आदत हमें ना नीक लागत है कहो का ये हमारे साथ जब पार्टी जाती तो नियत छोड़ दे बस वहाँ हमें बुरा लगत कहिए कि ये रसगुल्ला है तनी बांध ले चलो है
0: तो बहनी सुनी लियो हमारे मना खाते बांध ले लड़के वो खा ले है
1: अब बजिंदर का ले आओ भाई संगे लिए रहो अब बजिंदरवा के लिए तू रसगुल्ला बांधो अपन साड़ी बर्बाद लियो
0: ना वो है भाई सर ना
2: अब कहा चाची तू ही का सवे देखा तो ही तक तो
0: कोई नहीं देखते बहनी चुराए चुराए बांधे थे
1: ना ही सुनो तो बहनी अब पन्नी पन्ना हो तो चलो भाई चुराए धई लियो
0: नहीं तो अब पन्निया ए जब तक की गंत पनिया नहीं खोसे रहन
1: का एक बार एक दो बार जो सड़िया बांधे उसका का
0: हां गुरुवा दौराई सा वो तो हमरे चेत है एक दिवार जी बहनी बांध लाए ना चरवा में है हमें कुकुर दौराई
1: तो यहां इनका समझाई थी कि ये सब लालच नहीं ठीक है
2: और
1: बेइज्जती खा लो जी भर के खा लो हुआ हां कोनो कमी नहीं रहा था लेकिन खा लो बांध लियो
0: सुन लो है बनी अंशु का हां बतिया सुन लो एक दाई हम गए नहीं चटपटों के साथ है तो हम एक दिन का देखें कि वो चार बहनी पन्नी लेके आई रहा चार करिया करिया हाँ वो एक जगह बहनी वो रसगुल्लावा बांधीन एक जगह कचौड़िया धई लीहीन और हम खड़ी ताकि उनका
2: वही सब अपनो करा थी बाप
0: कि हम चाहे हम तो मनो रसगुल्ला ही धरेन है ये कचौड़िया धरेन ओकरे बाद एक ठो पकौड़ी बन रहा वाह कम से कम पांच पन्नी रहा तो पांच सामान वे बांधे रहे
1: बहनी इस समय हम तो ये कही कि देखो शादी ब्याह का तो जोन चलत है चलते है
0: ना ही खाए बहनी ऐसा ही तो
1: खाए भर का ना ही है बहनी जाओ बस तनी बहुत खाए लो अब हम तो देखा एक जनी रहा अब वो बड़का बड़का तो प्लेट होता है ना पार्टी में वो उठाए प्लेट और प्लेट लेके उमा कतनी सब्जी बनत है उमा पार्टी में
2: हाँ चाची
1: और कतने तरह खाना बनत है सब तोहरे लिए ना ही बनत है
0: जितना बहनी खाए खोए उतना ही ले
1: लेकिन वही जाने कि ये सब हमरे लिए बना तो हमें सब धरे खाए तो भैया एक किनारे वही चाउर धई लिए डाली के ऊपर डाली, जतनी सब्जी रहा सब सब्जी डाली, फिर दही बड़ा रहा दो दही बड़ा धैली, और उसके बाद पहुंची तो दो तीन तरह का मिठाइयो था रहा, गाजर का वो का रहा
0: हलवा,
1: नहीं मूंग का हलवा रहा,
0: मूंग का हलवा रहा,
1: सफेद हाँ। रसगुल्ला रहा और काला रसगुल्ला रहा
0: हाँ।
1: वो सब धैली किनारे। अब भैया हम तो देखा करी और हम का देखे
2: सबके देखा,
1: चार लोग उनके पीछे
2: नजरिया नहीं रहा।
1: हाँ भाई जहाँ तहाँ पर से तो लाइन तो लगी रहा था हाँ। कि तुम हटो तो हम आगे बढ़े। भैया हुई बहू तो पड़सी ने मनई टोक दी सुनकर, कही इसकी बहिनी कई दिन से भूखा नहीं हो तू ये बताई दो, अब कितनी बड़ी बेइज्जती, राम राम कितनी बड़ी बेइज्जती दुलारी।
2: इनका चाची का बताओ,
3: नहीं ऐसे करा थी
1: ये सब नहीं ठीक लागत है,
2: आपस कोई पूछ ली था
1: समझाएं बहनी खाए रहा है तो तू जाना तो तोहरे लिए सब बना तो एक एक चीज खाती हूँ, एक परस लेती हूँ का खा लेती हूँ, दूसर परस लेती हूँ का खा लेती हूँ, का जरूरत है कि पेट पलेटो में जतनी जगह नहीं
2: तो तीन दिन का खाना ले जावे नहीं
1: जावे। टीला खड़ा कही लेन
0: ऐसे हम देखे ना बहनी, एक मर्दे कही हाँ वो यहो धैले वहो धैले यहो, और जैसे जान पड़े कि गाय भैंस बकर बकर हमारे पीछे खड़ा हो गए चबाए धई के खनवा पपड़वा कर दे दे मारे हम कहे मना कहते कि अका हम धकेले दे जाए उतनी दूर गिरे, तब हम मुड़ के उनका कहने है तनी पाछे हुई के खाओ मुड़े हमरे कर रे कर कि हां हो, तब वो जाने थे पाछे हुई के खाइन आधा खाइन आधा वैसे पलटो में भरे भरे गाय बहाय दीन। अभी कितनी गलत बात है,
1: देखो कहा जाता है ना कि जतना इतना लो थाली मां कि वेस्ट ना जाए नाली मां,
0: वेस्ट माने का होते,
1: अब वो कहा जाता है तू हर चीज का माने का है पूछे लागे तू,
0: हे बेटी तू बता बहनी वेस्ट माने का होता,
2: खराब खराब ना हो बर्बाद ना हो,
1: वेस्ट वेस्ट माने खराब व्यर्थ
0: व्यर्थ
1: हां
0: हम यानी वेस्ट,
2: आपका जितना जरूरत हो आप उतना ले
1: उतना ही ले,
0: हां ये तो बतिया तो
1: अब देखो आजकल जौन है गैया है भैंसिया है कुकुर होए, अब वो सड़ा वड़ा खाना अब हम तो फेंक दिया प्लेट उठाई हाँ, के गम से
0: हाँ,
1: हमार बिटिया तो ब्याह रहा है नहीं और हमें कलक ममता है नहीं खाने के हाँ, तो उठाई के हम फेंक दिया, अब ना वो गाय खा सकत है ना वो भैंस खा सकत है ना वो कुकर खाए,
2: लेकिन चाची खा लेते गाय वाय कहाँ जान पावती बीमार हो जाती
0: हाँ, तो गाय वाय बेराम हो जाती
1: ना ही खाद बहने बहुत ज्यादा सड़ जात खाना कस कस खाई,
2: अरे हम देखे ना का की बीमार हो
1: तो बहुत बुखार हुई है बहनी तब खा ली हुई
2: हाँ,
1: और नहीं गाय भैंस ऐसे सूं के छोड़ देती
2: हाँ,
1: कुकुर तो हाथ मतलब छुबे न करिए
0: पूरे बतिया पूरे,
2: अतार कुकुरा कहाँ गा चाची,
1: हमार कुकरा ऊपर बंधा है कमरवा में बैठा है बढ़िया पंखा खावा खात है हाँ। हाँ, पानी धरे है नुकर खाना धरे है न जब मर्जी खाई अपन और ऊपर से भौंका करी,
2: आज हम लोग दरवाजा खटकाए तो देखे ना ना
1: ही को ऊपर रखे ठंडा ठंडा बंधा
0: ठंडा हो हुआ तो ऊपर रहते सोवा कर
1: तो लाइन तो है ना अबे तो उनके कमरा में कुकुर रहा
0: तब ठंड रहते
1: ठंड रहा आराम से पड़ा है, अब ना ही भूखी कुछ दिन वो जब तक का ठंड मिले वो गर्मियां परेशान हो जाए तब भूगत है
0: हाँ। तो बहनी जानत हूँ आजकल का चलत है बड़का मंगर हो चलत है
1: हाँ इस समय, अरे भंडारक ना पूछो
0: हाँ,
1: एक दिन तुहार लोटन भैया हमका कहिन कि चलो आज तुका हनुमान गढ़ी घुमाई दी
0: हाँ भंडारवा कराई दी,
1: भंडारा तो जौन चलत रहा चलते रहा लेकिन अतनी भीड़ अतनी भीड़
2: हनुमान गढ़ी लागती चाची
1: के जाय भर का नहीं अंदर,
0: अच्छा पटो तू कहू रहा कि हम भंडारवा करबे तो टार दियो रहा,
1: अब का करी भाई जाय पड़गा ना उधर ब्याह शादी ठना रहा है तो फिर छूट गा हमार, अब करब फिर से करब,
0: तो हम सुनने की बहनी
1: आठ पढ़ी है आठ
0: हम तो सुना बहनी की मलमासो लाग गा है,
1: मलमास लाग गा तो और नीक है,
0: अच्छा तो भंडारो चलत है मलमासो लाग गा है
1: हाँ, दोनों
0: मलमास कहिया से लागे हो,
2: 17 तारीख से
0: 17 मई से
1: हाँ, लाग गा
0: लाग गा
1: हाँ
0: हाँ, तो सुनो आज करो कि
1: आज बताई
0: हाँ,
1: अतनी गर्मी रहा है तब जब हम पूजा करे बैठे हनुमान जी के
0: हाँ,
1: तो हम कहा हे हनुमान जी हमारे अगर पूजा में तनिको तो खुश हो तनिको तो का लगे कि हमार पूजा बहुत बढ़िया है
0: हाँ,
1: तो तू एक काम करो
0: हाँ,
1: हनुमान जी से हम कहा हम कहा इस सूर्य देवता का एक बार फिर से मुँह में दबा लो। अतना तपे हैं, अतना तपे हैं, अब नौतपा लगे जात है।
4: 25 तारीख से नौतपा लगी तब और तपी हैं।
1: हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें
4: हाँ
1: कि भाई देखो इनका दबाई लो एक बार मुँह, हनुमान जी बस कुछ टाइम के लिए इनका दबाए रहो
4: हाँ।
1: तनी ठंड हुई जाए
4: तो ये गरमा नहीं है।

0: देखियो इतना बड़ा गाना है महाराज।
1: तो हनुमान जी का बड़ा पावर हो भाई,
2: बहुत पावर हो बहनी, बहुत पावर हो।
1: ये कलयुग के भगवान है, कलयुग में अब कहूँ कहूँ है।
2: हाँ, ये तो इनका भगवान कहबे कि न
1: हाँ, कि तू
2: की जो है
1: रहियो तो।
2: एक वही एक अश्वस्थामा
1: अमर
2: कई दिन ना, जब तक कलयुग है
1: जब तक चले तब तक तो हर सबे नाम ले है, हाँ। पूजा करी है, देखो तो ये कितना बड़ा बड़ा भंडारा होता है।
2: हाँ।
1: अब भंडारा की बात तो हम बताइबे नहीं करें।
2: हाँ, तब कब है?
1: तब गए हुआ देखा कि तीन तीन चार चार जगह भंडारा।
2: अरे राम जी,
1: भाई वही हनुमान गढ़ीवा के लगे
2: ये कई जगह
1: है। हाँ, पूरी छोले बटे।
2: हाँ।
1: और का कहा जाता है
2: चावल
1: एक जगह। हाँ, मिठाइयो बटे।
2: हाँ।
1: और कढ़ी चावल एक जगह बटे।
2: हाँ।
1: और एक जगह कोल्ड ड्रिंक
2: वहाँ डिरिंकवा तब
1: हम कहा बड़ा बड़ा बोतल रखा।
2: हाँ।
1: और सब गिलसिया ले लेके मार पिए
2: रहा डिरिंक। और हाँ। फिरी पाए गए।
1: अब फिरी पाए गए तो का कहे।
2: हाँ।
1: तो कहीं कहा लोटन भैया।
2: हाँ।
1: खाइबो तब हम कहा हमें शर्म लागत है अतनी भिड़िया हम के घुसे और के मांगे के खाए कहीं प्रसाद होए। तब फिर ऐसे हम खड़ी रहे ने किनारे।
2: हाँ।
1: तब एक जने रहे देखिन की खड़ी है तो लेके एक दोना में आए भाई बहुत बढ़िया तरकारी और उमा पूरी।
2: हाँ।
1: और सब मिक्स तरकारी रहे वा कद्दू रहा है उमा बैगन और रहा है उमा आलू रहा है टमाटर और रहा है
2: लौकी और रहा है
1: सब मिली हुई तरकारी रहा बढ़िया।
2: वाह, तो
1: हमका
2: मिक्स बेज।
1: हाँ,
2: मिक्स बेज
3: सब मिक्स बेज बोला जाता
1: है। मिक्स बेज
2: वो है मिक्स।
1: हाँ,
2: मिक्स बजवा बहनी।
1: हाँ, तो का खाएं।
2: हाँ।
1: और फिर कहीं क्या और ले हो।
2: हाँ।
1: तो हम कपड़े हिलाए दिए
2: कि हाँ नीक लागगा।
1: तो फिर वो दो लेके आए एक दो ना और लेके आए
2: पूरी खा ली पांच
1: चार खान चार
2: चार
3: चाची प्रसाद तो वही सो भी बहुत अच्छा
1: बहुत नीक लागत है भाई।
2: हाँ।
1: और प्रसाद खाए चाहिए बहनी।
3: हाँ।
1: है कौनो अतनी मेहनत करत है सब जुहावत है सामान और हम नाटक करी कि नहीं हम भिड़िया में नहीं घुसब हम खाब नहीं ये गलत
2: नहीं प्रसाद होते भगवान के बहनी
1: तो अगर पहुंच गए रहा थाने पर।
2: हाँ हाँ।
1: तो खाए चाहिए
2: प्रसाद पाई गये
1: पाई गए हमारी किस्मत बढ़िया रहा
2: किस्मत बढ़िया रहे पाए पूरे भैया
1: भीड़ तो बहुत रहा है।
2: हाँ।
1: मेलवा लागत है हो।
2: हाँ
1: हाँ
2: माई हनुमान गढ़ीवा में।
1: हाँ, गुब्बारा वाले गुब्बारा बेचे बतासा वाले मर
2: तब बहनी जब बड़का मंगरवा होते तब मेलवा लागत है।
1: मेला लागत है।
2: हाँ, बड़का मंगरवा में यहाँ मलमसवा मसुम मरवा कहीं। हाँ।
1: बाला झाला झुलनी मुलनी
2: सब। हाँ, कुल बिकाए।
1: हाँ।
3: चाची आपो जाबो
2: कहा
1: और का एक
3: बार बड़ा मंगर में आपो जाओ।
2: चलो चली चली कोनो दिन
1: चलो। हाँ हुई आओ
2: मंगरवा चलवाओ।
1: हाँ चलो।
2: आप कहिया पड़ी बड़का मंगरवा?
1: अब कब पड़ी यहाँ 24 पड़ी का
2: 24 का महीने अच्छा वार है
1: 26 का पड़ी
2: 26 का पड़ी
1: 26 का पड़ी
2: 26 का
1: 26 का हुई सकत है कि हमार अगर बंदोबस्त हुई जाए।
2: हाँ।
1: तो हम करम भंडारा।
2: हाँ बहनी तू
1: भले छोट मोट करी
2: छोटे ही कर लियो बहनी।
1: हाँ,
2: देखो
1: कर
2: पूड़ी बना लियो तरकारी बना लियो और नुक्ती बना लियो
1: 100-200 लोग खाए ले हैं
2: खाए ले बहनी तू सब आई जाए उनके।
3: हाँ, तो सब आई वे करब।
1: हाँ, तो
2: एक ठो हलवाई लगवाई दी हो
1: हलवाई का करो हम तो बिल के बनाए डाले 100 बने खाना ना
3: हम वो लोग ना अपना चाची
2: हम लोग
1: बनाए लिए और का
2: ये सब वही में जो ने मेहनत कई दे हैं।
3: हाँ,
1: कई दे जाई हलवाई ना ही खाली है कौनो आजकल। हाँ, जैसे लो उनके बड़े बड़े भाव हो
2: चलो हमरे
1: तो हम लोग बनाए
2: बनाए ले।
1: हाँ, करब का बैठ
3: अब पतरका का बना लिया जय चाची।
1: हाँ, तो
2: पतरका के यहाँ बनाए बैठाए दियो कह दो जितना सलाद है कुल काटी
1: डाल रहे
2: हैं खीरा मूली प्याज जो
3: ना पतरका बनवाए खाना वाना ज्यादा तेज जी।
2: अच्छा
1: तो पूरी बिलाई डरी है
2: उनका पूरी छान डरी है कुल जितना पूड़िया है उतना छान लिया है कुल और का
1: तो चलो एक ब्रेक ले लो तो हम कुछ बनाए खवाए दे तू का।
2: हाँ हाँ हाँ
1: है?
2: आज सुना ने कुछ चना वना बनाए हुआ
1: चना नहीं।
2: हाँ,
1: सतुआ सत्तू बना के रखे हैं।
2: लाओ सतुआ लाओ सतुआ। हाँ। चलो ब्रेक ले तो
1: एक ठो ब्रेक ले लिया जा
2: ब्रेक
1: कब सत्तू का पिया दे तू का तू पी के देखो
3: कैसा लागत है।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल गुर्दे दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
8: डिलीशियस
9: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
8: और क्या क्या है खास?
9: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
8: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड कोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: बड़ा नीक रहा हो सतुइया, तो बड़ा नीक रहा है बनी धूपी वंशुका।
10: हाँ हाँ चाची, बहुत नीक रहा।
2: और उनका देवी का भी पिया है, देवी का यहाँ।
3: अरे पियन हम हूँ चाची।
2: और कहते ना खट्टा, ये चटपटो ही खट्टा कैसे होएगा
1: वहाँ? अमावा पड़ा है हो,
3: चीनी ज्यादा डल में नहीं करी नहीं,
1: लेकिन चीनी ना या देखो
2: चीनी अमावा डाली ना, कितना खट्टा कितना नीक है बहनी।
1: तनी मिश्री पड़ी है, चीनी ना ही डाला है।
2: मिश्री डाली हुआ है पीस के जैसे बताओ तो।
1: हाँ वह तनी मिश्री ना दिया।
10: अब हम बनाए चाची झा,
3: बहुत नीक लागत है चाची। हम जाए घर तुरंत ही बनाये।
1: हाँ बहनी बनाए धैले तो सब फ्रिज तो है तोरे लोगन के।
10: हाँ चाची,
1: वो हम धर दियो बनाए के।
2: हाँ फ्रिज देबो तो जब चाहबो तब बनेबो बहनी।
1: तो बहनी कोनो गाना ना तू लोग सुनाए दो।
10: हम मैं लोग का तो होते ना चाची।
2: तुहार बहनी कलेज वहाँ बंद हुई कि भाई खुला है?
10: पेपर होते है।
2: ये पर का होते बहनी?
1: पेपर कहा थी, पेपर
10: एग्जाम परीक्षा होते।
3: परीक्षा?
2: अच्छा परीक्षा होते, काहे परीक्षा?
1: अरे पेपर होता है हो, परीक्षा काहे को होता है? जो पढ़ रही वह पेपर होता है।
2: कहाँ पढ़ाती हूँ
1: बताओ, कहाँ पढ़ा दो इनका बता दो भाई।
2: कहाँ पढ़ाती हूँ, काहे परीक्षा?
10: हम लोग BA में पढ़ी थे, वही के परीक्षा चलत है।
1: BA
2: तो आपकी कक्षा पास हो जाबो?
10: आपसी हम लोग पास हो जाबो।
1: तेरे हैं 14 हम पढ़ती हैं मालूम?
2: बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाती हूँ बहनी तोरे से।
1: हाँ पूरा जिंदगी लाग जाते है पढ़ाइया करे।
2: हाँ कतना इनके सारी बाप नीक है कि कतना 14-13 पढ़ावत है।
1: भैया बहनी आजकल शादी ब्याह ना ही हो तो अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो सदियों ब्याह में अड़चन आवत है।
2: हाँ यो बात है।
3: पढ़े लिखे रही है थोड़े दहेज कम लागी।
1: हाँ
2: हाँ पढ़े लिखे रहो तो दहेजवा कम ना ही, पढ़े लिखे रहो तो दहेजवा तो लगबे करी। ओके अलावा ये रही कि पढ़ा लिखा लड़का मिले,
1: पढ़ा लिखा लड़का तो मिलबे करी। और सुनो जैसे मान लो कि पढ़ी लिखी है कौनो नौकरी का मौका मिले।
2: हाँ।
1: तो वह कर ले।
2: अब तो देखो
1: ना ही है आजकल।
2: हम तुम्हें एक बात बताई, आजकल के जुग जमाना जोन है कि अगर पढ़ी लिखी हो और कहूँ मिला था तुम्हें सबका नौकरी तो नौकरी कई डालो। हम तो यहाँ कही जानी देवी।
3: हाँ,
2: हम तो यहाँ कही थे कि नौकरी कई डालो।
1: हाँ करेक्ट चाहिए,
2: बिल्कुल कह लो बहनी। देखो
1: चार गोड़वा हाथ की हुई जाइय तो कोई चार पैसा ना कही पाई।
2: हाँ चार पैसा तू खुदे कमाबो तो कोई कागे तुम्हें हथवा ना
1: पसारे पड़ी
10: का। अब पढ़ा का करे जाते चाची?
2: है तो जितना पढ़े हो तो ना कुल निकाल लो, पढ़ी रह बो तो लड़के बाले हुई है वो देखी है।
1: बहनी देख लो दो दो जनी बैठी।
2: हाँ देख लो
1: कौनो इज्जत ना है घर में।
10: इतना
1: काम करी
2: थे बहनी,
1: इनके तो देख लो गोबर गाय भैंस सब है। हमें देख लो सवेरे में उठी थे
2: तब का
1: झाड़ू बुहाड़ू अर्तन बर्तन खाना पानी कपड़ा सब का।
3: आप क्या करती थी? आप कुछ ना
1: वो तो ही करती
2: करी
1: सब पे। देखो अब यहू जाने थे हम बताई थे कि अपन नाड़ी पे भरोसा रखो
10: है।
2: बिल्कुल सही बात है,
1: अपन नाड़ी पे भरोसा रखो कि हम कहीं के खाई ले खवाए दी चार लोगों ने।
2: हाँ यह पहना करो कि कोई आई तो हम ना बनाई खवाई
1: करी है, करे चाहे ना करे हमें करे खाए हम करी
2: हमारे दम है। हम जब तक हमारे दम है
1: करे से हमार शरीरिया चलत है।
2: हाँ
1: ये जानो बहन
2: बस ये हो चाहिए
1: बस।
2: अब कतना टहल हम दोनों जने कई डाली थे सवेरे से, हम तो खाई को बहनी बनाई थे ना ही बनाव थी। अब हम लोग समझ लो बहिरे कमो निपटाई थे, ओकर बाद धर्म बाग के जाई थे जल्दी बनी चाह, एक कप चटपटो एक कप चाह वो ना ही बनाव थी, बड़ी
1: ना ही बनाव थी। हम जानी तो ना ही ने कहा जब हमें जरूरत है तो तू पड़ी हो टांग पिला
2: तब तू सो
1: तो सो
2: बना खुद भगवान हमें वही लाए की हाँ बनाए बनाए पी ले थे जाए थे उन्होंने आगे पटक आई थे लो तुम
1: पी लो और का
2: लो पियो तू ऐसे खाई को बनाई डाली थे बाहर लोग कमा करी थे खाई को बनाई थे हम दोनों जन निकल के टहरी हुआई
1: टहरी हुआई थे सब कम हो कई ली
2: और का बजारो हुआ
1: शरीरिये पिरा थे कब हाँ, टंगवा
2: कबो कमरवा पिराई कबो हाँ, टंगिये पिराई कबो मुड़वा पिराई जाओ तू पिरवाओ अपन हम दुजे नहीं बनाए
1: ज्यादा लेटे लेटे यहाँ होत है सुस्ती आ जा शरीरिया में
2: हाँ हम दुनिया बजरवो कही ले
1: कहाँ कहाँ घूमी आई थे
2: तब का वो देखो भंडारा में पहुँच जाये थे दोनों जनी
1: और गौ भर का देखे रही थे कौनों के दुख परेशानी में खड़े रही हाँ। थे शामिल रही थे
2: और का वो देखो हाँ। हम लोग बैठ के बुराई नहीं करी थे।
1: बुराई नहीं करी थे कोई के हाँ। काम है नहीं करी थे अपने काम से छुट्टी है नहीं है की कौनो बुराई करी
2: और का
10: आप लोग के दोस्ती ऐसी रही की पतोहियो के जैसन मिल गयी
2: अरे का कही करामो है जब देखो सखी बने
1: ठीक है
2: तो ठीक है
3: चीजें एक के मेरे करीन तो पता ही हो एक के
2: हाँ तो अभी जान लो कि हम लोग अपने घर के महरीन हुई और धोबैन हुई जमादारिन हुई कहारिन हुई भंडारिन हुई
1: सब हुई
2: सब हुई
10: सर्व गुण संपन्न हुआ
1: हाँ। अब यहाँ कह लो आखिरी में मलकिन हुई
2: हम मलकिन हुई का जनी कौन चीज मलकिन हुई मलकिन एकदम आखिरी बात
1: अब कहाँ राय जाते हमें मलकिन कह के तो बुलावत है
2: हाँ।
1: कहाँ मलकिन
2: मलकिन हाँ कहाँ ऐसे हमारे गाँव में जब हम रही थे अपने तब हुआ हम जब जाये थे अपने ससुरिया तब वो हुआ है मलकिन आई कि ना आई आई हम कह रहे काहे के मलकिन दादा झाड़ू बहारी करे खड़ते आये है अब लगाई थे मलकिन काहे खड़ते नाव के हमरे सबे खाली मलकिन दे दी
1: मलकिन
2: की मलकिन के तो बस खुश हो जाई है और दो दो को मौका लगी
1: चलियो मलकिन मलकिन आज ही बनाई डारो मलकिन आज भी बना अब तो बताओ मलकिन कह के सब काम कराए पूरा कही थे बहनी
2: हाँ सब पूरा यहाँ होते है मलकिने कह के आदमी अपन काम कराए लिया थे बहनी और हम सब है देहात मने सिर
3: साथ मलकिन कह के थे
2: हम लोग खुश हो जाए थे
1: तो देखो भैया सब मेरे शिव जी का परचेक रहा था
2: हाँ
1: मलमास जब से लगा है
2: एक ठो शंकर जी के गाय दे तू शंकर जी के मलमास हुआ चल के भाई
1: हाँ ये तो गावे चाहिए और का
2: हाँ एक ठो गौरई कही दे तो
1: चलो सुनाई दे थे ना
2: सुनाई दो हाँ
1: तो सब पुरवाए लियो ढंग से
2: हाँ हाँ पुरवा ले भाई

0: ये सब नई दुल्हन के लिए है जो नई नई ब्याह ब्याह के आए हैं इस समय।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: तो उन्हीं के लिए ही गाना है।
1: हाँ
0: कि भाई पूजा करने काबिल नहीं हूँ, इतना सोने गहना से लदी है
1: बड़ा तो नहीं कहाँ कहाँ से क्यों चटपटाओ।
0: अरे मंदिरिया में होत रहा हो।
1: हाँ
0: तो आवाज पड़ा करे कनो हम।
1: अच्छा
0: तो एक दो लाइन सीख लिया।
1: नहीं तो बड़ा नीक बहुत नीक गईबो की हुए है हो।
2: खूब नवा नवा गाना सीख आवत हूँ।
0: तब का करी जब अच्छा लागत है तो सीख ली थे।
2: हाँ तो ठीक करा तू हमोक सिखाए दी हो।
0: तब काहे ना सीखी
2: अब आज गाय ली है ने तब काल हमें सिखाए दी हो।
0: बिल्कुल सिखाए। अब देखो भंडारा हो जाए दिन।
2: हाँ,
0: है
2: हाँ।
0: तो तैयार रखे हो तू ही लोग
3: बहनी हाँ से गावा जाए।
0: हाँ तो भंडारा सब गाना वाना भी नीक लागी।
2: हाँ
0: जब पूरी उड़ी हम लोग बेला जाए तो हनुमान जी का गाना
3: जल्दी जल्दी।
0: हाँ तो वह में ध्यान रही तो ये मतलब गर्मी अर्मी ना ही महसूस हुई।
2: अच्छा
0: है ना।
2: हाँ, हाँ।
0: और का जब गनवा में भगवान जी में ध्यान लगी रही हनुमान जी में ध्यान लगा रही
2: हाँ,
0: तो
2: हाँ,
0: कौनो गर्मी अर्मी ना लागी।
2: हाँ ना लागी तो बहनी जानी नहीं परत है।
0: जान नहीं
2: उनका परताप रहा थे परताप।
0: और का
2: तो परताप से जान नहीं परत है कि हाँ का होता है। तो बहनी तू हूँ दूजे नहीं आए जायो।
3: हम लोग आए चाची
2: मगर
0: शक्ति बहाय दे है हनुमान जी की शक्ति से हम लोग का।
2: हाँ शक्तियाँ तो वही दे है पूरे। हाँ। कहा तू बहनी तब मंगरवा का हम लोग आवा जाए।
0: हाँ आए जाए और सब तैयारी हम रखा
3: पतरको।
0: हाँ।
3: बलाई
2: पतरको बलाई ली हो पतरको बलाई।
0: हाँ पतरक देखो तबियत ठीक रहा है तो बुलायो बहनी। और कौनो
3: चाची उनका तबियत ना ठीक रही अगर वो जनी है कि हम दो जनी आई थे तो वो आई है।
0: भंडारा अंडारा नीक लागत है वो सब है चरफर
3: बहुत जरा थी चाची।
2: हाँ ही बहनी जरा तो नहीं है
3: आप लोगों से नहीं
2: हम
3: लोगों से
4: जरा थी।
2: तो तुहार दुन के तो सखी हो तब का है जरा
3: थी।
4: यही तो जरा थी सखी हुए तब।
2: अरे तो काओ
0: ये सब बचपन एक बातें हो
2: सखी लोग नहीं जरा थी।
0: बहुत चरफर बिटेवा हो
2: बिटेवा ठीक ही कमों बड़ी चरफर ही कुल कमों कर थी बात नहीं है। हमरो घर आवत ही एक दिन आए रहा तो आधा बोरिया आम लेके छीले थे कुल छील जा रही बैठ कर।
0: आधा बोरिया आम का है छिलवाए रहो
2: खटाई डाय ना खटाई
0: सुखवाए हो
2: सुखवाए हन। हाँ खटाईवा
0: तो सूख जाए तनी हमको दे दियो। हाँ
2: दे दे दे
0: अबे हम नहीं सुखवावा है।
2: अच्छा तो हम वही छीला थन बैठी तब कहीं काव कर रहती हूँ काकी वही बढ़िया जात रही।
0: अब हम चाहे तो तनी जौन जाली वाली ठीक से पड़ जाए।
2: हाँ तब हम असल में ना उका सुखवाए ने पीस के वो बनावे अमचूर।
0: अच्छा जौन बतावा रहा है।
2: हाँ
0: ठीक
2: तो वहाँ थोड़ा खटैया बना के रख ले
0: हाँ, तो
2: और थोड़े वही अमचूरवा बन जाए
0: बढ़िया रही।
2: हाँ
0: पूरे साल चला
2: सलावा भर चला कर रहे और कुछ बनाओ ना तो मन डारे खोए ये शुद्ध रहा थे बहनी।
0: और का
2: तो एक बनाए के डब्बा भर के धरे तो नहीं तो सिखाए रहे
0: कद्दूआ सब्जी बनी जहिया वही दिन बहुत नीक लागी
2: बहुत मजा आ जाते बहनी जब बनाते तो
0: बहुत नीक लागे देव तनी।
2: हाँ तू गुड़ा ना तू हमें ना ही नीक लागत है मिठका
0: तनी गुड़ा ना दे ना।
2: हाँ
0: उसका स्वाद और बढ़िया बन जाता है।
2: अच्छा आई बहनी झोरवा कहाँ से लाई हो बड़ा नीक लागत है तुम्हारा झोरवा।
0: झोरवा हमारा बहुत नीक है ना।
2: कहाँ से लाई हो।
0: अब दिल्ली गए रहा
2: ये दिल्ली से लाई हो।
0: ये दिल्ली कहाँ है।
2: अब पनिया इमन धाई ले थू।
0: हाँ ठंडा रहा थी पनिया इमा।
2: अच्छा ये बने पानी के झोरा हो
0: पानी झोरा तो अब यहाँ कही लो पानी वाला झोरा
2: पानी का झोरा। हाँ पूरा ही कहूँ पूरा
0: इसके अंदर पनिया जो है।
2: हाँ
0: ठीक रहा था
2: ये तो काम
0: हैंड पंपुआ से निकाल लो जैसे रही
2: तो आपसी जाए तो हमारे खर्तिन लाए
0: लाई आए लाई आए। अब तो जाए नहीं देखो देवर आए वाले हैं तो हम कहीं दे
2: बता दियो कि भैया दूछो लाई
0: जाइए तो दे दे तुका
2: पैसा वजन हो तो हम दे दे भाई।
0: अरे पैसा कौन बात हो
3: सखी सखी वो तब वो पैसा दे
0: ये पैसा पीछे बहुत लावत ही हमें बड़ा नीक लागत है इनकी बतिया।
2: उसके बारे कहा थी बड़ा नीक
0: लागत बहुत नीक लागत थी जब ये पैसा देख बात कहा थी।
2: अरे तो अब सखी है तो भैया आप जानी थे सबके खर्चवा है तो मंगाए दियो तो हमें पहले तू।
0: हाँ तो पैसा वैसा बात ना किया करो।
2: अरे अच्छा ना कर
0: गरीब
2: ना
0: ही हन
2: ना ही बहनी
0: पैसा मांगा
2: बहुत अमीर हो तोरे। हाँ। बहुत भगवान इसे तुम्हें दिहा रहा है काहे गरीब
0: और का भगवान दिए तब तो दे थे
2: नहीं तो अब
0: जितना देखो जितना दे हो जितना ले हो
2: उतने बाढ़ी
0: बाढ़ी
2: नहीं गरीब कहा तो हमें गाना हमारे याद आवे तुरंत
0: तो गाय दे
2: किसी गरीब।

0: एक जने हमारे आवत है
1: ममऊ का एक गरीब वाला गाना आवत है
0: गाय तो दुलैया ऐसे हमरन घस गाय दो गाय दो गाय दो चटपटो गाय दो
1: नहीं
0: गाय दो
1: निक नहीं लागत
0: रेउ निक नहीं हम तो हमरा मन में आवत तो हम तुरंत गाय देते हम ही नहीं सोची थे गाय दो
2: गाय दियो काकी
1: नहीं नहीं
2: अरे गाय दियो
0: बेकार है गनवा बेकार है
1: नहीं गनवा बहुत निक है फिल्म का गाना
0: फिल्म गाय हो नहीं हमरे यहाँ एक जने आवत रहे भाई गावत रहे फिल्म के ना कोई हमरे यहाँ जने आवत रहे भाई गावत रहे तो बहनी अब हमारे लोग टीम होगा चला जाए घर का
1: हाँ तो चलो भाई होगा तो चला जाए भाई अब तो हम तो कोई रोक नहीं सकी थे
0: हाँ
1: है
0: छुट्टी होगा है आज
2: हाँ।
1: तू लोग जब हमारे चौपाल में आई जाती तो हमें बड़ा नीक लगा थे बहनी
0: अब आज पकड़ लिए हैं दोनों जन का
1: आवा करो अरे धुपिया उपिया देखो हम तो ठंडा लगाए घर में
2: हाँ,
1: तो चलिए आवा करो यहाँ बैठा करो
2: हम लोग का बहुत अच्छा लागत है
1: हाँ तो
2: एक से एक चीज सीखे का मिलत है
1: तो निकस आवा करो बहनी
2: अब चलिए आवा करो
1: हाँ बैठा करो आएंगे और का
0: तो चलो अपने घर का
1: देखो कोनो कोनो कहम ना आयो
2: ठीक है
1: दुलारी और चटपटी दोनों बहुत जोन है परपंच करती ये सब बहुत फैला है गांव में तू भी कौन कोई सुने हमरे मुंह से बुरैया
2: ना चाची
3: काकी ना सुने
1: बताओ हम लोग तो पूरे बात कही थे अब वह जो है बुरे बने हैं
0: हाँ सही हम लोग पूरे बतवा अपने दुखा बतवाई थे एक दूसरे से वह होता की गांव भर के पंचायत
1: जोर के
2: अरे चाची कहे वाले तो बहुत कुछ कही देते हैं
0: गांव भरे परपंच करी था
1: हम लोग कब्बो कोई की बुराई नहीं करा
0: कब्बो नहीं करी था जानी नहीं
1: का हुआ
0: जिन बगलियां पाड़े रहा था गवा
1: हाँ हाँ तब का हुआ
0: अरे पाड़े बिटीवा भाग ही गए हो
1: ये मुरी या
2: बताओ थी करा थी फिर भी कहा
0: नहीं बतिया
1: हो मतलब
0: बतिया बताई और जानी नीक है चटपटाओ नीक करिस भाग गई ओके भाईवा उका बहुत मारत रहा और बपवा पी के आवत रहा वहा मारत रहा और भागीस ही एक ठो बड़ा नीक ओके एक ठो कोनो लड़का चक्कर रहा लड़का रेलवे में काम करत है
1: तब तो ठीक है कहीस
0: और कहीस कि तू हमरे से भागते तू है यहां मां डरी है और भाग गवा लेके बहनी और ब्याह कहलीस मजम रहा थी भाई
1: चलो ठीक है
0: तुम्हारा
1: हाँ एक बार जो है हम तो यह कहे कि बिटियन का कि एक बार अपने महतारी बाप का बताए जरूर दे
0: हाँ, हाँ। महतारिया जानत रही हो कहीं
1: अच्छा
0: महतारिया बताए रही महतारिया खुद ही कही कि तू भागी जा
1: भागी जा
0: नहीं तुम्हें मार डाली है दोनों मिलकर
1: ठीक है तब तो फिर अब ना ही पुलिस दरोगा हुई है
0: हाँ?
1: पुलिस दरोगा जो हुई जात है
0: हाँ।
1: इज्जत चली जाती
0: इज्जत चली जाती ये बात तो पूरे कर
1: तो वहाँ कहा कि बताए दो महतारी बाप हाँ। कि हम जाए थे फलाने संगे
0: देवी तू ना भागे हो तू कहो ना भागे तू सब ना कहो भागे लगे बहनी
2: ना करब चाची
0: नहीं तो फिर हम कही एक बिटिवा रही जगह
2: कैसे कोई बनाई खवा ना पाए छुआते ना काकी से आई थे तो सीख ली तो बता दिए थी थोड़ी थार
0: तो अब तो सीख ही गयी बहनी अब आज देखो कहा सीखी सिकंजी बनावे सीखी आम के सत्तू के पानी बनावे सीखी गलका बनावे सीखी आम के पना सीखी और कटहरे बरिया सीखी
2: और तीन चार तू
0: गाना सीखी तो कहते ना नीक नीक चीज सीखी ऐसे अगली बाजी फिर अबो तब फिर कुछ चटपटो नवा लेके आई है ये चटपटो तो अब की तू बताई हो आमे का चार और कटहरे का चार
1: अरे बता दे मैं कौन हाँ, बड़ी बात है
0: कैसे बनावा जाते
1: हैं नहीं नहीं अब हम बता देते हैं लेकिन अब यही बहाने आ जाई है
0: हाँ, समझे हो
1: सीखे कोई बहनी तो अच्छा ले आयो
0: हाँ
1: और दो चार ऐसे तो मंगरक बुलवाए हैं
0: हाँ मंगर का तो अब कर वो भैया इनके
1: मंगर
0: इनके भंडारवा निपटाई दी बहनी हाँ तब चलो बहनी सब चली थे
1: जाओ जाओ बहनी उनका
0: जाओ जाओ
1: तब सबका राम राम राम राम कही थे सबका की अब जाये थे भाई और अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलब यह दिन यह समय
0: और सब गर्मी से बचत रहो
1: बचत रहो
0: ये पना और गुल बताई चटपटो एक घोर घोर पियत रहो और सब स्वस्थ रहो मस्त रहो
1: और 89.6 FM
0: ये है गोंडा शहर की धड़कन
1: सुनते रहिए
0: सुनते रहिए।

आइए, आज रविवार है और बात करते हैं मोहब्बत की। और बात यहाँ से शुरू करते हैं।

0: के इस सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के नाम ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे इस संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। ये मैं तब कहता हूँ जब मैं बहारे गजल में होता हूँ, लेकिन इस समय मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। जी हाँ, तो इस गोंडा मैसेज मसाला के पुराने गीतों में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी उपस्थिति हमें यहाँ ज़रा कम दिखाई दे रही है। तो भाई ज़रा ये बता दीजिए कि आप मौजूद हैं और सुन रहे हैं अपने गोंडा वाले FM को, जी जिसका नाम है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। और ये गोंडा की ही नहीं, आपके शहर की भी धड़कन है और शहर की धड़कन होने के साथ साथ ये हम सबके दिलों की धड़कन भी बन चुकी है। जी हाँ, तो बताइए साहब क्या हालचाल है, मौसम कैसा है, गर्मी के बारे में आपके क्या विचार हैं? और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी दुनिया में। आप हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, ये आप हमारी महफिल में किस प्रकार से शामिल हैं, ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगा ये प्यारा सा गीत। और जब ये प्यारा सा गीत बजेगा तो हम चाहते हैं कि भाई आपकी उपस्थिति भी यहाँ पर हो जाए और हम जान पाएं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इस गीत के बाद हम आपको मिलेंगे तो आपके संदेश हमें प्राप्त हो चुके होंगे। तो फिलहाल सुनाते हैं आपको प्यासा गीत और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यासा गीत

जी हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से आप हमारी जिंदगी में शामिल हैं। हम जहां भी जाते हैं लगता है कि आपकी ही महफिल है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता श्री राजेश सिंह जी मालवीय नगर से। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। और श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, पहले आप ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब आप कैसा फील कर रही हैं, हमारे भाई साहब ने आपको फील गुड कराया कि नहीं, दवा काम किया नहीं, कल बड़ी चिंता थी आपकी भाई। और श्री अनिल शास्त्री जी हैं भाई, गुड इवनिंग मनु जी, आपको भी शुभ संध्या, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और राजेश सिंह जी का कहना है कि आप कैसे हैं भाई राजेश सिंह जी, जैसा आप रखते हैं वैसा ही हम रह लेते हैं, तो जैसा आप रखेंगे वैसे हम रह लेंगे, वक्त है समय है। और न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को न दुख दे यूं ही, अपने दिल को न दुख दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। जी हाँ, तो अगर आप वक्त के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो निसंदेह आप उन कामयाब लोगों में से एक हैं। और चलिए आपको सुनाते हैं लकी मैन शशि कपूर, नहीं बल्कि ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी सरगम, 7 गीत उसमें रफ़ी जी ने गाए थे और ये 7ों गीत मिले थे ऋषि कपूर को। आइए उस प्यारे से गीत का बहुत ही शानदार अंदाज आपको हम सुनाते हैं। गीत बहुत शानदार है, हो सकता

0: आप सभी लोगों ने सुना हो सकता है कभी कुछ ना सुना हो, तो अगर सुना है भाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं सुना है तो जरा सुनकर बताइए कि ये गीत कैसा रहा। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो ज्ञान स्लिट 9.6 FM, ये है घोड़ा शहर की धड़कन।
1: मुझे मत रोको,

जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, कि मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। क्या बात बात है, एहसास है, खूबसूरती है, सब कुछ तो है। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहां कोई नहीं होता खुदा तो होता है। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहां कोई नहीं होता खुदा तो होता है। यही बहुत है ताल्लुक की जंग लड़ने को, यही बहुत है ताल्लुक की जंग लड़ने को, वो बात बात पर मुझसे खफा तो होता है। जी हाँ, अगर आपसे कोई नाराज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो आप पर अपना हक जता रहा है, और ये अच्छी बात है। थोड़ी सी नाराज़गी रिश्तों में जान डाल देती है। जी हाँ, सरताज ने लिखा कि कल से थोड़ा बेहतर है स्वास्थ्य, गाना एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु सर गुड इवनिंग, आज कुछ अपने मौसम के हिसाब से सुना दीजिए। भाई अरे क्या बताएं, मौसम के हिसाब से सुना दें, और बिल्कुल सुनाएंगे साहब। अब हम तो अपने मौसम के हिसाब से ही सुना रहे हैं, अब आप देखिए कैसा सुनना चाहते हैं। और मुकेश यादव जी हैं, भाई गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू मुकेश यादव जी, बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े, आप कहाँ थे। और जी हाँ, राजेश सिंह जी हमारे साथ हैं, मुस्तफ़ा सऊदी जी भी हमारे साथ हैं। भाई वाह, गीत अच्छा लगा। और चलिए अब आपको सुनाते हैं क्लासिकल सा गीत, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लासिकल सा गीत आपको बेहद पसंद आएगा। जी हाँ, सुनकर देखिए, पसंद आता है तो बताइए कि कैसा लगा आपको। जी हाँ, गर्मी के हिसाब से।

जी हाँ, मोहब्बत जिंदगी में कभी कभी मिलती है, लेकिन गीत आपके नाम से हर रविवार को बजते हैं जी। मतलब अब वो वक्त आ चुका है जिस वक्त की आपको प्रतीक्षा है। अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, तो इंतजार करेंगे भाई आपके फोन का, और आपके फोन का इंतजार करेंगे, और अब गीत वही बजेंगे जो आप चाहेंगे। तो जी हाँ, आपका अपना दूरभाष क्रमांक है 6393 6393316429। आप फोन कीजिए और हम गीत बजाएंगे वो जो चाहेंगे आप। फिलहाल इस प्यारे से गीत के बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम

0: जी हाँ,
1: फरमाइशी गीतों को करते हैं अब प्रारंभ। गीत आपके नाम से, और जो पहली फरमाइश हमारे पास आई है वो आई है भाई अनु जी की बेलसर से, और बहुत ही प्यारा गीत चुना है। इस गीत से ज़्यादा अच्छा है इसका नृत्य। जी हाँ, फिल्म का नाम देवदास और गीत है डोला रे डोला। जी हाँ, तो चलिए हम और आप दोनों डोलते हैं कुछ देर के लिए और डूब जाते हैं इस प्यारे से गीत में। जी, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ अनु जी के साथ।

जी हाँ बिल्कुल, डोलिए झूमिए नाचिए गाइए। और अब चलते हैं भाई निशा जी की फरमाइश, ये सजना सवरना बिन साजन के बेकार है। जी हाँ, अनु जी की इस प्यारी सी फरमाइश के बाद अब बढ़ते हैं निशा जी के फरमाइश की तरफ।

जी हाँ। अब चलिए भाई, ये प्यारी सी फरमाइश पूरी हुई, अब चलते हैं दीपक जी जो हमको सुनते हैं हथियागढ़ से, और बहुत ही प्यारा सा गीत उन्होंने चुना है जी, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। हाँ, रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में इस गीत को एंजॉय करते हैं दीपक जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, वैसे तो शाम हो चुकी है लेकिन अभी विष्णु पद्मिला जी के लिए नहीं हुई है, और शाम हो चुकी है और शाम होने के साथ ही साथ उन्होंने आवाज़ भी दे दी है। जी हाँ, क्या आजा शाम होने आई, मैंने प्यार किया का बहुत ही प्यारा गीत है, और बहुत दिन के बाद किसने फरमाइश की भाई चलिए सुनते हैं ये प्यारा गीत आजा शाम होने आई।

0: तेरी की तो कर दो सबको तुम गुड बाय।
1: जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। आज शाम होने आई और शाम हो भी चुकी है। अब चलते हैं भाई, बेनाम जी को ये भाई नाम उन्होंने लिखा नहीं लेकिन गीत बहुत अच्छा सुना है, हमको दीवाना कर गए का टाइटल सॉन्ग। तो चलिए चलते हैं भाई, उनकी फरमाइश, हमको दीवाना कर गए का टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

जी हाँ बिल्कुल, अंदाज तो ऐसा है कि हमको लगता है हम खुद ही दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत भाई, हमने इंजॉय किया। और अब चलते हैं, हमारे इम्तियाज जी की फरमाइश है और तौबा पापुन। जी हाँ, चलते हैं इम्तियाज जी की फरमाइश को करते हैं पूरा इस गीत के बाद।

जी हाँ, कोई भी नया गाना रिलीज होता है तो सबसे पहले पहुंचता है हमारे इम्तियाज जी के पास। जी हाँ, तो ये आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत एंजॉय किया। और अब चलते हैं अपने बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता श्री राजेश सिंह जी मालवीय नगर की ओर। दिल में आग लगाए सावन का महीना, बहुत ही प्यारा सा गीत है जी। और अब सुनते हैं आपको श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश, बहुत ही प्यारा गीत।

जी हाँ, जब दिल में आग लगाते हो, सावन का महीना आग लगा दे, तो फिर क्या बात है भाई, नहीं जीना नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं भाई, हमारी अगली फरमाइश है चांदनी जी जो हमको सुनती हैं रोहतावा से, और गीत है तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, कोई ना चाहेगा तुमको मेरी तरह। जी हाँ, तो आइए चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो गीत है बी प्रांग का, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, बहुत ही प्यारा सा गीत चांदनी जी की फरमाइश पर।

सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली।

जी हाँ भाई, तो चांदनी जी रोहतावा की तरफ से हमने सुना ये प्यासा गीत। अब बढ़ते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ, और गीत उन्होंने चुन लिया है मेरा परदेसी ना आया। तो अब चलते हैं श्री धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ, मेरा परदेसी ना आया।

0: भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, बड़ी देर कर दी और बड़ी देर कर दी, बड़ी देर कर दी। इसके पश्चात चलते हैं भाई, सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश है, तेरे लिए ही जीता हूँ मेरे रघुनंदन राम। आइए अब आपको ले चलते हैं भक्ति भावना की ओर, सुरेंद्र जी का ये गीत।

जी हाँ, जय जय रघुनंदन श्री राम। सुरेंद्र यादव जी की ये प्यारी सी फरमाइश अब चलते हैं भाई हमारी बहुत ही प्यारी श्रोता कायनात जी की तरफ। उन्होंने ये गीत डेडिकेट किया है, हम भी पागल तुम भी पागल और सभी जो उनके मित्र हैं उन सभी को ये डेडिकेट है भाई। स्वयं भी पागल और दोस्त भी पागल, साथ साथ हम भी पागल।

जी हाँ, कहीं कहीं पागलपन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा समझदार इंसान मुश्किलों से घिरा होता है, और जो पागल होते हैं वो निकल जाते हैं साहब उन मुश्किलों से। अब चलिए चलते हैं भाई, कुछ भक्तिमय माहौल बनाया था, अब कुछ ऐसे नायक को समर्पित करते हैं जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारे साथ श्री एडवोकेट श्री भूपेंद्र कुमार सिंह जी हैं, और गीत सुनना चाहते हैं जागृति फिल्म का, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्गे बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए सुनिए श्री भूपेंद्र कुमार सिंह जी की फरमाइश पर।

क्या बात है, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या पंक्ति है, क्या अच्छे तरीके से निभाया है भाई लता जी ने। अब चलते हैं संतोष जी की फरमाइश, तुम याद ना आया करो। जी हाँ, तो अब चलते हैं अगली फरमाइश, बहुत प्यारी है, तुम याद ना आया करो। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म जीने नहीं दूंगा का ये बहुत ही प्यारा गीत संतोष कुमार जी की फरमाइश पर।

याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, क्या बात है। क्योंकि जब कोई याद में छटपटाता है तो वास्तव में उस छटपटाहट में बड़ा दर्द होता है जो संभाले नहीं संभलता। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत। अब चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता मुकेश यादव जी की तरफ, और फरमाइश है, काश हम मोहब्बत से अनजान होते, लेकिन कोई बात नहीं, अब अनजान नहीं रह चुके तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप जान जाइए मोहब्बत क्या है।

जी हाँ, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ इस गीत में मुकेश कुमार जी की। अब चलते हैं भाई हमारे रोमांटिक कुमार जी जो हमको सुनते हैं दादा गोरखपुर से। उन्होंने कहा है भाई इतनी बार न देखिए कई बार देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा गीत, बार बार देखो हजार बार देखो। शम्मी कपूर की बहुत ही प्यारी सी एक्टिंग और रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में ये रोमांटिक कुमार का प्यारा गीत जो हम सुन रहे हैं श्री अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर गोरखपुर से।

जी हाँ बिल्कुल, बार बार देखिए, हज़ार बार देखिए, और ये देखने की चीज़ है। जी हाँ, आप चलते हैं उस्मान खान जी की फरमाइश, बहुत ही प्यारा सा गीत मृत्युदाता का, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, बहुत ही प्यारा गीत। जी हाँ, ये उस्मान खान जी की फरमाइश।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटी, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में 500 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
14: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और जी हाँ, मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और इसके बाद करते हैं आपसे ढेर सारी बातें। फिलहाल बहारे गजल में पहले

मुझे अब रास नहीं आता कोई मरहम, मुझे अब रास नहीं आता, दिल लगा

बात इतनी सी है दरअसल, समझो क्या बात है, इश्क में हूँ मैं मुसलसल समझो। वास्तव में इंसान जब इश्क में होता है तो वो इस दुनिया का नहीं रह जाता, मतलब ये दुनियादारी उसके ऊपर चढ़ नहीं पाती। हमारे साथ भाई, हमको संदेश प्राप्त हुआ नेहा जी, जो हमको सुनते हैं बहराइच से। नमस्कार सर, शुभ संध्या, आपको भी नमस्कार। और हम भी आए थे गोंडा शहर में मुसाफिर की तरह, क्या बात है। और हमने आपसे कहा भी था, इल्तिजा भी की थी कि अगर यहाँ आए हैं तो पधारिए, लेकिन हो सकता है आपके पास भाई वक्त की तंगी रही हो। जी हाँ, आप चलते हैं अपने प्यारे से शायर इकबाल अशर की तरफ। उन्होंने कहा, तमाशाई बने रहिए, तमाशा देखते रहिए, तमाशाई बने रहिए, तमाशा देखते रहिए, यही दुनिया है तो कब तक ये दुनिया देखते रहिए। अगर अपने बिखरने का नज़ारा कर नहीं सकते, अगर अपने बिखरने का नज़ारा कर नहीं सकते, तो ये कीजिए कि वो रोशन सितारा देखते रहिए। कि यूं मंजर बदल जाने से हैरानी नहीं होती, कि यूं मंजर बदल जाने से हैरानी नहीं होती, अगर गुलशन में रहना हो तो सहरा देखते रहिए, मतलब रेगिस्तान। मियाँ क्या आईने को खेलने की चीज समझे थे, मियाँ क्या आईने को खेलने की चीज समझे थे, अब अपने आप को किस्सों में बटता देखते रहिए। इधर तुम प्यास की हुरमत का किस्सा छेड़ बैठे हो, इधर तुम प्यास की हुरमत का किस्सा छेड़ बैठे हो, उधर मौसम ये कहता है कि दरिया देखते रहिए। जी हाँ, इकबाल अशर, उन्होंने कहा था कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वास्तव में अगर हम साहित्य की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं, अभी बात चल रही थी इश्क में हूँ मैं मुसलसल समझो, बात इतनी सी है दरअसल समझो, तो कभी कभी बहुत छोटी बातें हमको चुभ जाती हैं। कहा जाता है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाऊं, मतलब अगर बात राजा आपकी बात से खुश हो गया तो हाथी दे देगा इनाम में, और अगर कहीं आपकी बात गड़बड़ हो गई तो हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मरवा दिया जा सकता है। एक शेर है कि बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहां आती है। जी हाँ, मोहब्बत करने वाला वास्तव में अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है, और तन्हाई के आलम में अगर मोहब्बत है तो इंसान ये कह देता है कि भाई आप कहीं जा सकते हैं, आपको हक है। एक गीत है, तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। लेकिन फिलहाल चलते हैं कुछ इसी पस मंजर का, कुछ इस ऐसे ही दृश्य का गीत आपको सुनाते हैं। जी हाँ, सर मौका नहीं मिला वरना ज़रूर आते, शादी में बिजी थे, क्या बात है भाई। नेहा जी, आप देखिए, हम खुद ये मानते हैं कि इंसान मौका निकाल लेता है अगर चाहता है तो। मसरूफियत सभी के पास है और कहीं ना कहीं इंसान वक्त निकालता है, तो चलिए पहली बार नहीं तो मैं चाहूँगा कि दूसरी बार जब कभी आप गुना आएँ तो अपने FM को ज़रा ध्यान से देखें। एक परिवार के हम लोग सदस्य हैं और एक सदस्य दूसरे सदस्य से परिचित हो तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, तो आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। चूँकि कहानी ऐसी चल पड़ी है तो हमको लगता है कि ये नगमा बहुत अच्छा उन मौजूआत पर फिट होता है। आपको क्या लगता है, सुनकर बताइए।

साहब इसे कहते हैं असली मोहब्बत। दो पहलू हमको दिखाई पड़े इस नगमे में। तुम अगर भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। और नायक उस अंदाज को लेकर आता है कि मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। वास्तव में जो जिंदगी होती है उसमें मोहब्बत के अलावा कई सारे गम होते हैं, रोटी कपड़ा मकान घर कैसे चलाएं, कल रात की चिंता में रात नींद ना आनी, कल रात की चिंता में, कल भोर की, कल सुबह क्या नाश्ता होगा, कैसे बच्चे जाएंगे, कल सुबह की चिंता में आज रात, कल भोर की चिंता में रात नींद ना आनी, रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं साहब, सबका अपना अपना दुख है, सबका अपना अपना दर्द है, और हर इंसान किसी न किसी कर्ब में, किसी न किसी दर्द में मुफ्तिला हुआ पड़ा है। आपके और हमारे दर्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गम सभी के पास हैं। इकबाल साहब लिखते हैं, कभी कसक जुदाई की, कभी महक विसाल की, कदम न थे जमी पे जब वो उम्र थी कमाल की। विसाल का मतलब होता है किन्हीं दो लोगों का एक हो जाना। कभी कसक जुदाई की, कभी वो दूर होती थी तो कसक होती थी कि बहुत दूर है, कभी महक विसाल की, और कभी कभी जब करीब होते थे तो वो खुशबू आती थी। कदम न थे जमीन पर जब वो उम्र थी कमाल की, मतलब मुझको लगता है कि हर एक एज के बाद इंसान का नजरिया चीजों को देखकर बदलता है। मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में था तो किसी पोस्ट पर, किसी अच्छी पोस्ट पर किसी लड़की को देखता था तो सोचता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। फिर थोड़ी सी परिपक्वता आई, मैच्योरिटी आई, तो फिर अगर किसी अच्छे पोस्ट पर किसी महिला को देखा तो ये सोचा कि अगर ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। अब मेरी एक बेटी है, अब जब मैं किसी महिला को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि काश एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन

0: मेरी बेटी इस कुर्सी पर बैठेगी। तो इंसान उम्र के हिसाब से अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आता है। ये प्यार मोहब्बत की बातें ये कुछ दिन तक तो अच्छी लगती हैं साहब, लेकिन उसके पश्चात जब जीवन का सच सामने आता है तो कवि को कहना पड़ता है, शायर कहता है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। एक पंक्ति मेरे जहन में आ रही है कि जगह देती हैं घर की जिम्मेदारियां अक्सर, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। और रात में जागते कितने लोग हैं, वर्णन आता है कि यही जग जामिन जागहिं जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। रात में कितने लोग जागते हैं, पहले तपस्वी जागता है रात में, साधना करता है, दूसरा परमारथी जागता है, दूसरों का हित करने वाला। मोहल्ले में कोई बात हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, चलो भाई उनको साथ लेकर चलना है, ऐसे लोग होते हैं। तीसरा प्रपंच, जिसको मतलब बकवास करनी हो, दूसरे की बुराई करनी हो, वो जागते हैं, रात भर जाग सकते हैं। और चौथा वियोगी, जो अपने प्रेम करने वाले से अलग हो। अभी एक गीत बजवाया था किसी ने कि मेरा परदेसी ना आया, तो वियोगी होता है वो भी रात को जागता है। और मुझे लगता है पांचवा घर का मुखिया भी वो होगा जो रात का खाना जिसको मिल गया है और सुबह बच्चों के नाश्ते का इंतजाम नहीं है, तो शायद उस व्यक्ति को भी नींद कम आती होगी। जहाँ तक मतलब मेरा अपना नज़रिया है, और हमारे साथ कायनात जी जुड़ी हुई हैं जी, सलाम करते हैं आपको, और मुस्तफ़ा सऊदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, आपको भी आदाब, और उद्दालक शर्मा जी हैं। जी हाँ, और कायनात जी ने देखिए मतलब क्या पंक्ति लिखी है कि हम भी जागते हैं अभी आधी रात को, कभी कभी तो 5 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, तो हम तपस्वी। अरे आप, हमको लगता है आप महिला नहीं हैं, आप देवी हैं, मतलब बहुत ही प्यारी, मतलब ये मामूली बात थोड़े है रात में जगना जी। और मतलब हर एक चीज़ जो है वो अपने उम्र पर एक अच्छी लगती है। इस दुनिया में हर एक चीज़ की अपनी एक जगह है, और वो उस जगह पर हो तो खूबसूरत लगती है जी। सविता जी हमारे साथ हैं भाई, बहुत खूब सर आपने जी बात अच्छी कही जी, आप लोगों से सीखते हैं हमारे दादा हैं कि क्या कैपेसिटी है। नहीं नहीं साहब, वो कैपेसिटी मतलब वो देख रहे हैं 6 बजे से लेकर अभी तक, तो ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्रेम है। और यकीन मानिए कि मोहब्बत में इंसान बहुत ताकतवर हो जाता है, जो कमज़ोर कर दे इंसान को वो प्यार नहीं, वो कुछ और है। प्यार तो वो है जो उसने गाया कि तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, ठीक है, ओके, इट्स ओके, आपको नहीं परवाह है, लेकिन हम आपसे प्रेम करते रहेंगे, पानी और दूध कि जैसा प्रेम। कहा कि जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह, रहिमन मछरी नीर को तउ न छानत छो। मतलब जब जाल पड़ता है तो पानी और मछली एक साथ में रहते हैं, तो जब जाल पड़ा तो मछली जाल में आ गई और पानी जो है जाल से बाहर निकल गया। तो मछली इतना प्रेम करती है पानी से कि तुम ही जिंदगी हो मेरी। और वो पानी के लिए अपना जीवन छोड़ देती है, पानी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिक्के का एक पहलू जरा देखिएगा थोड़ा साहित्यिक नजरिए से। मछली मर तो गई लेकिन पानी को इल्जाम देकर मर गई। लोग क्या कहेंगे, मछली कैसे मरी, पानी के बिना मर गई। सोचिए क्या ऐसी मोहब्बत अच्छी हो सकती है जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए मर जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर जीवन भर का कलंक लग जाएगा, वो सोचेगा कि मेरी वजह से जान चली गई। पानी ने बेवफाई की एक अच्छी बात है साहब, लेकिन मछली को जिंदगी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर हम इसको साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें, वैसे वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक अलग हो गया, और मिलना चाहिए ऐसे जैसे दूध और पानी मिलते हैं। अब देखिए फिर से एक बात करूंगा मैं आपसे कि दूध जो है वो रोज पानी दूध को देखता था, भाई पानी रंगहीन स्वादहीन ऐसा पदार्थ है, और जो दूध है वो भाई उजला उजला गोरा गोरा कौन नहीं चाहेगा भाई। बहुत दिन तक पानी ने अपने मन की बात अपने मन में रोक रखी, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने अपने मन की बात कह दी। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। दूध सफ़ेद सफ़ेद उजला उजला, ने कहा इस दुनिया में सभी लोग प्यार प्यार रखते हैं, क्या इसका मतलब भी कोई जानता है? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, अपने आप को उसके लिए मिटा देना जिसको हम प्रेम करते हैं। इतना कहकर पानी ने दूध में छलांग लगा दी। अब दूध ही दूध था, पानी कहीं नहीं था, दोनों एक हो गए। लोग कहते हैं दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब सिक्के का दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं रिश्तों पर, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो। जी, जल पय सरिस बिकाय, देखहुं प्रीत की रीत भल, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुन। अर्थात दूध और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें खटाई पड़ जाती है दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। यही बात रिश्तों में भी है दोस्तों, आप यकीन मानिए, संबंध बहुत अच्छे हो लेकिन अगर कहीं नींबू आ गया, अगर कहीं मन में कपट आ गया, मन में ऐसी कोई भावना आ गई, छल कपट आ गया, तो रिश्ते टूट जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह पानी और दूध, जब तक खटाई नहीं पड़ी तब तक दोनों एक से हैं, लेकिन जैसे ही खटाई पड़ी दोनों अलग अलग हो गए। आपके रिश्ते दूध और पानी के जैसे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दुनिया में खट्टा डालने वाले नींबू डालने वाले लोग बहुत हैं साहब, बस उनसे होशियार रहना है, अपने रिश्ते को बचाए रखना है। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 9:30 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: के इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर केस माना जाता है, एक ऐसा केस जिसे पूरी दुनिया ग्रीन रिवर सीरियल किलर के नाम से जानती है।
2: नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन किसी नदी से है,
1: और सच में है। इस केस का नाम उसी नदी से पड़ा जहां पहली बार कुछ लाशें मिली थी, ग्रीन रिवर, जो अमेरिका के सिएटल इलाके के पास बहती है।
2: तो क्या यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थी?
1: हाँ, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 15 जुलाई 1982। सिएटल के पास बहने वाली ग्रीन रिवर के किनारे कुछ लोगों को पानी में बहती हुई कुछ लाशें दिखाई पड़ती हैं।
2: और जाहिर है कि ये किसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा भयानक दृश्य रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, लोगों की निगाह जैसे ही इस मंजर पर पड़ती है वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, कुछ ही वक्त बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाश को नदी से बाहर निकाला जाता है और पहचान की प्रोसेस शुरू की जाती है।
2: तो क्या उस लाश की पहचान हो पाई थी?
1: हाँ, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह लाश 16 साल की लड़की जिसका नाम था वेंडीली कोफील्ड।
2: ओह, सिर्फ 16 साल? इसका मतलब अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी।
1: और किसी ने उसे खत्म कर दिया। फिलहाल जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लड़की के साथ पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था।
2: यानी कि ये तो साफ साफ एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था।
1: हाँ, पुलिस तुरंत ही इस केस को प्रायोरिटी देती है और सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन कई हफ्तों की जांच के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग मिल ही नहीं पाता।
2: हाँ, और ऐसे मामलों में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है जब कोई क्लियर एविडेंस ना मिले।
1: बिल्कुल, लेकिन इस केस की असली खौफनाक बात अभी सामने आना बाकी था।
2: मतलब?
1: करीब एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को उसी ग्रीन रिवर के इलाके में तीन और लाशें बरामद होती हैं।
2: तीन और?
1: हाँ, और ये तीनों भी महिलाओं की लाशें थी जिनकी उम्र लगभग 17 साल, 23 साल और 31 साल बताई जा रही थी।
2: तो अब तो पुलिस को शक होने लगा होगा कि ये किसी सीरियल किलर का काम है।
1: बिल्कुल, लगातार मिलती इन लाशों ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सिएटल और उसके आसपास के इलाके में कोई ऐसा इंसान जरूर घूम रहा है जो महिलाओं को ही अपना निशाना बना रहा है।
2: और यहीं से शुरू हुई वो इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे लंबी और खौफनाक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन बन गई।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन तीनों लाशों का भी पोस्टमार्टम करवाया और जो रिपोर्ट में सामने आया उसने सबके दिल को झकझोर के रख दिया।
2: क्या?
1: तीनों महिलाओं की हत्या का तरीका लगभग वही था जैसे 16 साल की वेंडीली का केस था।
2: यानी कि इन तीनों हत्याओं का एक ही पैटर्न था।
1: बिल्कुल, जांच में पाया गया कि इन तीनों के साथ भी पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई।
2: तो अब पुलिस के लिए ये साफ संकेत था कि शायद ये एक सीरियल ऑफेंडर का काम हो सकता है।
1: और मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस पहले से मिले मामलों को समझने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच उसी इलाके में नदी के आसपास तीन और महिलाओं की लाशें बरामद होती हैं।
2: मतलब अब कुल कितनी लाशें हो गई होंगी?
1: उस समय तक लगभग 7 लाशें।
2: सिर्फ कुछ महीनों में 7 हत्याएं? ये तो पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा दहशतगर्द होगा।
1: बिल्कुल, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर किसी और को नहीं फीमेल्स को टारगेट कर रहा था। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में डर का माहौल फैल रहा था। मीडिया में इस केस की चर्चा तेज हो गई। और भी तेज हो गई। पुलिस पर भारी दबाव बढ़ने लगा और जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
2: और जब कोई स्पष्ट सबूत ना हो तो इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
1: यही तो बात है। यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस ने हर संभव दिशा की जांच कर ली, सस्पेक्ट की पहचान की गई, लोगों से पूछताछ की गई, कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कोई सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था।
2: लेकिन क्या किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला?
1: नहीं, काफी इन्वेस्टिगेशन और जांच के बावजूद भी पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई पक्का एविडेंस हो। पर तुम्हें पता है, एक ऐसा नाम जरूर था जो बार बार घूम घूम कर आ रहा था।
2: कौन?
1: गैरी लियोन रिजवे।
2: गैरी रिजवे, यानी वही आदमी जो बाद में इस केस से जुड़ा माना गया था?
1: हाँ, लेकिन उस समय पुलिस के पास उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था।
2: तो फिर क्या वजह थी जो पुलिस ने उसे सस्पेक्ट माना?
1: एक्चुअली हुआ क्या था, एक परिवार ने पुलिस को बताया था कि जिन लड़कियों की लाशें मिली थीं, उनमें से एक लड़की को उन्होंने ट्रक में बैठते हुए देखा था और अगले दिन उसी तरह का सेम ट्रक गैरी रिजवे के घर के सामने खड़ा था।
2: यानी शक की एक छोटी सी कड़ी गैरी तक पहुंच रही थी।
1: इसी वजह से गैरी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गैरी समेत कई सस्पेक्ट के सीमन सैंपल को भी लिया और उन्हें विक्टिम के शरीर से मिले सैंपल के साथ फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा था।
2: और क्या कोई मैच मिला?
1: नहीं, किसी भी सस्पेक्ट का सैंपल उन विक्टिम से मिले सैंपल से मैच ही नहीं हुआ।
2: यानी कि अभी भी पुलिस के पास गैरी के लिए कोई भी सबूत नहीं है।
1: सबूतों की कमी और फॉरेंसिक मैच ना होने की वजह से गैरी सहित सभी सस्पेक्ट को रिहा कर दिया गया।
2: और शायद उसी समय पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो जाने दे रहे हैं आगे चलकर वही अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक किलर निकलेगा।
1: और यहीं से ये मामला और भी मिस्टीरियस बनता जा रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी का नाम बार बार घूम घूम कर पुलिस के सामने पहले ही आ चुका था,
2: पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया जा रहा था। और अब गैरी लियोन रिजवे, ये नाम बुलाना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया।
1: खैर हाँ, सही कहा, ये नाम हिस्ट्री के उन पेजेस में शामिल हो गया है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। खैर, गैरी लियोन रिजवे, जिसका जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाहा राज्य में हुआ था।
2: उसका परिवार कैसा था? लेकिन
1: गैरी के पिता ट्रक ड्राइवर थे। स्कूल खत्म होने के बाद गैरी ने अपने स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी।
2: तो मतलब शुरू में उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी।
1: ऊपर से दिखने में तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर अंदर कुछ और था।
2: अंदर क्या था?
1: ऊपर से जितनी नॉर्मल जिंदगी दिख रही है गैरी की, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। गैरी ने यूनाइटेड स्टेट नेवी ज्वाइन कर ली थी और उसे वियतनाम वॉर में भी भेज दिया गया था।
2: वियतनाम वॉर, यानी कि उस समय के सैनिक के भी मन में इसका गहरा प्रभाव रहा होगा।
1: सही कहा, वियतनाम में रहते हुए गैरी का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगा था। बताया जाता है कि वह वहाँ अपना ज्यादातर समय अलग अलग सेक्स वर्कर्स और महिलाओं के साथ बिताता था।
2: तो फिर इसका असर तो उसकी शादी पे भी पड़ा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जो कि काफी आक्रामक और गलत होता। लगातार झगड़े, खराब रिश्ते की वजह से एक साल के अंदर ही उसकी पहली शादी टूट भी जाती है।
2: और उसके बाद?
1: पहली शादी खत्म होने के कुछ साल बाद 1973 में गैरी ने दूसरी शादी कर ली।
2: दूसरी शादी? अब ये किससे?
1: उसकी दूसरी पत्नी का नाम था मार्सिया लोरेन ब्राउन।
2: तो फिर क्या ये शादी उसकी सफल रही?
1: नहीं, ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। बताया जाता है कि गैरी का जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहा, अपनी पत्नी के साथ काफी कठोर, काफी हिंसक और काफी खराब।
2: यानी उसका गुस्सा और उसका बिहेवियर लगातार खराब होता जा रहा था।
1: बिल्कुल, और आखिरकार 1981 में उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो जाती है। और इसी के लगभग एक साल बाद यानी कि 1982 में गैरी रिजवे ने उस रास्ते पर कदम रखा जिसे आगे चलकर उसे अमेरिका का सबसे फेमस और खतरनाक सीरियल किलर में शामिल कर दिया गया।
2: यानी वही समय जब ग्रीन रिवर के आसपास लाशें मिल रही थी।
1: बिल्कुल सही कहा, एक के बाद एक कई महिलाओं के मर्डर होने लगे और उनकी लाशें अक्सर ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में मिलती रही।
2: लेकिन पुलिस गैरी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही थी?
1: सबसे बड़ी एक ही वजह है ना, एविडेंस की कमी।
2: यानी एविडेंस की कमी से बार बार कातिल भटक रहा था और आजाद दुनिया के सामने घूम रहा था।
1: बिल्कुल, और शायद उसके बिहेवियर पे भी किसी ने अभी तक नजर ही नहीं दौड़ाई थी।
2: हालांकि तुमने अभी बताया था कि 1982 में उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा भी गया था, वो कैसे?
1: सही कहा, उस समय जब एक परिवार ने आकर बताया था तो उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा जरूर गया था, बट क्योंकि उस वक्त की फॉरेंसिक सैंपल्स में उसका नाम, उसका एविडेंस कहीं मैच ही नहीं हुआ तो उसे जाने दिया गया।
2: फिर भी वो बचा कैसे?
1: क्योंकि उस समय की डीएनए टेक्नोलॉजी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी। जो सैंपल पुलिस के पास थे उनसे गैरी के खिलाफ कोई पक्का मैच ही नहीं हुआ और यही वजह थी कि गैरी खुला छूट गया। और मुझे लगता है ना, गैरी को खुला छोड़ना ये पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था।
2: जब कोई कातिल ऐसे खुलेआम घूमेगा और उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसे और भी ज्यादा वो मोटिवेशन मिलने लग जाएगा और हत्याएं करने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला था?
1: आगे लाशें मिलती जा रही थी, तब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक ख्याल आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम के बैकग्राउंड को ध्यान से देखना शुरू किया और वहाँ एक पैटर्न दिखाई पड़ता है।
2: पैटर्न? कैसा पैटर्न?
1: ज्यादातर पीड़ित ऐसी लड़कियां थीं जो या तो घर से भागकर आई थीं या सेक्स वर्क में शामिल थीं या फिर जिनका कोई परिवार नहीं था या परिवार से लगभग कम संपर्क बाकी था, यानी कि ना के बराबर।
2: यानी कि किलर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा था जिनकी गुमशुदगी शायद तुरंत नोटिस में ना आए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट कोई नहीं लिखाता, उन्हें ढूंढने कोई नहीं आता और यही किसी भी क्रिमिनल के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में ये ख्याल आया और उसी की वजह से उन्होंने उन इलाकों में नजर रखना शुरू की जहां पर सेक्स वर्कर्स काम करते थे, उनके ऊपर निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। उम्मीद ये थी कि शायद उन्हीं के बीच में कोई ऐसा सुराग मिलेगा या फिर वो व्यक्ति सामने आएगा जो इन हत्याओं के पीछे है और ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
2: तो क्या फिर कुछ पता चला?
1: हाँ, इसी निगरानी के दौरान एक दिन पुलिस की नजर एक ऐसी घटना पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
2: क्या हुआ था?
1: पुलिस ने देखा था कि गैरी रिचवे एक सेक्स वर्कर के साथ बेहद ही आक्रामक तरीके से उलझा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार वह उसके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था और स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही थी।
2: तो फिर पुलिस ने तुरंत जाके इंटरफेयर तो जरूर किया होगा।
1: हाँ, पुलिस ने वहीं गैरी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के लिए फिर से थाने ले गई।
2: क्या इस बार पुलिस को गैरी के खिलाफ कोई सबूत मिला या फिर इन हत्याओं के पीछे का कोई सबूत?
1: चीजों को देखते हुए एक बार फिर से गैरी को सस्पेक्ट माना गया और इस बार एक बहुत ही लंबी पूछताछ भी की गई। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया।
2: अच्छा, पॉलीग्राफी यानी कि वो टेस्ट जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है?
1: सही कहा। इसी टेस्ट से व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट एंड अन्य फिजिकल रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इनकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई पड़ता है।
2: तो क्या इस टेस्ट से गैरी के खिलाफ कुछ सामने आया?
1: नहीं, गैरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक था और उसने इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया।
2: यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मात दे दी उसने।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बार फिर से पुलिस के हाथ खाली थे।
2: यानी कि पुलिस को इस बार भी उसे रोकने के कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले।
1: बिल्कुल, इसी वजह से गैरी को फिर से छोड़ दिया गया।
2: और यही वो मोड़ आता है जहां शायद ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था।
1: गैरी को अब पूरी तरह से यकीन भी आई थिंक हो चला था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। रिहा होने के बाद गैरी ने अपने अपराध बंद नहीं किए, बल्कि वह पहले की तरह और भी महिलाओं को निशाना बनाता रहा।
2: और हर बार वही पैटर्न दोहराता था क्या?
1: लगभग। हत्या के बाद वह अक्सर लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
2: और पुलिस को बार बार सिर्फ एक ही चीज मिलती, वो थी लाश।
1: बिल्कुल, इसी वजह से मीडिया ने इस अननोन किलर को एक नाम देना शुरू कर दिया
2: और वही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया,
3: द ग्रीन रिवर सीरियल किलर।
2: इतने सारे शक होने के बावजूद भी पुलिस गैरी तक नहीं पहुंच पा रही थी।
1: हाँ, और इसी दौरान उसकी जिंदगी जो ऊपर से एकदम सामान्य दिख रही थी, उसी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। 1985 के आसपास गैरी एक और महिला को डेट करना शुरू करता है जिसका नाम था जूरियत माउसन। बाद में वही उसकी तीसरी पत्नी बनती है।
2: यानी बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम इंसान जैसी लग रही थी।
1: बिल्कुल, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद गैरी का सेक्स वर्कर के पास जाना बंद नहीं हुआ और इसी दौरान वह लगातार महिलाओं की हत्या करता जा रहा था। हत्या का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसे कहा गया ग्रीन रिवर टास्क फोर्स।
2: मतलब पूरी दुनिया की टीमें मिलके सिर्फ एक सीरियल किलर के पीछे हाथ धो के पड़ गईं,
1: जिनका अब सिर्फ एक ही टारगेट था, उस किलर तक पहुंचना जिसने इतनी महिलाओं की हत्या की है। इस टास्क फोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लोगों से पूछताछ की, इलाके की जांच की, संभावित सस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाई गई, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जो सीधे हत्यारे तक पहुंच सके।
2: फिर पुलिस ने क्या किया?
1: एक बार फिर सस्पेक्ट की नई सूची तैयार की गई और इस बार फिर से इस लिस्ट में नाम था गैरी रिचवे का।
2: यानी कि अभी भी पुलिस को गैरी पे शक था।
1: हाँ, और इस बार पूछताछ के दौरान पुलिस ने गैरी के बाल और सलाइवा का सैंपल भी लिया था, लेकिन उस समय जो फॉरेंसिक टेक्निक्स उपलब्ध थी उससे पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली
2: और नतीजा वही हुआ,
1: गैरी को एक बार फिर से छोड़ दिया गया।
2: और यही उसकी आजादी को आगे लेके गई और लोगों के लिए ये आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हुआ।
1: सही कहा। गैरी अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से महिलाओं को निशाना बनाता जा रहा था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन पुलिस अभी तक उस किलर तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वक्त आता है साल 2001 का। तब तक गैरी पर शक तो था ही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।
2: 2001 यानी तब तक लगभग कितनी लाशें मिल चुकी होंगी?
1: शायद 50 से ज्यादा।
2: 50 लाशें, वो भी एक आदमी ने मारे थे?
1: और अभी तो इसकी गिनती बाकी है।
2: अच्छा, आगे बताओ, आगे क्या हुआ?
1: दरअसल पुलिस के पास 7 अप्रैल 1987 को लिया गया एक पुराना सैंपल मौजूद था। 2001 तक डीएनए टेक्नोलॉजी भी आगे हो चुकी थी, काफी विकसित हो चुकी थी, और वहां पर ये सैंपल मैच किया गया।
2: यानी कि वही पुराना एविडेंस फिर से जांचा गया।
1: हाँ, और इस बार डीएनए टेस्ट ने गैरी रिचवे को सीधे इन हत्याओं से जोड़ दिया। इसके बाद 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
2: फाइनली इसके खिलाफ कोई सबूत तो मिला, लेकिन क्या गैरी ने अपना जुर्म को एक्सेप्ट किया?
1: नहीं, गिरफ्तारी के बाद गैरी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस लगातार पूछताछ करती रही, कई महीने गुजर गए लेकिन गैरी मुंह नहीं खोल रहा था।
2: लेकिन आखिरकार सच सामने आया कैसे?
1: काफी समय के बाद गैरी ने पुलिस के सामने एक शर्त रखी।
2: शर्त?
1: हाँ, उसने कहा कि वह अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करेगा, हर मामले की जानकारी भी देगा, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
2: यानी कि वो पुलिस के साथ डील करना चाहता था।
1: बिल्कुल सही कहा, और सरकार ने ये शर्त मान भी ली क्योंकि उस समय इन मामलों का सच जानना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद गैरी ने जो कबूल किया उसने सबको निशब्द कर दिया।
2: अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने?
1: उसने कहा कि उसकी पहली हत्या 1982 में थी, उसके बाद लगातार महिलाओं को निशाना बनाता रहा और अक्सर उनकी लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
2: तो फिर अभी तक लगभग कितनी लाशें थीं उसको याद था ये?
1: उसने कहा कि उसे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो 70 से 90 के बीच हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है।
2: ओह माय गॉड, यानी 70, 80 और 100,
1: या फिर उससे भी ज्यादा।
2: आगे क्या हुआ फिर?
1: फिलहाल के लिए जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 48 विक्टिम की पहचान करने में सफलता मिली।
2: और आखिरकार अदालत ने फैसला क्या दिया?
1: अदालत ने गैरी रिजविक को 48 अलग अलग हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सबूत मिटाने और अपराध के लिए भी दूसरी सजा शामिल थी।
2: और उसे कभी पैरोल नहीं मिलेगा?
1: हाँ, अदालत के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में रह जा रहा है, एक साधारण सा सीधा साधा दिखने वाला आदमी एक खतरनाक सीरियल किलर आखिर बना कैसे?
1: और तुम्हारे इस सवाल का जवाब शायद उसके बचपन में छिपा है।
2: बचपन में छुपा है मतलब?
1: रिपोर्टर्स के अनुसार गैरी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां घर का वातावरण बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। उसके पिता अक्सर ट्रक ड्राइवर के रूप में लंबे सफर पर रहते थे और परिवार में अक्सर झगड़े हुआ करते थे।
2: कहा जाता है कि घर का माहौल बच्चों पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है।
1: सही कहा, और ऐसी परिस्थितियों ने गैरी के बिहेवियर और उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। समय के साथ उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता दोनों बदलते गए, और वही बदलाव आगे चलकर उसे इस रास्ते पर ले गए जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना डाला।
2: और शायद यही वजह है कि आगे चलकर वो बच्चा इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक था।
1: बिल्कुल, गैरी रिजवे की कहानी आज भी क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा अध्ययन मानी जाती है। इस खौफनाक केस पर समय समय पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और टीवी अडैप्टेशन भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच और उसके अपराधों को समझने की कोशिश करते हैं।
2: और यही थी कहानी द ग्रीन रिवर किलर की, एक ऐसा मामला जिसने कई सालों तक पूरे अमेरिका को दहशत में रखा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर के एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी जिंदगी।

बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी। उसे तब लगता था हाँ, जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाली नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी। इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती, तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसासात इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

तुम्हें मैं उड़ा। जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए। अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं। ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन से

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूँ आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं जिन

रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने की।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं,

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना।

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में कि

जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजे अनोखी को इजाजत बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए, जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेती है ना, हर कदम पे हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपने लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब आखिर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ऊपर